सुप्रभात, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह। अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, आज शुक्रवार है। विक्रम संवत 2083 के श्रावण मास की 9वीं तिथि और शक संवत 1948 के श्रावण मास की 16वीं तिथि। तदनुसार 7 अगस्त सन 2026। इस समय 7:04:35 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है। आप सभी को इस नूतन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। आज का दिन कल्याणकारी हो और आपके सभी सपनों को पूरा करने वाला हो।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज के कार्यक्रमों से आपको परिचित करवाएं उससे पहले आइए करते हैं आज के दिन की बात। आज है 7 अगस्त, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि। जहां मन भय से मुक्त हो, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां मानवता सीमाओं से ऊपर उठकर एक दूसरे को गले लगाए, ऐसा स्वप्न देखने वाले युगद्रष्टा थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर। 7 अगस्त केवल एक तिथि नहीं, भारतीय साहित्य, संस्कृति और मानवता के इतिहास का एक भावपूर्ण दिवस है। ये वो दिन है जब विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी देह का त्याग किया, लेकिन अपने विचारों, गीतों और साहित्य के माध्यम से वो आज भी हमारे बीच जीवित हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर केवल कवि नहीं थे, वो एक युगद्रष्टा, दार्शनिक, शिक्षाविद, चित्रकार, संगीतकार और महामानव थे। उन्होंने मनुष्य को जाति, भाषा और सीमाओं से ऊपर उठकर प्रेम, करुणा और स्वतंत्र चिंतन का संदेश दिया। उनकी अमर कृति गीतांजलि ने विश्व को भारत

जब करघे की ताल पर धागे गुनगुनाते हैं तब केवल वस्त्र नहीं बनते, एक सभ्यता अपना इतिहास बुनती है, एक संस्कृति अपना सौंदर्य रचती है और श्रम अपने स्वाभिमान का उत्सव मनाता है। श्रोताओं, भारत की पहचान केवल उसके पर्वों, तीर्थों, परंपराओं, तीज त्योहारों से नहीं बल्कि उन कुशल हाथों से भी है जो सूत के साधारण से धागे को कला की अनुपम कृति में बदल देते हैं। यही है हथकरघा, भारत की आत्मा का स्पंदन, लोक जीवन की लय और श्रम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति। आज 7 अगस्त का दिन इसी विधा को समर्पित है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में हम आज के दिन को मनाते हैं। ये दिन हमें उस स्वदेशी चेतना की याद दिलाता है जिसने आत्मनिर्भर भारत का पहला स्वप्न देखा था। करघे की प्रत्येक थाप में स्वतंत्रता का स्वर है, आत्मसम्मान की गूंज है और स्वदेशी की वो सुगंध है जिसने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा था। तो आइए आज के दिन हम ये संकल्प लें कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर, हथकरघा वस्त्रों को सम्मान देकर और बुनकरों के श्रम का मूल्य समझकर इस अमूल्य विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

और अब आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास लेकर हम उपस्थित हुए हैं आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे जीवन सौरभ कार्यक्रम, उसके बाद अक्षय निधि का प्रसारण होगा और फिर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। सुबह 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की। आमने सामने ये कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे प्रसारित होगा। इसमें हमारी आज की आमंत्रित अतिथि नगीन तनवीर। वागर्थ कार्यक्रम होगा सुबह 9 बजे। 9:30 बजे विशेष कार्यक्रम में सुनिएगा शहीद भगत सिंह नाटक का तीसरा भाग। नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा सुबह 10 बजे। 10:30 पर याद करो कुर्बानी कार्यक्रम में हम बात करेंगे वसुदेव शरण अग्रवाल की कला कल्लोलिनी। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी राम गोपाल बजाज की। प्रसारण का समय रहेगा सुबह 11 बजे और 11:30 बजे सुनिएगा धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जीवन सौरभ।
2: एक राजा ने अपने इकलौते पुत्र को बड़े लाड़ प्यार से पाला। इस वजह से वो जिद्दी और गुस्से वाला बन गया। राजकुमार बात बात पर गुस्सा करता, हालांकि बाद में क्षमा मांग लेता। महाराज स्वयं उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने गुरु से राजकुमार की आदत सुधारने की विनती की और गुरु के आश्रम में पुत्र को छोड़कर राजमहल लौट आए। गुरु ने पूछा, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? राजकुमार ने कहा, मैं गुस्सा करने के बाद सभी से क्षमा मांग लेता हूँ गुरुजी। गुरुजी ने राजकुमार से कहा, जब भी गुस्सा आए तो कागज के टुकड़े पर आज मैंने गुस्सा किया लिखकर दीवार पर चिपका दिया करो। कुछ ही दिनों में पूरी दीवार चिपकाए हुए कागजों के टुकड़ों से भर गई। गुरुजी ने राजकुमार से उन सभी टुकड़ों को हटाने के लिए कहा। राजकुमार ने टुकड़े हटा दिए। गुरुजी ने कहा, देखा तुमने, कागज के टुकड़े तो हट गए लेकिन उनके दाग अभी भी इस दीवार पर बने हुए हैं। राजकुमार ने कहा, जी गुरुजी, चिपकाएंगे तो बनेंगे ही। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सही, ठीक वैसे ही माफी मांग लेने के बाद भी तुम्हारे द्वारा बोले गए कटु शब्दों के निशान सामने वाले के दिल पर हमेशा बने रहते हैं। संत के वचनों ने राजकुमार की आंखें खोल दी और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ।
1: जीवन सौरभ।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, कहते हैं वही मनुष्य जीवन में ऊपर उठ सकता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। तो आइए हम भी अपनी जड़ों की ओर चलें, वेदों उपनिषदों के ज्ञान को सुनें। कार्यक्रम का नाम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 183 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं अश्विनी कुमार, छंद है त्रिष्टुप।
1: तम युञ्जाथाम मनसो यो जवीयान् त्रिवंधुरो वृषणा यस्रिचक्रः येनोपयाथः सुकृतो दुरोणम् त्रिधातुना पततो विर्न पर्णैः। हे सामर्थ्यवान अश्विनी कुमारो, आपका जो तीन पहियों वाला, तीन बैठने योग्य स्थान वाला अत्यंत गतिशील रथ है, उसे जोड़कर तैयार करें। तीन धातुओं से विनिर्मित रथ से पक्षी की तरह उड़कर आप दोनों श्रेष्ठ कर्मी के घर पहुंचते हैं। सुवृद्रथो वर्तते यन्नभि क्षाम यत्तिष्ठथः क्रतुमन्तानुप्रक्षे वपुर वपुष्या सचतामियं गीर्दिवो दुहित्रोशसा सचेथे। हे अश्विनी कुमारों, हमेशा सत्कर्म में तत्पर आप दोनों हविष्यान्न प्राप्त करने के लिए भूमि पर गतिमान अपने सुंदर रथ से यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं। आपकी महिमा का गान करने वाली स्तुतियां आपको हर्षित करें। आप दोनों द्योलोक की पुत्री उषा के साथ प्रभात वेला में ही प्रस्थान करते हैं। आतिष्ठतम सुवृतम यो रथो वामनु व्रतानि वर्तते हविष्मान येन नरा नासत्येशयध्यै वर्तिर्याथस्तनयायत्मने च। हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, हविष्यान्नों से पूर्ण रूपेण भरा हुआ आपका रथ आप दोनों को अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए ले जाता है। उस सुंदर वाहन पर आप दोनों विराजमान हों और यजमान तथा उसकी संतानों को यज्ञ की प्रेरणा देने के लिए उनके घर पधारें। मा वाम वृको मा वृकीरा दधर्षीन मा परि वर्तकमुत माति धक्तम अयम वाम भागो निहित इयम गीर दस्रा विमे वाम निधयो मधुनाम। हे शत्रु संहारक अश्विनी कुमारो, आपके लिए हविर द्रव्य तैयार है। यह स्तुतियां आपके ही निमित्त हैं। मधु से पूर्ण पात्र आपके लिए तैयार हैं। आप हमारा परित्याग न करें और न ही अन्य किसी पर अनुदान बरसाएं। आपकी कृपा से हमारे ऊपर वृक एवं वृकी हमला न करें। युवाम गौतमः पुरुमीडहो अत्रिर्दस्रा हवते वसे हविष्मान दिशम न दिष्टा मृजुयेव यन्ता मे हवम नासत्योप यातम। हे शत्रुनाशक और सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, हविष्यान्न अर्पित करते हुए गौतम ऋषि अत्रि और पुरुमीढ़ ये ऋषि अपने संरक्षण के लिए आपका आवाहन करते हैं। सरल मार्ग से जाने वाला जिस प्रकार अभीष्ट लक्ष्य पर सहज ढंग से पहुंचता है, उसी प्रकार हमारे आवाहन को सुनकर आप हमारे समीप पधारें। अता ऋष्म तमसस्पारमस्य प्रतिवाम स्तोमो अश्विना वधाई एह यातम पथिभिर देवयानैर विद्यामेशम व्रजनम जीरदानुम। हे अश्विनी कुमारों, हम इस अंधकार से पार हो गए हैं। आप दोनों के निमित्त ये स्तोत्रगान किए गए हैं। देवता गण जिस मार्ग से चलते हैं, आप उसी मार्ग से यहां पधारें तथा अन्न बल और विजयश्री हमें शीघ्र प्रदान करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 183 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: ये था आपको आपकी जड़ों से जोड़ता कार्यक्रम अक्षय निधि। रेडियो आजाद हिंद की इस प्रसारण सभा में बहुत कुछ है खास आगे आपके लिए। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आइए इस पावन यात्रा पर हम और आप साथ साथ चलें। श्रोताओं, जब से कुदरत है, मनुष्य का अस्तित्व है, तब से ईश्वर की अनंत खोज जारी है और ये विश्वास भी कायम है कि कहीं तो कोई है जो दुनिया की बागडोर थामे हुए है, इसे गतिमान करता रहता है। ईश्वर क्या है, कहां मिलते हैं इसके पद चिन्ह, ये एक सनातन प्रश्न है जो हर कालखंड में मानव मन को मथता रहा है। श्रद्धा, विश्वास और तर्क की कसौटी पर मानव ने ईश्वरीय सत्ता की हर दम छानबीन की और हर बार यही निष्कर्ष सामने आया कि जर्रे जर्रे में बसते हैं भगवान।

श्रोताओ, ईश्वर प्रेम, आस्था और विश्वास का तालमेल है। वो रहम है, रहमान है, दीन बंधु है, दयानिधि है। इसलिए जब भी मन में ईश्वर की तलाश का प्रश्न उभरे तो किसी को माफ करके देखिएगा। आपको अपनी रहम में ही उस खुदा के दीदार होंगे। किसी रोते हुए बच्चे के चेहरे पर हंसी की रंगोली सजा कर देखिए, यकीनन जगदीश्वर आपकी आंखों के सामने होंगे। उनका कोई आकार नहीं, वे कण कण में व्याप्त हैं। हर दुखियारे की हंसी में, प्रेम की तलाश में भटकते हृदयों में, स्वयं के पूर्ण होने की यात्रा कर रहे साधकों में, संगीत की झनकार में और गायन की मिठास में, हर कहीं वो ही हैं।

जीव मात्र से प्रेम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सारा संसार ईश्वर का ही रूप है। जड़ हो या चेतन, सब में ईश्वर व्याप्त है। कम से कम भारतीय मनीषा इसी सिद्धांत पर विश्वास करती है और हमारी आस्था धर्मिता इसी यकीन के इर्द गिर्द बुनी गई है। पानी, हवा, आग, वृक्ष, नदी, पुष्प, हम इन सब में ईश्वर को महसूस करते हैं, उनके होने पर यकीन करते हैं। हम मानते हैं कि ये संपूर्ण जगत उस विराट का ही स्वरूप है।

श्रोताओं, बहुत से लोग ईश्वर को अलग अलग रूपों, रंगों और आकार में पूजते हैं। कोई मूर्ति के रूप में पूजता है तो कोई अग्नि के रूप में और कोई निराकार। कुछ लोग प्रकृति के हर कण को ईश्वर मानते हैं। दरअसल ईश्वर हमारे भाव जगत का विषय है। जैसी हमारी भावना, वैसा ही हमारा ईश्वर।

ज्ञानी जन कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ है और कण कण में व्याप्त है। उसकी शक्ति से ही आकाश में विस्तार है, उसकी शक्ति से ही वायु का श्वास है, उसकी शक्ति से ही सूर्य चमकता है और उसकी शक्ति से ही सभी जीवित हैं। वही जगत का सत है, वही आत्म की आत्मा है।

श्रोताओं, हमारा ईश्वर हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा का ही रूप है। उसे हम भीतर ढूंढें या बाहर जगत में, अंततः हम पाते यही हैं कि वो हर कण में शामिल है, जर्रे जर्रे में उसी का रूप है, उसी के नाम की झनकार है। तो इस संसार के कण कण में उसके दर्शन का संकल्प लिए संपन्न होती है आज की भजन यात्रा। अब अनुमति दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

वतन करा के श्रोताओं को नमस्कार। मनुष्यता के इतिहास में शायद ही कभी इतने सशक्त और प्रभावशाली तथा संगीतमय शब्द लिखे गए हों जो कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे। इनकी तुलना चिरस्थायी गंगा से की जा सकती है, जो कभी सौम्य तो कभी सफेद छींटे उड़ाती हुई और कभी किनारों को तोड़ती हुई समूचे देश तथा संस्कृति का पोषण करती है। चाहे सरल चतुष्पदी हो या प्रेम की दिव्य भावना का गुणगान करती हुई कविता, अथवा इस विश्व के लिए जोशीली दलील हो, कवि की कल्पना और विचारधारा सुनहरे तार की तरह झिलमिलाती है। कवि भीतरी और बाह्य जीवन को मूर्त रूप देता है। टैगोर के अतिरिक्त और किसी ने इस पहचान का वर्णन इतनी बारीकी से नहीं किया। फल चुनने के लिए वे कहते हैं कि यद्यपि समय की धूल मेरे पथ को गड़बड़ा देती है, लेकिन एक न एक दिन मैं अपने प्राणों का, मेरे जीवन में जो आनंद छिपा है, उसका साक्षात्कार अवश्य करूंगा। मैंने इसकी झलक से ही इसे पहचान लिया है और इसके मनमौजी झोंकों ने मुझसे टकराकर क्षण भर के लिए मेरे विचारों को सुरभित कर दिया है। एक दिन मैं अपने भीतर के आनंद से, जो प्रकाश के पर्दे के पीछे है, अवश्य साक्षात्कार करूंगा और उस व्यापक एकाकीपन में खड़ा हो जाऊंगा जहां वो सृष्टिकर्ता अपनी हर चीज को देखता है।

टैगोर को विश्व कवि ठीक ही कहा गया है। टैगोर की विभिन्न रचनाओं को पढ़ने से व्यक्ति रचना के भाव के अनुसार प्रभावित होता है, या सम्मोहित होता है, या गंभीर चिंतन में डूब जाता है। ये प्रतिक्रियाएं जीवन भर अपनी छाप लगाए रखती हैं। टैगोर बेहतर विश्व और बेहतरीन मानवीय स्थिति के लिए लालायित थे और उन्होंने मार्मिक ढंग से अपने भाव व्यक्त किए। गीतांजलि की बहुप्रशंसित कविता में कवि का सपना है, जहां मन इन चिरव्यापी विचारों और कार्यों से स्वतंत्रता के स्वर्ग की ओर बढ़ता है, मेरे पिता मेरे देश को जगा। भारत के सपने के बारे में एक लेख में गुरुदेव कहते हैं कि मैं भारत से प्रेम करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं इस देश की पूजा करता हूं, इसलिए भी नहीं कि मुझे यहां पैदा होने का अवसर मिला, बल्कि इसलिए कि इसने अशांतिपूर्ण समय में भी उन जीवंत शब्दों को सुरक्षित रखा है जो इसके सपूतों की प्रबुद्ध चेतना से निकले हैं। हम सब जानते हैं कि उन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए ही विश्व भारती की स्थापना की थी। इसका श्री गणेश एक छोटे से स्कूल के रूप में हुआ, जहां वे बच्चों को अपने विचारों और विश्वासों के अनुसार शिक्षा देना चाहते थे। उनकी सतत देखभाल और साज सवार से यह स्कूल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। आज ये शिक्षा का अद्वितीय केंद्र है और संसार में अपनी तरह का अकेला केंद्र है।

चिंतक टैगोर के साथ कलाकार टैगोर के काव्य संगीत और चित्रकारी का संदर्भ दिए बिना उनके विचारों का उचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। हम सब जानते हैं कि टैगोर पांडित्य प्रदर्शन और नीरस बुद्धिवाद को पसंद नहीं करते थे। गीतांजलि में टैगोर कहते हैं कि आत्मत्याग में उसकी मुक्ति नहीं है। वे आनंद के हजारों बंधनों में स्वतंत्रता के आलिंगन का अनुभव करते हैं। उनकी मान्यता है कि कवि अपने आप को संसार से और मनुष्यों से अलग नहीं रख सकता। कवि के लिए मनुष्य का संतरास, कुरूपता और पीड़ा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की अन्य चीजें होती हैं। उन्होंने चित्रा की भूमिका में 1915 में कहा था कि लोग उन्हें आदर्शवादी समझते हैं जो केवल लोगों की आशाओं आकांक्षाओं की चर्चा करता है और जीवन का गुलाबी आशावादी चित्र खींचता है। वे आगे कहते हैं कि ये गलत है। ये एक सतत विचारधारा है जिसने उन्हें एक भयानक, अनोखा और विकृत संसार रचने के लिए उकसाया। पश्चिम द्वारा अफ्रीका की लूट खसोट के बारे में उन्होंने अपनी कविता में लिखा है कि मनुष्यों को फंसाने के फंदे के लिए वे चुपचाप तुम्हारे पास चले आए, ये शिकारी जिनका खूंखारपन तुम्हारे सघन जंगलों से भी गहन था, जिनका घमंड तुम्हारे अंधेरे जंगलों से भी अंधा था। सभ्य लोगों के बर्बर लालच ने अपनी निर्लज्ज मानवता को निर्वसन कर दिया। तुम्हारे जंगल की पगडंडी आंसुओं और रक्त से कीचड़ भरी हो गई। वे पीड़ा और मृत्यु की अवश्यम भाविता का वर्णन करते हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें सहन करने की शक्ति की बात भी करते हैं, जो मनुष्य को नए गौरव के साथ प्रस्तुत करती है। टैगोर एक तरह से सत्य के अन्वेषक सिद्ध होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो एक स्थान पर टिक नहीं सकता क्योंकि इससे वो निष्क्रिय हो जाता है। पथिक बनने के लिए उसे प्रशांत मार्ग का यात्री होना चाहिए। यदि व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता तो वो सत्य को नहीं पा सकता, लेकिन सत्य है कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि हमें उत्तर ना भी मिले तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए। टैगोर का सपना इस संघर्षपूर्ण संसार में रहने वाले कोटि कोटि लोगों को नई आशाएं और आकांक्षाएं प्रदान करता है। आइए विश्व कवि टैगोर को शत शत नमन करें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। सुनकर

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, कुछ खास शख्सियतें जिनसे मुलाकात को जी चाहे, कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिनकी बातें सुनने को जी चाहे, आपकी ऐसी ही चाहतों को पूरा करता है हमारा अगला कार्यक्रम। जी हाँ, आमने सामने। इंतजार कीजिए बस जरा सा।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
3: दोस्तों नमस्कार, आमने सामने कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मनीषा, और आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले हम आपको बता दें कि आप सुप्रसिद्ध लोक गायिका हैं, रंगकर्मी और नया थिएटर की विरासत को आगे बढ़ाने वाली नगीन तनवीर जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
4: सास गारी देवे ननद मुहा लेवे देवर बाबू मोर।
3: आपने बचपन से हबीब तनवीर जी को केवल एक महान रंग निर्देशक के रूप में नहीं बल्कि एक पिता के रूप में भी देखा है, और इन सब से इतर नगीन जी बहुत ज्यादा अपने भीतर लोक गायकी के एसेंस को छुपाए हुए हैं। हमें जब तब उसकी खुशबू सूंघने को मिल जाती है। आपका बहुत स्वागत है नगीन जी स्टूडियो में।
5: बहुत बहुत शुक्रिया।
3: सबसे पहला सवाल मैं आपसे कहूँ तो वो ये कि नगीन तनवीर खुद नगीन तनवीर को कैसे परिभाषित करेंगी?
5: कलाकार के तौर पर और एक सच्ची साधक के तौर पर।
3: वाह, तो ये साधना आपकी, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा गाती हैं, बहुत मधुर गाती हैं, और जब भी आपको सुना है स्टेज से तो हर बार लोक गायकी का एक नया ही रंग देखने को मिलता है। तो क्या हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपकी आवाज में कुछ सुन सकते हैं?
5: मैं एक बहुत पुराना पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाऊंगी जो फिल्मों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन ऑथेंटिक जो जैसा था वैसा मैं पेश कर रही हूँ।
3: जी।
5: सास गारी देवे ननद मुहा लेवे देवर बाबू मोर।

0: क्या बात है, क्या बात है। आपको सुनना, आंखें बंद कर ली जाए और आपको सुना जाए तो ऐसे लगता है जैसे हम भी वहीं पहुंच गए हैं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ की माटी में। बहुत अच्छा लगा। दिल्ली सिक्स का ये गाना हम लोगों ने तो बिल्कुल खड़ी हिंदी में ही सुना है, लेकिन आपके मुंह से लोक भाषा में लोक रंजित तरीके से सुनना बहुत आनंददायक था। एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि हबीब तनवीर जी को अपने आप में रंग धर्म का, रंग कर्म का विश्वविद्यालय माना जाता है, लेकिन कई बार इतनी बड़ी विरासत के साथ जब आप रहते हैं, ऐसी शख्सियत के साथ जब आप रहते हैं, तो शेडो इमेज का भी एक कहीं ना कहीं असर आ जाता है। आपको क्या लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए कि पिता मेरे एक बरगद के पेड़ जैसे थे
0: जी,
1: तो उसके प्रभाव में मैं थी। और पहले ऐसा था, अब वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है
0: जी।
1: अब अपनी मेरी खुद की पहचान अब बन रही है, इसलिए कि इतना उनका ऑरा था ऊर्जा का और रौब भी था। और ये मैंने देखा है कि एकाग्रता, जिसे अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, उससे ऊर्जा बढ़ती है। उसी ऊर्जा से लोग मतलब कांपते भी थे, डरते थे और हिचकिचाते थे। उसी ऑरा का असर मुझ पे भी पड़ा, ऊर्जा का असर। और जैसे कि मैंने कहा कि बरगद के पेड़ जैसे थे, आपने कहा ना कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन विश्वविद्यालय थे, तो बरगद का पेड़ सबको समा लेता है, वैसे ही थे हबीब साहब। बहुत सालों तक उस प्रभाव में मैं झुकी रही कह सकते हैं
0: जी,
1: लेकिन अब वो बदल गया है कुछ सालों से
0: जी। जी जी, आपकी माँ मोनिका मिश्रा जी खुद बहुत प्रतिभाशाली कलाकार थीं। आपको क्या लगता है हबीब तनवीर जी के रंग कर्म, नया थिएटर और उनके सपनों को साकार करने की यात्रा में मोनिका मिश्रा जी का क्या हाथ देखती हैं आप?
1: मोनिका मिश्रा जी को पूरी तालीम थी अमेरिका से, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, लाइटिंग, सेट डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी, सब कुछ। लेकिन जब उनका विवाह हुआ हबीब साहब के साथ, तो उनको लगा कि ये मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो उन्होंने एक कदम पीछे कर लिया, वरना ईगो क्लैश होता ज़बरदस्त, तो एक कदम पीछे कर लिया। और फिर वो बैक स्टेज काम संभालती थी, प्रॉपर्टीज और कॉस्ट्यूम, और पहले रोल भी कराए हबीब साहब ने उनको, तो रोल करती थी, बहुत अच्छी कॉमेडी एक्ट्रेस थी। तो धीरे धीरे उन्होंने पीछे वो हट गई, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वो एक टीम वर्क जैसे काम करने लगे। हबीब साहब डायरेक्टर थे तो वो प्रोड्यूसर थी, वो सारे टिकट छपवाती थी, इनविटेशन कार्ड्स छपवाती थी, पासेस, एंटरटेनमेंट टैक्स पहले हुआ करता था दिल्ली में, सिस्टम था वो सब, दौड़ भाग का काम वो करती थी, पब्लिक बस में जाके ये सब करती थी। तो दे वर्क लाइक अ टीम। और ये पहली मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में
0: जी
1: ऐसी टीम वर्क की। और बाद में तो ऐसा हुआ कि कोई भी चीज़ के लिए बगैर उनके सलाह मशवरा के बगैर वो आगे कदम नहीं बढ़ाते थे हबीब साहब, चाहे वो डायरेक्शन का कुछ काम हो या कॉस्ट्यूम हो या कुछ भी हो या स्क्रिप्ट में कोई टेक्स्ट हो, संवाद हो, हर चीज़ में मोनिका मिश्रा जी को दखल था। हर चीज़ में उनसे सलाह लेते थे कि ये मोनिका ये ठीक है कि नहीं है
0: जी।
1: तो कभी कभी वो मान लेते थे उनकी बात, और जब उनको वो आइडिया पसंद नहीं आता था तो उनसे कुछ नहीं कहते थे, वो चुपचाप मतलब दूसरा रास्ता अपनाते थे, दूसरा जो उनको ठीक लगता था
0: जी,
1: और कहते नहीं थे कुछ उनसे
0: जी।
1: तो मोनिका मिश्रा जी समझ जाती थी कि अब ये मेरा ये आइडिया उनको पसंद नहीं आया, लेकिन स्वीकार, एक्सेप्टेंस बहुत था, उसको कबूल कर लेना, उस पे बहस ना करना, तर्क ना करना, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा।
0: आपके बचपन में आपको लिए चलते हैं नगीन जी, क्योंकि हम जब और बच्चों की परवरिश देखते हैं तो भाई पढ़ाई करो, उठो, चलो स्कूल जाना है, लेकिन हबीब साहब का तो अपने आप में कभी कहीं उनका थिएटर का प्रस्तुति होनी है, कभी कहीं जाना है, मतलब कहते हैं ना कि मुकाम से ज़्यादा सफ़र में कुछ लोग रहते हैं, तो आप कभी बहुत समय सफ़र में गुजरा होगा, आप भी हबीब साहब के साथ इधर उधर काफ़ी जाती रही हूँ, कैसा रहा आपका बचपन?
1: सबसे पहली स्मृतियां तो वो हैं करोल बाग की कि किराए का घर था और ऊपर छत पे बरसाती थी, वहां सब ट्रंक्स थे थिएटर के, वहीं पे एक वो नल की टोटी थी पीतल की, वहीं पे 8-10 छत्तीसगढ़ी वहां रहते थे और वहीं नहाते थे, खाना पकाते थे चूल्हे पर। पहले तो ये स्मृति रही। फिर जब हबीब साहब संसद सदस्य बने राज्यसभा, तो हमारी अम्मा तो बड़ी स्ट्रिक्ट थी, पढ़ना है तुम्हें, होमवर्क करना, सारे सब्जेक्ट वो पढ़ाती थी, इसलिए कि पढ़ाई लिखाई में मुझे तो कोई दिलचस्पी थी नहीं। मैं सोचती थी कि जिंदगी बहुत अच्छी है, नाच और गाना, गाना और नाच। फिर वो पढ़ाती थी, कहती थी कि अच्छा तुम छत्तीसगढ़ियों के पास जा रही हो, एक घंटे में वापस आना है, ये फला चैप्टर करना है, ये होमवर्क करना है। बहुत सख्त थी वो, तो हम टूर में नहीं जाते थे, वो मेरे साथ रुकती थी घर में। फिर कॉलेज डेज में फिर मैं टूर में जाने लगी, लेकिन जब तक स्कूल था मैं कोई टूर में नहीं जाती थी और अम्मा भी नहीं जाती थी। दिल्ली से बाहर अगर टूर हुआ, वो पढ़ाती थी तो वो समर्पित थी मेरे प्रति कि भाई बच्ची को पास होना, मैथमेटिक्स मेरा सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट था, और क्या खिलाना है बच्ची को, भाई गिज़ा के भाई बच्ची थक भी जाती है, और ये तो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थी हमारी अम्मा।
0: आपकी संगीत की तालीम भी बहुत बड़े बड़े गुरुओं से हुई है, आप कुछ नाम लेना चाहेंगे?
1: मैं 8 साल की थी तब शर्वरी मुखर्जी, उन्होंने सिखाया 2-2.5 साल, स्कूल में पढ़ाती थी वो, बड़ी खूबसूरत, ऐसा लग रहा था कि मंदिर से कोई स्कल्पचर तराशी हुई निकल के आ रही है, बहुत ही खूबसूरत थी। फिर जब वो नहीं सिखा पा रही थी तो उनकी जो गुरु थी उस्तानी दीपाली नाग, मतलब दीपाली तालुकदार, जो डॉक्टर बी डी नाग चौधरी की पत्नी थी, जिन्होंने स्वयं फैयाज खान साहब से तालीम ली थी आगरा घराना, फिर उनके अंडर मैंने संगीत प्रभाकर विशारद 6 साल का वो किया
0: जी
1: स्कूल के जमाने में। फिर बड़ौदा चली गई, माँ बाप पूछ रहे थे कि अब कौन से कॉलेज में डालें, इसको तो म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो दीपाली मासी बुलाते थे हम, तो वो कहने लगी कि बड़ौदा सबसे अच्छी जगह है। बड़ौदा गई, वहाँ 4 साल रही, फिर गुरु की तलाश थी, तो एक हमारे नया थिएटर में थे वो चेलो प्लेयर थे, ऑल इंडिया रेडियो में ए ग्रेड आर्टिस्ट ज्ञान शर्मा, उन्होंने कहा हमारी अम्मा से, मोनिका सुलोचना बृहस्पति जी से सिखवाओ इसको। तब हमने सुलोचना बृहस्पति जी से 8-10 साल तालीम ली
0: जी,
1: सदरंग रामपुर सदरंग परंपरा
0: जी।
1: फिर यहाँ भोपाल शिफ्ट हो गए, फिर गुंदेचा बंधु से तालीम ली 6 साल
0: जी,
1: उनसे
0: जी,
1: तालीम ली। फिर किसी ने कहा कि तुम फोक गाती रही हो तो क्यों ना तुम ठुमरी तालीम लो, इसलिए कि वो सबसे नजदीक है लोक संगीत के, और लोक संगीत का पॉलिश्ड रूप ठुमरी गायन है
0: जी।
1: तो पूर्णिमा चौधरी जो बनारस घराने की हैं, महादेव मिश्रा जी की प्रथम शिष्या, बहुत अच्छी शिष्या, उनसे सीखो। तो मैं कलकत्ते जाती थी साल में 3-4 बार उनसे तालीम लेने, 2 साल उनसे तालीम ली, ठुमरी तालीम 2-3 साल वो चली
0: जी।
1: इस तरह से
0: अब ठुमरी की बात चल रही है और नगीन जी के मुंह से कुछ सुना ना जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, तो चलिए इसे थोड़ा और सुरमय बनाते हैं इस बातचीत को, बीच बीच में बताइए क्या सुना रही हैं आप।

0: जल्दी खत्म हो जाता है तो लगता है जैसे किसी ने एक बहुत सुंदर सपने से जगा दिया हो। नगीन जी आप बहुत बहुत अच्छा गाती हैं आप। मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि एक बार आपके कॉन्सर्ट में मैं पहुँची थी और वहाँ पर आप गा रही थी गए दिनों का सुराग लेकर, इधर से आया उधर गया वो, और शायद बहुत से लोगों ने इसको ज़रूर सुना होगा, पर वहाँ मेरे आसपास बैठे कई लोगों की आंखों में आंसू थे क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है और शायद ईश्वर के उतनी ही नज़दीक भी, इसलिए लोगों को वो बहुत जल्दी छू जाती है। नगीन जी हम वापस लौट आए हैं आपकी गायकी से, आपने बॉलीवुड के लिए भी गाया है, फिल्मी जगत के लिए भी गाया है, उस अनुभव को कैसे देखती हैं आप?
1: पहली बार मौका मिला था तो अनुषा रिजवी जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था उन्होंने कहा नगीन मुझे तुम्हारा गाना चाहिए और चोला माटी जरा गा के सुनाओ, फोन पे बात हो रही है।
0: अच्छा,
1: तो मैंने गा के सुनाया। उन्होंने कहा इसको हम एक फिल्म में इस्तेमाल करेंगे जो मेरी फिल्म है और आमिर खान प्रोडक्शंस हैं, प्रोड्यूसर आमिर खान हैं, तुम गाना चाहोगे? मैंने कहा वाह ये तो चांदी हो गई, क्यों नहीं। और जिस साल बाबा का इंतकाल हुआ था उसी साल जून में उनकी मौत हुई और दिसंबर 2009 में बांद्रा में स्टूडियो बुक हुआ और इसकी

द्रोण जैसे गुरु चले गए, कारण जैसे दानी, संगी कारण जैसे दानी, बाली जैसे

0: बहुत ही सुंदर गाना है। मतलब जब जब किसी को गलत फहमी हो और वो इस जीवन दर्शन से परिचित हो जाए तो अपने आप जमीन पर लौट आएगा। मैं वापस नया थिएटर की तरफ जाना चाहूंगी कि उसको कई लोग कहते हैं कि हबीब साहब बहुत प्रयोग करते थे नया थिएटर में, कहना चाहिए कि रंगमंच की प्रयोगशाला ही थी वो। आप इन चीजों को कैसे बताना चाहेंगी विस्तार से?
1: पहली चीज तो ये है कि जितने लोक नाट्य धर्म शैली के हैं हिंदुस्तान में फोक थिएटर्स, वहाँ इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप बहुत रहता है आशुरचना का। तो हरियाणा में स्वांग शैली कहलाती है, उसमें भी इम्प्रोवाइजेशन होता है, और राजस्थान में भी शैली है वहाँ भी होता है, और एक और क्षेत्र में काम किया गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, साउथ उड़ीसा। तो उसमें कहाँ लोक नाट्य धर्म और कहाँ क्लासिकल, इतनी बारीक लकीर थी कि पता नहीं चलता था। तो इम्प्रोवाइजेशन, इसलिए के फोक एक्टर्स बहुत अच्छे इम्प्रोवाइजर्स हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा इलाका है जहाँ व्यंग का पहलू, इसलिए के हसोड़ हैं, तो व्यंग का पहलू सटायर जिसे कहते हैं, वो कूट कूट के भरा हुआ है। हल्की एक्टिंग, व्यंग्यात्मक, सूक्ष्म, बिल्कुल सटल, ऐसा लगता नहीं कि एक्टिंग कर रहे। तो इम्प्रोवाइजेशन, फिर किताबें उन्होंने खरीदी यूरोप से, इंग्लैंड से, इम्प्रो, तो उसको स्टडी करते थे, पढ़ते थे, और फिर देखते थे। दक्षिण भारत भी जाके उन्होंने कुडियाट्टम, ऐसे बहुत सारी शैलियां देखी हिंदुस्तान में, गुजराती थिएटर देखा, पारसी थिएटर में मराठी थिएटर देखा, सब कुछ, और फिर क्या अमल हो सकता है मेरे थिएटर में, ये उन्होंने खूब मंथन किया, पढ़ा, जो विलायत से किताबें लाए थे, और देखा, फिर खुद का मंथन चला, फिर मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ प्रैक्टिकली, इस पे मंथन भी चला होगा मेरे ख्याल से। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इम्प्रोवाइजेशन, उसी में ड्रामे बने हैं
0: जी,
1: और उसी से, इम्प्रोवाइजेशन के तरीके से ही स्क्रिप्ट का गठन हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी गई, संवाद। तो वो समझा देते थे कि भाई हमारी छत्तीसगढ़ी मंडली को ये है कहानी, इसको तुम लोग आपस में बात कर लो, आधा घंटा 45 मिनट ले लो और मुझे करके दिखाओ। तो वो दिखाते थे, करके दिखाते थे, तो फिर कहते थे फिर से आपस में बातचीत करो और दोबारा करके दिखाओ। खुद भी मेहनत करते थे, दूसरों से भी खूब करवाते थे, उनको लगता था कि अब मुझे दखल देना है, तब वो दखल देते थे। शुरुआत में ये हुआ कि शुरू शुरू में जब छत्तीसगढ़ी मंडली बनी 1970-71 में, तो शहरी और छत्तीसगढ़ियों को मिला जुला रूप उसे ड्रामे होते थे, मसलन आगरा बाजार, लेकिन फिर वो हिंदी के संवाद उनको कहते थे कि ये बोलो, तो वो बहुत, कहीं उनका मेंटल ब्लॉक हो जाता था, वो नहीं बोल पाते थे, तो उनके समझ में नहीं आ रहा था हबीब साहब के इनको जब ग्रामीण नाचा थिएटर में देखा तो बेबाक होके एक्टिंग कर रहे, यहाँ ये कौन सी चीज है जो रुकावट डाल रही है। बहुत धीरे धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता उनको एहसास हुआ कि हिंदी में बुलवा रहा हूँ, इसलिए तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया कि भाई यही संवाद तुम छत्तीसगढ़ी में बोलो। उसमें फिर रौनक आ गई और रोशनी आई, तो फिर उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया कि अब मैं छत्तीसगढ़ी में करूंगा। उनको समझ में आया कि ये जो क्रैम्प्ड फीलिंग आ रही है उनके जहन में कलाकारों के, ये भाषा की वजह से आ रही है। फिर जब सही तरीका मिल गया ना, तो फिर वो फॉर्मूला बन गया, फिर उसी ढर्रे से वो चलते थे। अगर उनको लगता था कि कुछ कमी है तो कुछ पढ़ लेते थे, किताब, ढेरों किताबें खरीदते थे विलायत से, पढ़ते थे, फिर सोचते रहते थे, सोचते रहते थे। फिर दूसरी बात यह है कि फैमिली थिएटर जैसे था, और जब छत्तीसगढ़ी कलाकारों को देखा दिल्ली वालों ने, तो उनको बहुत जल्दी स्वीकार नहीं किया, बहुत कठिन था, अफिल टास था, बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, हर कदम पे संघर्ष था। लेकिन फिर जब फॉर्मूला बन गया, तो जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो पानी बन जाता है H2O, वैसे उन्होंने परंपरा, जड़ों से चीजें ली और उनको हूबहू वैसे ही पेश कर देना, नहीं, वो कैसे इस ड्रामे में फिट होती हैं, वो कैटलिस्ट का काम, कैटलिस्ट का पर्यायवाची मुझे नहीं मालूम, तो कैटलिस्ट का काम किया। अंदर दिल और दिमाग में ये बहुत स्ट्रांग विश्वास था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ
0: जी,
1: और फल की कभी चिंता नहीं की। वो फल जब मिला तो छप्पर फाड़ के दिया ऊपर वाले ने। तो ये बहादुरी से चलते रहे, दृढ़ता पूर्वक चलते रहे।
0: अच्छा, मैंने एक बात और सुनी है, वो कितना सच है ये तो आज आप ही बताएंगी, कि हबीब साहब को जब जरूरत होती थी कि मंच पर कोई सब्जी वाला आ जाए तो सब्जी वाले को बुला लेते थे, और मंच पर जब कोई चौकीदार की जरूरत हो तो चौकीदार को बुला लेते थे। इसमें कितनी सच्चाई है
1: भाई। 1954 में जब आगरा बाजार तैयार हुआ फुल फ्लेजेड ड्रामा
0: जी,
1: तो एक बटला हाउस था, एक मतलब फूस की छत थी उसकी, उसको बटला हाउस कहते थे जामिया मिल्या में। हाँ। और जामिया बिल्कुल जंगल ही था, और ओखला के बाजार वालों को लिया
0: जी।
1: और एक गधे को भी लिया, और गधे ने स्टेज पे लीड कर दी। तो बाजार का सिर्फ नजारा नहीं, बाजार की खुशबुएं बदबुएं सब उसमें प्रोडक्शन में। और फिर बाद में उन्होंने पाया
0: जी
1: कि ऐसे काम नहीं चलेगा, द पर्सन हैज टू बी टैलेंटेड इन एक्टिंग, वरना किसी को भी खड़ा कर दो स्टेज पे सब्जी ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर
0: मुझे लगता है ना कभी हुआ ना होगा कि गधा भी मंच पर आया हो। ये बहुत अच्छा।
1: फिर जब रिवाइव हुआ 1970 में आगरा बाजार
0: जी,
1: तो फिर हुनरमंद प्रतिभाशाली कलाकारों को, एक्टर्स को ही लिया
0: जी। हाँ, देखिए ना, तो इतने सालों बाद भी आज उनकी बात हो रही है, और उन्हें थिएटर का विश्वविद्यालय कहा जाता है, तो शायद उसमें यही सब बातें रही होंगी कि इतने प्रयोग, आप देखिए कहाँ मुनासिब है कि लोग इतने प्रयोग करें और उसे मंच तक ले आए, सबसे बड़ी बात यह है। तो वो नज्म कौन सी थी आपके मुंह से आज लाइव हम सुनेंगे जी?
1: नजीर अकबरावादी की है, सरापा कहते हैं उसे। सरापा यानी सर से लेके पैर तक पूरा नायिका का वर्णन
0: जी।
1: तो मैं पहला बंद गाऊंगी, हो रेज करी

0: कैसी है।
1: क्या बात है, क्या बात है। एक और शौक है जो हम चाहेंगे कि श्रोताओं को पता लगे। नगीन जी रंगों का चुनाव बहुत अच्छा करती हैं, क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड है और अब वो भारत भर के हैंडलूम को, स्पेशली साड़ियों को बहुत पसंद करती हैं। और हालांकि पता नहीं उनको ये सवाल कैसा लगेगा, लेकिन श्रोताओं हम आपको बताना चाहेंगे कि चूँकि नृत्य से, लोक गायकी से उनका बहुत संबंध रहा है और थिएटर में तो कपड़ों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे में ये चुनाव करते करते नगीन जी आपको किसी खूबसूरत साड़ी की तलाश में बाजार में ज़रूर नज़र आ सकती हैं। नगीन जी आपके सारी बातों को करते हुए आज बहुत आनंद आया। बस चलते चलते हम अपने श्रोताओं के लिए एक कोई भी आपकी पसंद का जो आपके दिल के बहुत करीब हो, चाहे वो लोकगीत हो या कोई नज़्म हो या कोई सुआ हो, कुछ भी जो आप सुनाना चाहें।
0: नहीं, साड़ियों के बारे में तो मैं ये कहूँगी, ये भी मैंने अपने पिता से ही सीखा
1: जी।
0: उन्होंने एक साड़ी खरीदी थी, साउथ इंडियन थी वो, सात हाथ की थी
1: जी,
0: और वो जामनी थी और कत्थई रंग की थी। उसमें छुपा हुआ जो रंग था ताने बाने में वो नेवी ब्लू था, नीला, गहरा नीला
1: जी।
0: तो उसमें उन्होंने ब्लाउज मेरे लिए सिलवाया कोसे का, गहरे नीले रंग का
1: जी,
0: और सफेद दुपट्टा, रानी का कॉस्ट्यूम चरणदास चोर के लिए
1: जी।
0: तो ये मैंने उनसे सीखा कि रंगों में बैलेंस होता है और जीवन में भी रंग होते हैं तो वस्त्रों में भी रंग होते हैं, और सबका परस्परस आपस में कहीं ना कहीं संबंध है, कनेक्शन है, चाहे वो थिएटर हो, कुछ भी हो
1: जी जी जी।
0: और वो साड़ियाँ खरीदते थे हबीब साहब, वही खरीदते थे कॉस्ट्यूम के लिए, और जैसे अम्मा के लिए साड़ी खरीदते थे मेरे लिए भी खरीदते थे, तो उनको शौक था साड़ियाँ खरीदने का
1: जी,
0: वो सब लोगों के लिए साड़ियाँ खरीदते थे बहुत मजा लेके
1: जी।
0: ये एक नज़्म है नज़ीर की, तो वो मैं गाना चाहूँगी
1: जी।
0: पतंग वाले के पास आता है नौजवान शख्स और वो ये गाता है
1: जी,
0: तो उस एक दो बंद गाना चाहूँगी

कोई बन ठन के चला है कहीं घर से है वो।

गर फूट के रोया तो मेरे पाँव का छाला सह

0: पांव का छाला, ये मुशायरे की धुन है पारंपरिक।
1: आप जैसे बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, पर आज पहली बार ये मैं शायद किसी इंटरव्यू के आखिर में कह रही होंगी कि अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं। बहुत सारी बातें हैं नगीन जी करने के लिए, लेकिन हर मुलाकात का एक अंत जरूरी है। और आज की बातचीत केवल एक बातचीत नहीं थी, बल्कि एक विरासत से साक्षात्कार था जिसने भारतीय रंगमंच को नई दृष्टि दी। आपने अपनी स्मृतियां, अपने अनुभव, अपने मन की बातें हमारे साथ साझा की और बहुत दोस्ताना तरीके से की, ये कहना होगा। तो बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत धन्यवाद, और हम ज़रूर आपसे एक बार फिर मिलेंगे आपके बहुत सारे गीतों के साथ। श्रोताओं, उम्मीद है नगीन तनवीर जी के साथ ये खास मुलाकात आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपका बहुत शुक्रिया नगीन जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने, जिसमें आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित अतिथि थी सुप्रसिद्ध लोक गायिका नगीन तनवीर। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: आमने सामने।

0: आमने सामने कुछ खास शख्सियतों से आपकी मुलाकात का, कुछ खास व्यक्तित्वों से आपकी बात का बहाना, ये कार्यक्रम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस प्रसारण सभा में अभी आगे बहुत कुछ है खास आपके लिए, तो सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बस थोड़ी ही देर बाद हम लेकर उपस्थित होते हैं आज की अगली प्रस्तुति। जी हाँ, कार्यक्रम वागर्थ है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वागर्थ। और आज वागर्थ में बात होगी मुंशी प्रेमचंद जी की व्यंग रचना मोटेराम जी शास्त्री की। मुंशी प्रेमचंद के नाम और उनके साहित्य से हम सभी परिचित हैं। उन्होंने भारत की जीवंत लोक संस्कृति को केंद्र में रखकर कई महत्वपूर्ण कहानियों और उपन्यासों की रचना की। उनका साहित्य हमारे जीवन के आसपास ही घूमता सा लगता है। मुंशी प्रेमचंद ने कुछ व्यंग भी लिखे जो बड़े ही चुटीले और विषय के ऊपर सीधे प्रहार से करते लगते थे। तो आज हम आपको वागर्थ में उनकी एक व्यंग रचना सुना रहे हैं, मोटे राम जी शास्त्री। ये व्यंग झोला छाप चिकित्सकों पर बेबाकी से टिप्पणी करता है।

0: पंडित मोटेराम जी शास्त्री को कौन नहीं जानता। वे अधिकारियों का रुख देखकर काम करते थे। स्वदेशी आंदोलनों के दिनों में उन्होंने उस आंदोलन का खूब विरोध किया था। स्वराज्य आंदोलन के दिनों में भी उन्होंने अधिकारियों से राजभक्ति की सनद हासिल की थी। मगर जब इतनी उछल कूद पर भी उनकी तकदीर की मीठी नींद न टूटी और अध्यापन कार्य से पिंड न छूटा, तो अंत में उन्होंने एक नई तदबीर सोची। घर में जाकर धर्मपत्नी जी से बोले,
1: अरे इन बूढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है। अरे इतने दिनों विद्या दान करने का क्या फल मिला, जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं?
0: मोटेराम की धर्मपत्नी चिंतित होकर बोली, भोजनों का भी तो कोई सहारा चाहिए कि नहीं?
1: अरे तुम्हें जब देखो पेट की ही फिक्र पड़ी रहती है। कोई ऐसा बिरला ही दिन जाता होगा कि निमंत्रण न मिलते हो, और चाहे कोई निंदा करे या कुछ भी कहे, पर मैं परोसा लिए बिना नहीं आता हूँ। क्या आज ही सब यजमान मरे जाते हैं? मगर जन्म भर पेट ही जलाया तो क्या किया। अरे भाई संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए। सुनो, मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है।
0: वैद्य कैसे बनोगे? कुछ वैद्य की पढ़ी भी है तुमने?
1: अजय वैद्य पढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का। दो चार सीधे साधे लटके हैं बस, और कुछ नहीं है। आज ही अपने नाम के आगे भिषकाचार्य बढ़ा लूंगा। अजय कौन पूछने आता है कि आप हैं कि नहीं, और किसी को क्या गरज पड़ी है कि जो मेरी परीक्षा लेता फिरे। एक मोटा सा साइन बोर्ड लगवा लूंगा, उस पर ये शब्द लिखे होंगे, यहाँ स्त्री पुरुषों के रोगों की चिकित्सा की जाती है। दो चार पैसे का हड़ बहेड़ा आंवला कूट छान कर रख लूंगा। बस इस काम के लिए तो इतना सामान पर्याप्त है। हाँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बटवाऊंगा, उसमें लंका मद्रास रंगून कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां दर्ज की जाएंगी। वे मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। हैं? अरे जनता को क्या पड़ी है कि वो इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते भी हैं या नहीं। फिर देखो वैद्य कैसी चलती है।
0: लेकिन बिना जाने बूझे दवा दोगे तो फायदा क्या करेगी?
1: अरे फायदा ना करेगी मेरी बला से। वैद्य का काम दवा देना है, वो मृत्यु को परास्त करने का ठेका नहीं लेता। और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो मर नहीं जाते। मेरा तो कहना ये है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती वे विकार शांत हो जाने पर अपने आप अच्छे हो जाते हैं। वैद्यकों को बिना मांगे यश मिलता है। पांच रोगियों में से एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश तो मुझे ही मिलेगा ना। शेष चार जो मर गए मेरी निंदा करने थोड़े ही आएंगे। देखो भाई, मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। लेख लिखना मुझे आता ही है, कभी तो बना ही लेता हूँ। पत्रों में आयुर्वेद महत्व पर दो चार लेख लिख दूंगा, उसमें जहाँ तहाँ दो चार कविता भी जोड़ दूंगा, और लिखूंगा भी जरा चटपटी भाषा में। फिर देखो कितने रोगी फंसते हैं। ये ना समझो कि मैं इतने दिन केवल बूढ़े तोते ही रटाता रहा हूँ। मैं नगर के सभी सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता रहा हूँ, और इतने दिनों बाद मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होगी, सोने से।
0: अब मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी, ना अब वो अभिलाषा ही है। पर ये तो बताओ कि तुम्हें दवाएं बनानी भी तो नहीं आती, फिर कैसे बनाओगे? रस कैसे बनेंगे और दवाओं को पहचानते भी तो नहीं हो तुम।
1: प्रिये, तुम वास्तव में बड़ी मूर्खा हो। अरे वैद्यों के लिए इन बातों में से एक की भी आवश्यकता नहीं। वैद्य की चुटकी की राखी भस्म है, रसायन है, बस आवश्यकता है कुछ ठाट बाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें एक दरी हो, ताकों पर 10-5 शीशियां बोतलें हों, इसके सिवा और कोई चीज दरकार नहीं। और सब कुछ बुद्धि अपने आप कर लेती है। मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तुम देख लेना। अलंकारों का मुझे कितना ज्ञान है तो तुम जानती हो। आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो अलंकारों के विषय में मुझसे पार पा सके। आखिर इतने दिनों तक घास नहीं खोदी है। 10-5 आदमी तो कवि चर्चा के नाते ही मेरे आए जाए करेंगे, बस वही मेरे दलाल होंगे, उन्हीं की मार्फत मेरे पास रोगी आएंगे। मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं, नायिका ज्ञान के बल पर धड़ल्ले से वैद्य की करूंगा। अरे तुम देखती तो जाओ।
2: पर मुझे तो डर लगता है कहीं ये विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न चले जाए, न इधर के रहोगे न उधर के। तुम्हारे भाग्य में तो बस लड़के पढ़ाना ही लिखा है, और चारों ओर से ठोकर खाकर फिर तुम्हें वही तोते रटाने पड़ेंगे।
1: तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता?
2: इसीलिए कि तुम वहां भी धूर्तता ही करोगे। मैं तुम्हारी धूर्तता से चिढ़ती हूँ। तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते वो क्यों बनना चाहते हो? तुम लीडर न बन सके सिर्फ पटक पटक कर रह गए। तुम्हारी धूर्तता ही फलीभूत होती है और इसी से ही मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं।
1: आखिर मेरा नायिका ज्ञान कब काम आएगा?
2: किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते? जहाँ 2-4 कवित्व तो सुना दोगे वो खुश हो जाएगा और कुछ न कुछ दे ही मारेगा। वैद्य का ढोंग क्यों रचते हो?
1: अरे मुझे ऐसे ऐसे गुर मालूम हैं जो वैद्यों के बाप दादाओं को भी नहीं पता होंगे।
2: अच्छा?
1: हाँ, और सभी वैद्य एक एक 2-2 रुपए पर मारे मारे फिरते हैं। मैं अपनी फीस 5 रुपए रखूंगा, 5 रुपए, उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे ये कोई बहुत बड़े वैद्य हैं, नहीं तो इतनी फीस क्यों होती?
2: इतनी देर में तुमने एक बात तो मतलब की कही।
1: क्या?
2: मगर एक बात समझ लो, यहाँ तुम्हारा रंग न जमेगा, किसी दूसरे शहर चलना पड़ेगा हमें।
1: अरे क्या मैं इतना भी नहीं जानता? लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना, साल भर में वो धाक बांध दूंगा कि सारे वैद्य गर्द हो जाएंगे। मुझे और भी कितने ही मंत्र आते हैं, मैं रोगी को जांचे बिना उसकी चिकित्सा करूंगा ही नहीं। कहूंगा मैं जब तक रोग को भली भांति पहचान न लूं उसकी दवा नहीं कर सकता, नहीं तो दवा बेअसर रहेगी।
2: अब मैं तुम्हें मान गई, अब चलेगी तुम्हारी वैद्य की, और अब मुझे तुम पर कोई संदेह नहीं रहा। साथ ही ये मंत्र न चलाना, नहीं तो धोखा खाओगे। और इसी तरह साल भर गुजर गया। भिष्काचार्य पंडित मोटेराम जी शास्त्री की लेखनी चल गई। अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा बजा भी लेते थे, रोगों के विशेषज्ञ, रसिकों के भाग्य जागे। पंडित जी गीत सुनाते, हंसाते और बलकारक औषधियां खिलाते, और जिन्हें पुष्टिकारक औषधियों की विशेष चाह रहती उनकी तारीफ के वो पुल बांधते। साल भर में ही वैद्य जी का वो रंग जमा कि लखनऊ में वो ही एकमात्र विशेष चिकित्सक थे। विलासिनी विधवा रानियों और शौकीन रईसों में उनकी खूब पूजा होने लगी। किसी को अपने सामने वो समझते ही नहीं थे, मगर उनकी पत्नी उन्हें बराबर समझाया करती थी कि रानियों के चक्कर में मत फंसो, नहीं तो एक दिन बहुत पछताओगे। लेकिन भावी तो होकर ही रहता है, कोई लाख समझाए, पर पंडित जी के उपासकों में बिड़हल की रानी भी थी। राजा का स्वर्गवास हो चुका था, रानी साहिबा न जाने किस जीर्ण रोग से पीड़ित थी। पंडित जी उनके यहां दिन में 5-5 बार जाते। रानी क्षण भर के लिए भी उन्हें अपने पास से हटने नहीं देना चाहती थी। पंडित जी के पहुंचने में जरा भी देर हो जाती तो वो बेचैन हो जाती। एक मोटर नित्य ही उनके दर पर खड़ी रहती थी। अब पंडित जी ने खूब केंचुल बदली थी, तंजेब की अचकन पहनते, बनारसी साफा बांधते और पंप जूता पहनते। मित्रगण भी उनके साथ मोटर पर बैठकर दनदनाया करते थे। कई मित्रों को रानी साहिबा के दरबार में नौकर भी रखवा दिया। भला रानी साहिबा अपने मसीहा की बात कैसे टाल सकती थी। मगर चरखे जफाकार और ही षड्यंत्र रच रहा था। एक दिन पंडित जी रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाई पर एक हाथ रखे नब्ज देख रहे थे और दूसरे हाथ से उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे। कितने में कई आदमी सोटे हाथ में लिए हुए कमरे में घुस आए और पंडित जी पर टूट पड़े। रानी ने भागकर दूसरे कमरे में शरण ले ली और किवाड़ अंदर से बंद कर लिया। पंडित जी पर बेभाव पड़ने लगी। यूं तो पंडित जी भी दमखम वाले आदमी थे, एक गुप्ती हमेशा ही अपने साथ रखते थे, पर जब धोखे से कई आदमियों ने धर दबोचा तो भला वो क्या करते, कभी इसका पैर पकड़ते तो कभी उसका। हाय हाय का शब्द निरंतर मुंह से निकल रहा था, पर उन बेरहमों को उन पर जरा भी दया नहीं आई। एक आदमी ने एक लात जमा कर कहा,
3: हाय हाय मर गए,
4: अरे इस दुष्ट की नाक काट दो,
5: इसके मुंह में काली और चूना लगाकर छोड़ दो।
1: अरे सरकार,
6: क्यों वैद्य जी, बोलो क्या मंजूर है, नाक कटवाओगे या मुंह में कालिख लगवाओगे?
3: हाय हाय मर गया, और चाहे जो कुछ करो नाक न काटो भाई,
5: अब तो फिर इधर नहीं आएगा।
3: बोल कर भी नहीं सरकार, हाय मर गया।
6: आज ही लखनऊ से रफूरेट हो जाओ, नहीं तो बुरा होगा।
3: सरकार में आज ही चला जाऊंगा, जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूँ, आप यहाँ मेरी सूरत न देखेंगे।
5: अच्छा भाई, सब कोई से पांच पांच लात लगाकर छोड़ दो।
3: अरे सरकार मर जाऊंगा, दया करो।
6: तुम
3: दया
6: जैसे करो, पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है। हाँ तो शुरू हो जाओ।
2: पंच लत्ती पड़ने लगी, धमाधम की आवाजें आने लगी। मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है, मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है। हर धमाके के बाद एक बार हाय की आवाज निकल आती थी, मानो उसकी प्रतिध्वनि हो। पंचलत्ती पूजा समाप्त होने पर लोगों ने मोटे राम जी को घसीट कर बाहर निकाला और मोटर पर बैठाकर घर भेज दिया। चलते चलते चेतावनी दे दी गई कि प्रातःकाल से पहले भाग खड़े होना, नहीं तो और ही इलाज किया जाएगा। मोटे राम जी लंगड़ाते करहाते लकड़ी टेकते हुए घर में घुसे और धम्म से चार पाई पर गिर पड़े। तभी उनकी पत्नी ने उनसे पूछा,
7: क्या हुआ जी, ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? हाय हाय, ये तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया?
3: हाय भगवान, मर गया।
7: कहाँ दर्द है? इसी मारे मैं कहती थी कि बहुत रबड़ी न खाओ, लवण भास कर ले आऊं तुम्हारे लिए।
3: हाय दुष्टों ने मार डाला, उसी दुष्टा के कारण तो ये मेरी दुर्गति हुई। मारते मारते सबों ने बुरकुस निकाल दिया।
7: हाँ। तो ये कहो ना कि पिट कर आए हो। हाँ, पिटे तो हो, अच्छा हुआ, हो तो तुम लातों के ही देवता। कहती थी कि रानी के यहाँ मत आया जाया करो, मगर तुम कब सुनते थे मेरी।
3: हाय हाय, अरे तुझे भी इसी दम कोसने की सूझी है, मेरा तो बुरा हाल है और तू कोस रही है। हाय, किसी से क्या कह, किसी से कह दे ठेला वेला ले आवे, रातों रात लखनऊ से भाग जाना है, नहीं तो सवेरे प्राण नहीं बचेंगे।
7: नहीं नहीं, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा, अभी कुछ दिन और यहाँ की हवा खाओ। कैसे मजे से लड़के पढ़ाते थे तुम वहां पर। हाँ नहीं तो वैद्य बनने की सूझ गई, वैद्य बनूंगा मैं। बहुत अच्छा हुआ, अब उम्र भर नहीं भूलोगे तुम ये बात। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें मार पड़ रही थी तब रानी कहाँ थी? तुम पिटते रहे और उसने तुम्हारी रक्षा भी नहीं की।
3: हाय हाय, अरे वो दुष्टा तो भाग गई, उसी के कारण क्या जानता था ये हाल होगा, नहीं तो उसका इलाज ही क्यों करता मैं।
7: वो तो तुम तकदीर के खोटे, कितनी अच्छी वैद्य की चल गई थी तुम्हारी, मगर तुम्हारी करतूतों ने सत्यानाश मार दिया, सत्यानाश। आखिर फिर वही पढ़ोनी करनी पड़ेगी ना, तकदीर के खोटे हो तुम।
2: और प्रातःकाल मोटे राम जी के द्वार पर ठेला खड़ा था और उस पर असबाब लद रहा था। मित्रों में एक भी नजर नहीं आता था। पंडित जी पड़े हुए कराह रहे थे।
3: हाय भगवान, मर गया।
2: और उनकी पत्नी सामान लदवा रही थी। अभी आप मुंशी प्रेमचंद जी की एक व्यंग रचना मोटे राम जी शास्त्री का वाचन सुन रहे थे। वाचन स्वर थे इलाशंकर गुहा, कंचन राजानी, जवाहरलाल शाह और अमित कुंदानी के। साउंड इंजीनियर अमित कुंदानी। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद। देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
8: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वागर्थ। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: आइए सुने देश प्रेम में डूबा ये गीत।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह नाटक के संपादित अंश।

0: जिसका मंचन हुआ 23 मार्च यानी शहीद दिवस के मौके पर। इस नाटक का निर्देशन किया सुंदरलाल मालवीय ने। यह प्रस्तुति रही मार्च शैली में। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग है।
1: मित्रों, मैंने जयदेव जी के असेंबली का पास वायस राय की निगरानी रखाओ कही दियो है।
2: ठीक है भगत, तुम असेंबली में बम फेंकवा के मत जाओ, आफत में पड़ी जाओ, और ये मैं नहीं चाहूंगा। अभी तुम्हारो भायर रहना जरूरी है।
3: सही बात है
1: आजाद जी, आप निश्चिंत रहो, मैं तो यो सब जनता के जगावा का वास्ते कर रही हूं।
2: तो ठीक है,
1: हमारी चिंता मत करो।
2: तो ठीक है, साथियों आप सब सुनी लो, आपके बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को ध्यान रखना। इनकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इनकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इनकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इनकलाब जिंदाबाद।
3: आज 8 अप्रैल 1929 को दल ने अपने भगत सिंह, अपना साथी, उनका साथ असेंबली का माय कार्यवाही शुरू की जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, पे अटेंशन।
4: इंकलाब जिंदाबाद,
3: वंदे मातरम, जय जवान।

0: हमारा सभी साथी लाहौर जेल में, आजाद जी फरार है और हमारा जीवन तो मृत्यु साधना का सिद्धांत पर चली
1: चली रही हो।
0: और हम अपनो बयान या जेल में नहीं, सीधो सेशन जज की अदालत का मायदागा। इनकलाब
2: जिंदाबाद,
0: वंदे
2: मातरम,
0: समाजवाद
2: मुर्दाबाद।
3: 4 जून 1924 का दिन भगत सिंह जी की पेशी दिल्ली की अदालत में हुई। कार्यवाही शुरू की जाए।
0: जज साहब, कानून पे कानून तमलाव हो और हमारे घना डराव हो। फ्रांस रूस की क्रांति देखो, कोई भी नहीं दबाई पायो। आजादी को कारगो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगो। और फांसी अगर न्याय तमारो तो फंदा कम पड़ जाएगा। दस साहब, हमारी बात सुनी के नौजवान में जोश खूब भराएगा। सच्चा वीर सपूत भारत माँ का देश पे बलि बलि जाएगा। इनकलाब
2: जिंदाबाद,
0: वंदे
2: मातरम,
0: समाजवाद
2: मुर्दाबाद।
3: देखियो, देखियो आपने भगत सिंह के बयान का सत। आखो देश भगत सिंह जी का साथे हुई गयो। बच्चों देश का ऊपर बलिदान करवा के लिए तैयार हुई। अब 10 जून 1929 का दिन फैसलो आवे।
4: ओ रामलाल जी।
5: अरे हाँ, क्या बात है रामलाल?
4: राव थोड़ा इधर आओ जरा।
5: हाँ,
4: काम की बात है।
5: हाँ।
4: हमारे मालूम है
5: कहीं
4: भगत सिंह ने बटुक केशर दत्त को आजीवन कारावास की सजा भई है।
5: हाँ,
4: और ने भगत सिंह के मियांवाली जेल में। हाँ। ने बटुक केशर दत्त के लाहौर जेल में भी सीधी है।
5: अरे?
4: और वहाँ पे भी हो। इनके साथ साथ सारा कैदी उन भी सब भूख हटा के बैठी जा। भगत सिंह ने वहाँ कितना परेशान कर रखा।
5: तुम सही कह रहा हो, वहाँ लाहौर जेल में भी बटुक केशर दत्त ने ऐसा ही माहौल बनाए रखे।
4: हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखा कर अपना।
5: तुम भी अपना ध्यान रखा करो। ठीक है, मिलते हैं फिर।
0: मैंने इंस्पेक्टर जनरल के पत्र लिखो कि हमारे यहाँ से लाहौर जेल भेजो जाए। और भी ने हमारी बात मानी ली है और अब मैं भी लाहौर जेल में आई हूँ।
3: दस जुलाई 1929 का दिन भगत सिंह जी की पेशी हुआ वाली थी, लेकिन बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की हालत ऐसी थी कि विद्रोही चले भी नहीं पाया था। जो सब सुनी के भारत की जनता का मन में अंग्रेज सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़तो जा रही थी। विद्रोही कदोई अदालत का माय हड़ताल पे बैठी गया। जो सब होना से अदालत की कार्रवाई में बाधा पहुंची, जब इनके पाछो जेल में पहुंची।
0: सरकार की परेशानी तो बढ़ती जा रही है, हमारा साथियों की हालत दिन पे दिन खराब हो रही है। सरकार तो चाह रही है कि हड़ताल खत्म हो जाए, पर यह हड़ताल तो चली रही है। तो हमारो ध्यान अब अपना साथियों की जान बचाव में। ए सुनो जरा, हमारा साथियों के पानी क्यों जाए।
6: ए सुनो, भगत सिंह वान हड़तालियों को पानी की जगह दूध दिया जाए।
5: सब दूध के मटके इनके लिए पहले से ही भरवा के रख दिए।
6: दूध हम में से कोई भी इना दूध के हाथ भी नहीं लगाएगो।
7: हम पानी ही पियांगा, थोड़ी दो इन मटका के,
0: थोड़ी दो मटका उनके।
6: है बस है बस, सब सब इन हड़तालियों ने कैदियों ने तो सारे सारे दूध का मटका फोड़ी दिया इन्हें। अरे इन हड़तालियों को पानी ही देना पड़ेगा, अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया तो ऊपर क्या जवाब देंगे?
0: जी सर। साथियों, अगर हमारा मित्र यतीन्द्र नाथ जी की मृत्यु नहीं होती तो हम पानी के कभी हाथ भी नहीं लगाता और या हड़ताल भी कभी समाप्त नहीं करता।
8: भगत, तुमने इन अंग्रेजों की हकीकत जनता के सामने लाके रखी थी।
0: मारो जो मकसद हो मैं उनमें सफल हो तो जा रही हूँ और हमारा मनोबल अब और बढ़ते जा रही है।

0: नौजवान मालूम है, ये नौजवान जो है नौजवान ये अपराधी नहीं है, और ये तो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी, हाँ क्रांतिकारी है,
1: क्रांतिकारी नहीं देशभक्त।
2: भगत सिंह जी की रणनीति से लाहौर षड्यंत्र रचियों ने पूरी अपना साथी उनका माय भिन्न जोश भरी। 1 मई के लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई थी।
3: इनकलाब
4: जिंदाबाद,
3: वंदे
4: मातरम,
3: भगत सिंह, सुखदेव,
2: राजगुरु।
1: कार्यवाही शुरू की जाए।
3: देख साहब, देश की खातिर कौन बाजी लगाएगा, और सुनिए कि महफिल में हमारा इम्तहान होएगा। ए खुदा वो दन भी आएगो जदे हम कायम होवांगा, जदे अपनी जमीन और अपना आसमान होएगा। इनकलाब
4: जिंदाबाद,
3: वंदे
4: मातरम,
3: साम्राज्यवाद
4: जिंदाबाद।

इनकी पिटाई देखी के आगा हैदर खान वहां से चलिया गया। तो फिर एक दिन फैसला आयो कि सुखदेव राजगुरु ने भगत सिंह जी के जल्द से जल्द फांसी दे दी।

0: बेटा भगत।
1: हाँ पिताजी।
2: मैंने सुने थारे फांसी होवा वाली।
1: हाँ पिताजी, तमने सही सुनी, मारे फांसी होवा वाली है।
2: देशभक्ति है इतनी बड़ी, हम समझा मां ने बाप, हारो छोरो फांसी चढ़ी दी, सीना में चली रिया।
1: पिताजी, म्हारी मौत जीवन से कीमती, सबके यो बतानो है, देश प्रेम की लो लगे ऐसो फर्ज निभानो है। तम मोह में मत पड़ जो, तमारो बेटो देश का वास्ते शहादत दई के देश की आजादी को रस्तो पक्को करनो चाहिए।
2: ठीक है भगत, वंदे मातरम।
3: वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम।
3: वंदे मातरम।
4: बेटा मारा, यो कई होएगी?
1: माँ, तू रोएगी तो लोग कहेगा कि वीर की मार हो रही है, भगत सिंह की मार हो रही है। तुम्हारी बात सुन माँ,

होनी के कौन टाली सके, वह तो अटल सत्य। समय सब गुंगो हुई के देखी हुई, लो फांसी को पैगाम ही आपके मालूम। भगत सिंह की फांसी से अंग्रेज सरकार इतनी डरी गई कि उनके एक दिन पहला फांसी पे चढ़ावों को हुक्म दिया। अखो देश, अखो देश भगत सिंह के बचाव की प्रार्थना करेगी। माँ ऐसो भाई चाहिए, माँ ऐसो बेटो चाहिए, बहन ऐसो भाई चाहिए, सबकी आख्या नम, मारी भी नम।

0: ये था मार्च 6 शहीद भगत सिंह, इसे लिखा था श्री सुंदरलाल मालवीय और यशस्विनी निगम ने, परिकल्पना निर्देशन और संगीत श्री सुंदरलाल मालवीय।
1: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नाटक शहीद भगत सिंह के संपादित अंश। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग था। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। लीजिए प्रस्तुत है नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। परिक्रमा के आज के सफर पर चलिए मेरे साथ।

श्रोताओं, मध्य प्रदेश सरकार भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरित श्री कृष्ण पाथेय न्यास के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण मेधावी स्कॉलरशिप योजना शुरू करने जा रही है। इसके लिए 10 अगस्त से प्रतियोगिता शुरू होगी। योजना का आधार ये विचार है कि वृंदावन की बाल लीलाओं से जुड़ी श्री कृष्ण की असीम ऊर्जा को उज्जैन स्थित महर्षि सांदीपनी के आश्रम में ज्ञान और दिशा मिली, जहाँ उनका व्यक्तित्व नीति ज्ञान और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में विकसित हुआ। श्री कृष्ण पाथेय के सीईओ और मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी के अनुसार योजना का उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ना है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उज्जैन स्थित महर्षि सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। यहीं उन्होंने 14 विद्याओं और 64 कलाओं का अध्ययन किया। माना जाता है कि इसी शिक्षा ने उनके व्यक्तित्व को नीति ज्ञान, नेतृत्व और लोक दृष्टि की विशेषता दी। इस योजना के तहत प्रदेश के 55 जिलों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी और कॉलेज विश्वविद्यालय के छात्र भाग ले सकेंगे। कुल 102 विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। प्रतिभागियों को मोबाइल किंग के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पात्र प्रतिभागियों में से विजेताओं का चयन लॉटरी से होगा। छात्रवृत्ति 1 नवम्बर को प्रदान की जाएगी।

तुलसी जयंती के अवसर पर गुरुवार को तुलसी मानस प्रतिष्ठान में आयोजित भक्ति संगीत और अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 का पद्म भूषण पंडित राम किंकर उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार लेखक एवं राष्ट्रचिंतक राम बहादुर राय को दिया गया। राय वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं। पत्रकारिता, राष्ट्र चिंतन और भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। समारोह में शर्मा बंधु और साथियों ने भक्ति संगीत की प्रस्तुति दी।

श्रोताओं, रविन्द्र भवन में गुरुवार शाम ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव में 6 देशों के कलाकारों ने लोक कला, संगीत और नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बेलारूस, ब्राजील, इंडोनेशिया, रूस, संयुक्त अरब अमीरात और भारत की प्रस्तुतियों ने सांस्कृतिक विविधता और साझा विरासत का संगम पेश किया। शाम की सबसे आकर्षक प्रस्तुति बेलारूस के गिनाडी सितोविच नेशनल एकेडमिक फोक क्वायर की रही। पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने लोकगीतों और लोक नृत्यों से खूब तालियां बटोरी। ब्राजील की कैपोयरा प्रस्तुति में मार्शल आर्ट, संगीत और नृत्य का संगम दिखा। इंडोनेशिया के कलाकारों ने बालिनीज स्वागत नृत्य और द लीजेंड ऑफ रोरो जोंगरांग प्रस्तुत किया। रूस ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों से समा बांधा, जबकि यूएई के सैफ अल अली ने आधुनिक अंदाज में अरब संगीत पेश किया। भारत की ओर से घूमर, कालबेलिया, चरी और भवाई की प्रस्तुति हुई। इस बीच गुरुवार को सचिव स्तर की बैठक में साझा सांस्कृतिक एजेंडे पर सहमति बन चुकी है। आज यानी 7 अगस्त को भोपाल में 12 देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक शुरू होगी।

श्रोताओं, सावन का पवित्र महीना आरंभ हो चुका है और शिवालयों समेत शहर भर में हो रहे हैं धार्मिक आयोजन। सावन महीने में शहर के मंदिरों में पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक और शिव महापुराण कथा जैसे धार्मिक आयोजन जारी हैं। गुरुवार को हर्षवर्धन नगर स्थित शिव शक्ति मंदिर में कलश यात्रा के साथ शिव महापुराण कथा शुरू हुई। टीला जमालपुर में 7 अगस्त से 3 दिवसीय 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण महोत्सव होगा।

श्रावण मास की हरियाली अमावस्या 12 अगस्त को मनाई जाएगी। इसी दिन सूर्य ग्रहण भी रहेगा, लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए मंदिरों में पूजा अर्चना, दान पुण्य, पौधारोपण और अन्य धार्मिक अनुष्ठान सामान्य रूप से संपन्न होंगे। पंडितों के अनुसार ये पर्व भगवान शिव, माता पार्वती और प्रकृति की आराधना का प्रतीक है। इस दिन पौधारोपण, पवित्र नदियों में स्नान, तर्पण, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण और दान पुण्य का विशेष महत्व है। गुफा मंदिर लालघाटी में महंत राम प्रवेश दास महाराज के सानिध्य में पौधारोपण और गौ सेवा होगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार की गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ और कोलार चेतना केंद्र में भी पौधारोपण किया जाएगा। संस्था सकारात्मक सोच भेल क्षेत्र के पार्कों में श्रमदान और स्वच्छता अभियान चलाएगी, जबकि भोपाल नागरिक विकास समिति कोटरा स्थित राम मंदिर परिसर में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाएगी।

और श्रोताओं, शहर में रह रहे मिथिलांचल समाज की नव विवाहितों ने गुरुवार को मधुश्रावणी पर्व पूरे श्रद्धा भाव और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मनाया। कोलार, दानिशनगर, भेल, अयोध्या बाईपास सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने सावन के बासी फूलों से माता गौरी, भगवान शिव और विषहरी नागिन की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान बिहुला विषहरी और मंगला गौरी की कथाएं भी सुनी गईं। महिलाओं ने पति की दीर्घायु, सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार की समृद्धि की कामना की। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। इसके साथ ही परिक्रमा का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। एक छोटा सा अंतराल लेंगे हम और उसके बाद कुछ देशभक्ति गीतों का आनंद आप ले सकते हैं। तो इंतजार कीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, बस कुछ ही देर में हम लौट कर आते हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, आपको हम याद दिला दें कि 15 अगस्त यानी हमारी स्वाधीनता का जो उत्सव है, इस दिन रविंद्र भवन परिसर हंसध्वनि सभागार में आज़ादी का महापर्व आयोजित किया गया है स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। और इस आज़ादी के महापर्व में हमारी आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंसध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में अवश्य पधारिएगा। स्वाधीनता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर मनाएं आज़ादी का महापर्व।

श्रोताओं, इस प्रसारण सभा में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता सिंह। आइए आपको कुछ देशभक्ति गीत सुनवाते हैं। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं श्री कृष्ण सरल की इस शब्द रचना से। संगीत निर्देशन उमेश वीनस तर्कसवार का।

0: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कुछ देशभक्ति रचनाएं। हमारी इस प्रसारण सभा में अभी बहुत कुछ खास है आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर देश का चैनल देश के लिए। जी हाँ, रेडियो आजाद हिंद।
1: संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी।
2: अपने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले हमारे वीर क्रांतिकारी, ऐसे लोग जिन्होंने देश को जिया, देश को सोचा, जो किया देश के लिए किया, ऐसे लोगों की यादों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर बाद। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी।
2: सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के मर्मज्ञ और विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। किसी भी देश की संस्कृति उसके निवासियों के रक्त में बहने वाली वो जीवनधारा होती है जिससे विश्व मानचित्र में उस देश की पहचान होती है। प्राचीन काल से चले आ रहे जीवन मूल्य, संस्कार, परंपराएं उस देश के कण कण में समाहित होकर उसका मिजाज तय करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी देश को गुलाम बनाना हो, उस पर लंबे समय तक राज करना हो, तो सबसे पहले उस देश की संस्कृति पर चोट करनी चाहिए। यही कारण है कि जब अंग्रेज भारत आए और उसे गुलाम बनाना चाहा, तो भारत की सनातन संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया। भारत पर शासन करने के साथ साथ अंग्रेजों ने अनेक ऐसी नीतियां बनाई जिससे भारतीय संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जाए। भारत की आजादी की लड़ाई में एक युद्ध अगर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध था, तो दूसरा युद्ध भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए भी समानांतर चलता रहा। इस दिशा में नागरी प्रचारणी सभा काशी, ज्ञान मंडल वाराणसी जैसे केंद्रों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के जाने अनजाने पक्षों और ज्ञान की धारा को विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से प्रकाशित किया। भारतीय संस्कृति की रक्षा के महान उद्देश्य के साथ ही धर्मपाल जी आजीवन शोध करते रहे। शिवप्रसाद गुप्त ने काशी विद्यापीठ की स्थापना इसी उद्देश्य से की और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के मर्मज्ञ और प्रकांड विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल की मेधा पुष्पित पल्लवित हुई। भारत की पराधीनता को उन्होंने जितना अधिक महसूस किया, उतना ही अधिक भारतीय संस्कृति की तरफ उनका रुझान बढ़ता गया। साहित्य में उनकी गहरी रुचि थी, लेकिन उनके चिंतन का केंद्र थे भारतीय संस्कृति और पुरातत्व। यही कारण है कि हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ उन्होंने पाली और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया तथा इन भाषाओं के साहित्य का गहन अध्ययन कर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने संस्कृत और हिंदी के अनेक ग्रंथों का सांस्कृतिक अध्ययन किया तथा उनकी व्याख्या की। हमारे पौराणिक ग्रंथों और महाभारत के साथ साथ पाणिनि, कालिदास और वाणभट्ट आदि की रचनाएं, विद्यापति और मलिक मोहम्मद जायसी जैसे रचनाकारों के ग्रंथरत्न उनके अवगाहन का विषय रहे। अपनी रचनाओं से उन्होंने भारत की संस्कृति और जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। उन्होंने भाषा और साहित्य के सहारे भारतीय संस्कृति का अनुसंधान तथा पुनर्मूल्यांकन किया।

डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। माता पिता लखनऊ के रहने वाले थे, इसलिए उनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। लखनऊ में ही उनकी आरंभिक शिक्षा हुई और उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वासुदेव शरण अग्रवाल ने लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया पाणिनिकालीन भारतवर्ष, जिस पर उन्हें पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। इसके बाद यहीं से उन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। उन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर उनके प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। वो जानते थे कि बहुत सा प्राचीन भारतीय साहित्य और लिखित साक्ष्य आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया है। जो कुछ लिखित साक्ष्य उपलब्ध है उनका पढ़ा जाना आवश्यक है, लोगों तक उनकी पहुंच बनाना आवश्यक है। इसीलिए डॉक्टर अग्रवाल ने इन भाषाओं में उपलब्ध प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया तथा उनके सही अर्थों की विवेचना करते हुए आधुनिक हिंदी में लिखकर उन्हें लोगों तक पहुंचाया। इस तरह अपने ज्ञान और चिंतन से उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पुरातत्व को ही अपना प्रमुख विषय बनाया और अनेक महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की, जिन्हें आज हिंदी साहित्य धरोहर की तरह संजोता है। उनके निबंध संग्रहों में प्रमुख हैं पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, वेद विद्या, कला और संस्कृति आदि। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वाल्मीकि और मनु पर पौराणिक निबंध भी लिखे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने वाणभट्ट के प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ हर्षचरितम का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत की संजीवनी व्याख्या भी की। इस तरह अपने निबंधों के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति को समझने समझाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। इसी उद्देश्य से वो पूरे जीवन भारत माता के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करते रहे।

अपनी अनमोल कृतियों की बदौलत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल साहित्य जगत में एक मनीषी, एक प्रकांड विद्वान के रूप में स्थापित हुए। ग्रंथ आधारित विवेचनात्मक अध्ययन की श्रृंखला में उन्होंने मेघदूत एक अध्ययन, कादंबरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, कीर्तिलता, भारत सावित्री, मार्कंडेय पुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन आदि अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं की। इतिहास दर्शन और भारतीय धर्म मीमांसा जैसे निबंध संग्रहों के साथ ही उन्होंने अनेक किताबों का अनुवाद भी प्रस्तुत किया। डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग होने के बावजूद एक सरसता है, लेकिन विषय के अनुरूप उनकी शैली गंभीर है। उनके लेखन में विचार, भाव, उद्धरण और व्याख्या का समावेश है। यही कारण है कि उनकी सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक रचनाएं हिंदी साहित्य का गौरव हैं। राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय दिल्ली की स्थापना में भी डॉक्टर अग्रवाल का प्रमुख योगदान है। साहित्य साधना के साथ साथ उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। वो मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष रहे। वो भारतीय पुरातत्व विभाग तथा राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे। इसके साथ ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में उन्होंने प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर अग्रवाल जिस भी रूप में सक्रिय रहे, भारतीय संस्कृति और भारत गौरव उनके चिंतन में सदा प्राथमिकता में रहा। यही कारण है कि उनके लेखन में भारत की सनातन संस्कृति का गौरवशाली रूप व्यक्त हुआ है। वो जीवन पर्यंत लिखते रहे तथा कई ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन भी किया। 27 जुलाई सन 1967 को इस साहित्य पुरोधा ने अंतिम सांस ली। हिंदी साहित्य जगत में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की मौलिकता, विचार

0: याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी।
1: हमारे अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, देश पर सर्वस्व कुर्बान करने वाले लोगों की यादों पर आधारित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पुलोरन और मैनहट्टन जायफल के लिए हुआ इतिहास का सबसे बड़ा सौदा। क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे प्रसिद्ध रियल एस्टेट सौदा मैनहट्टन की खरीद वास्तव में इंडोनेशिया के एक छोटे और सुदूर द्वीप पुलोरन से जुड़ा था। आज भले ही मैनहट्टन गगनचुंबी इमारतों का एक वैश्विक जंगल है, लेकिन 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ये केवल एक दलदली बस्ती हुआ करती थी, जिसमें कोई मसाले का उत्पादन भी नहीं होता था। नक्शे पर पुलोरन को खोजने के लिए आपको कमरे के आकार के कागज की जरूरत होगी। ये केवल 2 मील लंबा और आधा मील चौड़ा है। इसके चारों ओर घूमने में मात्र 1 घंटा लगता है और यहाँ ताजे पानी का कोई स्रोत नहीं है। फिर भी ये द्वीप मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस का घर था, जिसे आमतौर पर जायफल के पेड़ के रूप में जाना जाता है। 1603 में जायफल और उसकी बाहरी झिल्ली जावित्री वनस्पति जगत की कीमती वस्तुएं थी, जिनका उपयोग मांस को सुरक्षित रखने और महंगे स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में किया जाता था। क्या आप जानते हैं कि बांदा में 10 पाउंड जायफल की कीमत आधे पैसे से भी कम थी, लेकिन यूरोप में इसे 32,000% के चौंका देने वाले मुनाफे पर बेचा गया। जायफल का लालच इतना अधिक था कि राजा जेम्स प्रथम ने अंततः खुद को इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, पुलोवे और पुलोरन का राजा घोषित कर दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए पुलोरन का महत्व जायफल की एक पौध में निहित था। 1616 में यहाँ के द्वीपवासी, जो कि ओरांग काया नामक प्रधानों द्वारा शासित स्वशासी गणराज्य थे, उन्होंने डच उत्पीड़न से बचने के लिए अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। उन्होंने अंग्रेजों को पुलोरन की पीली मिट्टी में लगा हुआ जायफल का एक पौधा भेंट किया। ये विश्वास का एक बड़ा कार्य था, क्योंकि बांदावासी अपने एकाधिकार की रक्षा के लिए इन पौधों की कड़ी निगरानी करते थे। क्या आप जानते हैं कि इस नन्ही सी पौध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना स्वरूप बदलने पर मजबूर कर दिया? चूंकि उस समय कंपनी को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, इसलिए उसने क्राउन की ओर से द्वीप को स्वीकार किया। इसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल ने एक नया चार्टर जारी किया, जिसने कंपनी को विदेशी क्षेत्रों में किलेबंदी करने और बसने की अनुमति दी। हालांकि डचों के खिलाफ पुलोरन पर कब्जा बनाए रखना एक तनावपूर्ण और महंगा दायित्व था, जिसमें 4 साल की लंबी नाकेबंदी शामिल थी। इन मसालों के द्वीपों को लेकर अंग्रेजों और डचों के बीच प्रतिद्वंद्विता इतनी तीव्र थी कि डचों के अलावा किसी और के साथ व्यापार करना देशद्रोह माना जाता था। अंततः 1667 में 60 वर्षों के दबाव के बाद ब्रिटिश क्राउन ने हिसाब बराबर करने का फैसला किया। ब्रेडा की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने पुलोरन के सभी अधिकार डचों को सौंप दिए। बदले में उन्हें उत्तरी अमेरिकी समुद्र तट पर न्यू एम्स्टर्डम नामक एक बस्ती मिली, जिसका नाम उन्होंने तुरंत बदलकर न्यूयॉर्क रख दिया। उस समय डचों को लगा होगा कि उन्होंने अंग्रेजों को ठग लिया है। दुनिया के सबसे मूल्यवान मसाले पर एकाधिकार के बदले मैनहट्टन जैसा बिना मसालों वाला द्वीप देकर। क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया के इस छोटे से द्वीप के बिना बिग एप्पल का इतिहास डच भाषा में लिखा गया होता? भले ही बाद में पुलोरन उपेक्षित हो गया और इसके पेड़ काट दिए गए, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के जन्म में मैनहट्टन की तुलना में पुलोरन के इस छोटे से जायफल की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इंडोनेशिया के उस छोटे से पौधे के बिना आज न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों पर शायद अभी भी डच झंडा फहरा रहा होता। ये एक याद दिलाता है कि ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा इंडिया से अधिक ईस्ट के बारे में थी।
3: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, कुछ ही पलों में हम लेकर उपस्थित होंगे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।
2: हाजिर है कला, संस्कृति और अदब का आपका पसंदीदा कार्यक्रम कला कल्लोलनी, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकारों की आवाज वक्त की बंदिशों को तोड़कर सदियों तक गूंजती रहती है। आज की विशेष कड़ी किसी आम सफर की नहीं, बल्कि भारतीय रंगमंच के उस वटवृक्ष की दास्तान है, जिसने आधी सदी से भी ज्यादा समय तक अपनी सांसों से थिएटर को सींचा है। जी हाँ, रंगमंच महज लकड़ी का एक बेजान तख्ता या कुछ चमकदार रोशनियों का कौतूहल नहीं है। यह मनुष्य की आत्मा का वह खुला चौक है, जहां समाज अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ नग्न खड़ा होता है। जब थिएटर का पर्दा उठता है तो सिर्फ एक नाटक शुरू नहीं होता, बल्कि जिंदगी अपने सारे मुखौटे उतारकर सच से आंखें मिलाती है। सिनेमा जहां कट और रीटेक के कंक्रीट के पीछे छुप सकता है, वहीं रंगमंच एक जलती हुई भट्टी है और यहां वही टिक सकता है जो तपने का मादा रखता हो। इस भट्टी में तपकर जो कुंदन बना और जिसने भारतीय थिएटर को एक नई गरिमा, एक नया अनुशासन और एक नया दर्शन दिया, उस महानायक का नाम है रामगोपाल बजाज। बजाज साहब का रंगमंच पर होना ऐसा है जैसे किसी घने पुराने जंगल में एक शांत और विशाल वटवृक्ष का होना।
3: वक्त की इस नाव पर सवार होकर आज हम सब रुक करते हैं बिहार के सहरसा जिले के उस कोशी अंचल की तरफ, जहां की लहरों में जितना बहाव है, आदरणीय बजाज साहब के भीतर की कला में भी उतनी ही गहराई है। 1 जुलाई 1940 को इसी अंचल की गोद में एक ऐसे बालक का जीवन शुरू हुआ जिसका बचपन बाहरी पाबंदियों से कहीं ज्यादा अपने भीतर के एक अनकहे सन्नाटे से गुजरा। रामगोपाल बजाज का बचपन घोर अभाव में बीता था। गांव या मोहल्लों में रामलीला का मंचन सजता या कोई पारंपरिक नौटंकी आती तो ये बालक सब कुछ भूलकर अपनी पढ़ाई की किताबें छोड़कर बस उन कलाकारों के चेहरों, उनकी बुलंद आवाजों और मंच की उस तिलिस्मी रोशनी को निहारता रहता। घर से डांट पड़ती, पाबंदियां लगती, मगर जो चिंगारी भीतर सुलग रही हो उसे बाहर की पाबंदियां भला कैसे बुझा सकती थी। वो छुप छुप कर नाटकों की किताबें पढ़ते और बचपन का यही मानसिक और कलात्मक संघर्ष दरअसल उनके भीतर के उस महान रंगकर्मी को जन्म दे रहा था।
2: रंगमंच की तरफ पहला झुकाव बजाज साहब ने खुद बताया था कि बचपन में उनके घर के पास एक मारवाड़ी पुस्तकालय था और पास में ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय या स्थानीय क्लबों के माध्यम से कभी कभी नाटक होते थे। बचपन में उन्होंने जहां पारसी थिएटर शैली के नाटक और स्थानीय रामलीलाएं देखी, उन नाटकों के संवादों का लहजा और मंच की दुनिया उनके बाल मन में ठहर गई थी। वह छुपकर नाटक देखने जाते थे क्योंकि घर में पता चलने पर सख्त मनाही थी। उनके भीतर कला को लेकर एक अजीब सी तड़प थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और कोशी अंचल की मिट्टी में पला बढ़ा वो मासूम बालक अब धीरे धीरे किशोरावस्था की दहलीज लांघकर जवानी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इस उम्र में जहां अमूमन लड़के दुनियादारी की फिक्र में खो जाते हैं, वहीं बजाज साहब के भीतर कला और वैराग्य का एक अद्भुत संगम आकार ले रहा था। गांव में जब कोई भी तीज त्योहार आता तो वे ढोलक और मजीरों की थाप पर होने वाले भजन कीर्तनों में पूरी तन्मयता से शामिल हो जाते। रामलीला के मंच पर सजने वाले किरदारों को एकटक निहारना, बंद कमरों में गीता के श्लोकों की गहराई को टटोलना और छुप छुप कर नई कहानियों और कविताओं को पढ़ना उनकी इस दीवानगी को और परवान चढ़ा रहा था।
3: उम्र के इस पड़ाव पर एक अजीब सा अल्हड़पन था, एक बेलौस बेफिक्री थी। ये जवानी का वो दौर था जहां आवारगी भी थी और कुछ नया सीखने सिखाने की असीम ललक भी। दोस्तों के साथ बेमकसद घूमना, घंटों कला और अदब पर बहस करना और जिंदगी के थपेड़ों से लड़ते हुए आगे बढ़ना। इसी उठती जवानी के शोर और सूफियाना तन्हाई के बीच राम गोपाल बजाज के भीतर का वो अंगार तैयार हो रहा था जिसकी तपिश आगे चलकर पूरे भारतीय थिएटर को महसूस करनी थी।
2: दरभंगा के सीएम कॉलेजों की बंदिशों से आजाद होकर जब वो नौजवान घर से बाहर कोलकाता पहुंचा तो जेब पूरी तरह खाली थी। न रहने का ठिकाना, न खाने का कोई सहारा। बजाज साहब स्वयं अपने इस दौर को याद करते हुए बताते हैं कि जब वे कलकत्ता के मशहूर ईडन गार्डन में बेबसी की हालत में बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ लोग घूम घूम कर चंपी कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। बस पेट की आग और उस सूनेपन के बीच इस खुददार नौजवान के दिमाग में एक विचार आया कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। कम से कम दो आना तो मिलेगा ही, जिससे दो वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम हो सके और पेट भर सके।
3: कलकत्ता के उन मसरूफ और अजनबी सड़कों पर अपनी पहचान और वजूद तलाशते हुए बजाज साहब ने केवल थिएटर ही नहीं देखा बल्कि जिंदगी को बहुत करीब से भी महसूस किया। खुद को जिंदा रखने के लिए और पेट की आग बुझाने के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम किए ताकि वे कलकत्ता में टिक सके, लेकिन उनका असली ठिकाना था वहां के थिएटर, ऑडिटोरियम और नुक्कड़।
2: उस दौर में कलकत्ता में पारसी थिएटर का असर तो था ही, साथ ही इप्टा की प्रगतिशील चेतना भी चरम पर थी। बजाज साहब घंटों भूखे प्यासे रहकर और बांग्ला रंगमंच के उस असीम अनुशासन को अपनी आंखों से समेटते। उन्होंने वहां केवल अभिनय की तकनीकें नहीं सीखी बल्कि उन्होंने देखा कि कैसे रंगमंच समाज की विसंगतियों पर सीधे प्रहार करता है। कलकत्ता के इसी साहित्यिक माहौल ने उनके भीतर छुपे अनुवादक और लेखक को भी जगाया, जहां उन्होंने बांग्ला और विश्व साहित्य के महान नाटकों को पढ़ना शुरू किया।
3: और वो अक्सर कहा करते थे कि कलकत्ता ने उन्हें वो दृष्टि दी जिसने उनके भीतर के अकेलेपन को एक वैचारिक गहराई में बदल दिया। वे समझ गए थे कि थिएटर महज मनोरंजन नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। और यही तजुर्बा, यही तपन और कलकत्ता का यही कड़ा संघर्ष आगे चलकर उनके जीवन का वो सबसे बड़ा आधार बना जिसने उन्हें सीधे दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां भारतीय रंगमंच का एक नया इतिहास उनका इंतजार कर रहा था। कलकत्ता के इसी साहित्यिक माहौल ने उनके भीतर छुपे अनुवादक और लेखक को भी जगाया, जहां उन्होंने बांग्ला और विश्व साहित्य के महान नाटकों को पढ़ना शुरू कर दिया।
2: कलकत्ता की गलियों में अपनी कलात्मक भूख और इस कड़े संघर्ष को जीने के बाद वे बिहार की राजधानी पटना आए और यहां से उन्होंने नए सिरे से अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। पर आर्थिक तंगी ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। पटना विश्वविद्यालय में एमए हिंदी लिटरेचर की पढ़ाई के दौरान फीस भरने के पैसे नहीं थे। तब इस स्वाभिमानी लड़के ने अपनी कुशाग्र बुद्धि के दम पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं जीती और इनाम के रूप में पुअर बॉयज फंड से अपनी आगे की पढ़ाई का खर्च निकाला। लेकिन जब तक ये बात रूढ़िवादी बजाज खानदान को पता चली तो खानदान के लोगों को झूठी शान की ठेस लगी। वे गुस्सा हो गए कि हमारी बिरादरी का लड़का पुअर बॉयज फंड से क्यों पढ़ेगा। पर इस फक्कड़ कलाकार को किसी की झूठी शान की परवाह कहाँ थी। उन्होंने दिन में कॉलेज की पढ़ाई की और रातों के अंधेरे में अपनी पहचान छुपाने के लिए भेष बदलकर पटना की सड़कों पर रिक्शा तक चलाया।
3: क्या बात है, संघर्षमय मिट्टी से तपकर जब वे बाहर निकले तो उनका साहित्य से रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। बचपन में अपनी पूज्य दादी माँ को भगवत गीता और रुक्मणी मंगल का पाठ पढ़कर सुनाने वाले बजाज साहब अब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं के दीवाने हो चुके थे। आगे चलकर आधुनिक कविता के पुरोधा अज्ञेय जी से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने बजाज साहब के भीतर के उस संवेदनशील कवि को पहचान लिया। पटना में रहते हुए जब वे एमए प्रीवियस पास कर चुके थे तभी उनकी मुलाकात हिंदी के महान कथाकार परेश्वरनाथ रेणु जी से हुई।
2: रेणु जी इस नौजवान की आंखों में चमक और प्रतिभा भांप गए। उन्होंने बजाज साहब को पटना की एक स्थानीय ड्रामा मंडली से मिलवाया। उन्हीं दिनों पटना में एक सज्जन मिले, हामिद साहब, जो किराए पर कमरे चलाया करते थे। हामिद साहब ने इस बेसहारा कलाकार को न केवल छत दी बल्कि जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NSD के इंटरव्यू का बुलावा आया तो अपनी जेब से कुछ पैसों की मदद भी की। हामिद साहब की उन्हीं पैसों का सहारा लेकर यह नौजवान दिल्ली पहुंचा। MA फाइनल की परीक्षा देने से पहले ही उसका सिलेक्शन सीधे NSD में हो गया। दिल्ली आकर उन्होंने रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी साहब के कड़े अनुशासन में रंगमंच का काखा गा सीखा। सन 1965 में राम गोपाल बजाज जी का NSD में चयन हो गया था।
3: और राम गोपाल बजाज पटना विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में मास्टर की पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके और दिल्ली स्थित NSD चले गए। वे 1965 के बैच के छात्र रहे। उन्होंने अभिनय में अपना डिप्लोमा पूरा किया। NSD में उन्हें प्यार से बड़े छोटे सभी बज्जू भाई बज्जू सर कहते थे। वो हमेशा से सभी का साथ देने वाले मददगार दोस्त साथी और शिक्षक रहे। उन दिनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में अंग्रेजी का माहौल बहुत ज्यादा था। खुद रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी साहब बड़े सलीके से अंग्रेजी बोलते थे, जबकि राम गोपाल बजाज जी की हिंदी बेहद मुकम्मल शुद्ध और साफ थी। दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक सौदा हुआ। अलकाजी साहब ने बजाज साहब से कहा, तुम मुझे हिंदी सिखाना, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा।
2: भाषा का ऐसा अद्भुत आदान प्रदान रंगमंच के इतिहास में बिरला ही देखने को मिलता है। अलकाजी साहब हिंदी कविता और उसके ठहराव को सीखने के लिए इतने आतुर रहते थे कि कई बार सुबह बेहद तड़के भोर में ही बजाज साहब को बुला लिया करते और उनसे घंटों डूबकर हिंदी की कविताएं सुना करते थे।
3: अलकाजी साहब के उसी कड़े अनुशासन और प्यार की छाव में बज्जू भाई ने कई नाटकों में काम किया। उन्होंने अंधा युग, तुगलक जैसी कई ऐतिहासिक और कालजयी प्रस्तुतियों में साथ काम करके भारतीय रंगमंच का इतिहास बदल दिया। हालांकि किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में उनके द्वारा साथ किए गए कुल नाटकों की कोई निश्चित संख्या दर्ज नहीं है, पर यह बात पूरी दुनिया जानती है कि इब्राहिम अलकाजी ने राम गोपाल बजाज को आधुनिक हिंदी रंगमंच का एक सशक्त, निडर और बेमिसाल अभिनेता बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बजाज साहब आज भी जब अलकाजी साहब को याद करते हैं तो अंधा युग के वो दिन उनकी आंखों में एक जीवंत दृश्य की तरह तैरने लगते हैं।
2: न कोई जबां आड़े आई, न कोई दस्तूर आड़े आया, मुर्शिद ने जब मुरीद को अपनी रूह से मिलाया, एक दूजे को सौंप दी दोनों ने अपनी कायनात, उधर से इल्म बहा, इधर से अदब का दरिया आया। दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD की चौखट पर कदम रखने के बाद इस खुद्दार नौजवान ने जैसे रंगमंच को ही अपनी इबादत बना लिया था। बजाज साहब ने वहां केवल अभिनय की बारीकियों को ही नहीं साधा बल्कि नाटक की मुकम्मल रूह को समझा। मंच की रोशनियां कैसे भावनाओं को उभारती हैं, सेट कैसे एक बेजान जगह को जिंदा करता है और वेशभूषा जैसे किसी किरदार को वजूद देती है। उन्होंने इन सब विधाओं को पूरी लगन से सीखा और इसके साथ ही उनका नाता विश्व और हिंदी साहित्य के महान लेखकों से और गहरा होता गया।
3: लेकिन इन सब चमक धमक और कला के शोर के बीच कई बार रातों के सन्नाटे में घर की याद उन्हें घेर लेती थी। अपनी पूज्य दादी माँ की ममता और उनके आंचल की खुशबू को याद करते हुए इस संवेदनशील कलाकार की आंखें भर आती थी। उस वक्त जब मंडी हाउस की भीड़ अपने चरम पर होती, तब इस युवा रंगकर्मी का दिल करता कि वे इस हुजूम से अलग होकर कहीं दूर बिल्कुल एकांत में चले जाएं। दरअसल बजाज साहब भीतर से हमेशा एक बेहद आध्यात्मिक इंसान रहे, जो बाहरी दुनिया के शोर से थककर एकांत के उसी सन्नाटे में खुद को भीतर से शांत करते थे, अपने जख्मों को सहलाते थे। उनके लिए अकेलापन का वो सूनापन कोई सजा नहीं थी बल्कि एक रूहानी वरदान था, जिसे महसूस करते हुए अक्सर सोचते थे, अकेलेपन से बढ़कर आनंद नहीं, आराम नहीं, स्वर्ग है वो एकांत जहां शोर नहीं, धूमधाम नहीं। ऐसे भावों को लेकर मुझे DH लॉरेंस की लिखित और दिनकर की अनुवादित वो कविता याद आ रही है।
2: देश और काल के प्रसार में शून्यता, अशब्दता, अपार में चांद जब घूमता है कौन सुख पाता है, भेद यह मेरी समझ में तब आता है, होता हूं जब मैं अपने भीतर के प्रांत में, भीड़ से दूर किसी निभृत एकांत में, और तभी समझ यह पाता हूं पेड़ झूमता है किस मोद में, खड़ा हुआ एकाकी पर्वत की गोद में, बहता पवन मंद मंद है, पत्तों के हिलने में छंद है, आह कितना आनंद है।
3: बिल्कुल, भीड़ से दूर अपने भीतर के इसी निभृत एकांत में बैठकर उन्हें ब्रह्मांड के इस परम सत्य का बोध होता था। प्रकृति के इस मूक संगीत, हिलते पत्तों के छंद और मंद मंद बहती हवा के इसी रूहानी आनंद ने उनके भीतर के अकेलेपन को एक दिव्य दार्शनिकता में बदल दिया, जिसने आगे चलकर उनके अभिनय और निर्देशन को एक अमर और कालजयी गहराई प्रदान की।
2: NSD से शिक्षा पूरी करने के बाद रामगोपाल बजाज जी केवल एक छात्र नहीं रहे, वे सालों तक इस प्रतिष्ठित संस्थान की फैकल्टी के रूप में नए कलाकारों को गढ़ते रहे और आगे चलकर नवंबर 1995 से सितंबर 2001 तक इसके निदेशक डायरेक्टर बने। बतौर निदेशक उनका यह कार्यकाल भारतीय रंगमंच का स्वर्ण युग साबित हुआ। वे सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि थिएटर के हर विभाग जैसे मेकअप, स्टेज लाइटिंग और प्रोडक्शन डिजाइनिंग के एक सिद्ध ऑलराउंडर थे, जिन्होंने स्कूल की अकादमिक और कलात्मक रीढ़ को मजबूत किया।
3: उन्होंने विस्तार, प्रकाशन और दस्तावेजीकरण जैसे कार्यक्रमों को एक नई दिशा दी। रंगमंच की दुनिया में उनका सबसे ऐतिहासिक योगदान था भारत रंग महोत्सव। 1999 में आजादी की स्वर्ण जयंती पर शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल और पूरी तरह उन्हीं की कल्पना से उपजा जश्न बचपन व बाल संगम। इन उत्सवों ने देश विदेश के थिएटर समूहों, वयस्कों, बच्चों और पारंपरिक लोक कलाकारों को एक वैश्विक मंच दिया। स्कूल की शिक्षा प्रणाली में थिएटर को अनिवार्य करने की जोरदार वकालत करने वाले बजाज साहब दिल्ली के मशहूर देशांतर थिएटर ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से भी एक रहे हैं।
2: मंच, रेडियो, टीवी और फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले बजाज साहब के पास कविताओं के पाठ और उनकी प्रस्तुति का एक ऐसा जादुई हुनर है कि जब वे बोलते हैं तो शब्द जीवंत हो उठते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बुनियाद खड़ी करने में इब्राहिम अलकाजी की बड़ी भूमिका रही। ये भी असंदिग्ध है कि उन्होंने नाट्य प्रशिक्षण की जो आधारशिला रखी, उसकी वजह से कई अच्छे अभिनेता और निर्देशक रंगमंच के क्षितिज पर आए।
3: अलकाजी साहब अपनी तरह के अद्वितीय रंग व्यक्तित्व हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं, किंतु उसके बाद NSD के सबसे कल्पनाशील निदेशक बज्जू भाई ही हुए और इस संस्था की परिधि का विस्तार जितना उन्होंने किया वो कोई और नहीं कर सका। उनके चलाए हुए कुछ कार्यक्रम तो अब लगभग बंद ही हो गए हैं, जैसे कि श्रुति। बज्जू भाई द्वारा बनाई गई परिधि अब छोटी पड़ती जा रही है। बजाज साहब ने अपने कार्यकाल में हिंदी की नाट्य पत्रिका रंग प्रसंग की शुरुआत की। उनके कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में श्रुति कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें हिंदी के वरिष्ठ या युवा लेकिन चर्चित कथाकार या कवि आकर रचना पाठ करते थे
2: और इसी कारण से हिंदी भाषी समाज और नाट्य विद्यालय का एक गहरा जीवंत रिश्ता बन गया था। बज्जू भाई ने ही बहावलपुर हाउस परिसर में सम्मुख थिएटर बनवाया और फिर अभिमंच बनाना शुरू किया, जो अंकुर जी के कार्यकाल में पूरा हुआ। 1996 में बज्जू भाई ने बतौर निर्देशक स्कूल के दीक्षांत समारोह के अवसर पर एकल अभिनय नाट्य समारोह करवाया, जिसमें लक्ष्मण देशपांडे, वीणा पाणी चावला से लेकर नसीरुद्दीन शाह जैसे अभिनेताओं ने शिरकत की। उस दीक्षांत समारोह में धर्मवीर भारती मुख्य अतिथि रहे।
3: निर्देशन की बात करें तो NSD और उसकी रिपेट्री कंपनी, जिसके वे 1988 से 1994 तक प्रमुख भी रहे, उनके नाटक भारतीय रंगमंच के मील के पत्थर बन गए। इस सफर की शुरुआत 1974 में सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक जैसे कालजयी नाटक से हुई। इसके बाद 1977 में जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक स्कंदगुप्त, 1989 में मिर्जा गालिब के दर्द को समेटते कैदे हयात और 1992 में मोहन राकेश की अमर कृति आषाढ़ का एक दिन का निर्देशन कर उन्होंने निर्देशन कला की नई परिभाषाएं सीखी।
2: केवल निर्देशन ही नहीं, उनके भीतर का संवेदनशील लेखक भी उतना ही प्रखर था, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण गिरीश कर्नाड के कन्नड़ नाटक ताले दंड का रक्त कल्याण के नाम से किया गया उनका शानदार हिंदी अनुवाद है। इस अनुदित नाटक का निर्देशन पहले रिपेटरी के लिए स्वयं उनके रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी ने और बाद में अस्मिता थिएटर के लिए अरविंद गौड़ ने किया। सचमुच कोशी अंचल की मिट्टी से निकला यह फक्कड़ और दार्शनिक कलाकार जब दिल्ली के मंडी हाउस के गलियारों में उतरा तो उसने न केवल खुद को साबित किया बल्कि समकालीन भारतीय थिएटर का पूरा भूगोल और इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
3: जी हाँ, रामगोपाल बजाज बज्जू भाई जी की देखरेख और मार्गदर्शन में भारतीय रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन की कई उत्कृष्ट पीढ़ियां तैयार हुईं। उनके प्रमुख शिष्यों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, आशुतोष राणा, सीमा विश्वास, गोविंद नामदेव, यशपाल शर्मा और स्वर्गीय श्री वल्लभ व्यास जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं, जिन्होंने उनसे अभिनय और थिएटर के कड़े अनुशासन की बारीकियां सीखकर आज पूरी दुनिया में अपनी कला का परचम लहराया है।
2: पद्मश्री से सम्मानित रामगोपाल बजाज केवल थिएटर के ही बेताज बादशाह नहीं रहे, बल्कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के पर्दे पर भी उन्होंने अपनी अदाकारी का ऐसा रंग बिखेरा जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आषाढ़ का एक दिन जैसे कालजयी नाटकों से अभिनय का ककहरा शुरू करने वाले बजाज साहब ने जब सिल्वर स्क्रीन की तरफ रुख किया तो वहां भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। शेखर कपूर की मासूम 1983 हो या केतन मेहता की समीक्षकों द्वारा बेहद सराही गई मिर्च मसाला फिल्म 1985 हो या फिर यश चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर फिल्म चांदनी 1989 हो, बजाज साहब ने हर बड़े निर्देशक के विजन में खुद को एक मुकम्मल अभिनेता के रूप में ढाला। उनकी अभिनय की रेंज इतनी व्यापक थी कि जहां एक तरफ वे लीक से हटकर दीपा मेहता की फायर 1996 जैसी फिल्मों का हिस्सा बने, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने भारत का परचम लहराया जब वे ग्लोबल स्टार जैकी चैन की मशहूर फिल्म द मिथ 2005 में एक मार्शल आर्ट्स शिक्षक की दमदार भूमिका में नजर आए।
3: और वक्त बदला, सिनेमा का मिजाज बदला, लेकिन बजाज साहब की कला का जादू हमेशा नया बना रहा। सिनेमा के बदलते दौर के साथ कदम मिलाते हुए उन्होंने आधुनिक सिनेमा और ओटीटी की दुनिया में भी उतनी ही सहजता से प्रवेश किया। उनका संजीदा अभिनय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना बटोरने वाली फिल्में मैंगो ड्रीम्स, इन प्रस्तुतियों के जरिए उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा कलाकार कभी पुराना नहीं होता। उसकी कला वक्त के हर फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक और देश के इस महान ऑलराउंडर का ये फिल्मी सफर महज कुछ फिल्मों की सूची नहीं है, बल्कि ये गवाही है इस बात की कि जब थिएटर की माटी में तपा हुआ कोई फनकार कैमरे के सामने खड़ा होता है तो सिनेमा की स्क्रीन भी उसकी शख्सियत के आगे छोटी पड़ जाती है।
2: प्रोफेसर बजाज को भारतीय रंगमंच में उनके चौतरफा रचनात्मक योगदान के लिए कुछ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, साहित्य कला परिषद पुरस्कार, नेशनल प्रेस इंडिया अवार्ड, साहित्य कला परिषद सम्मान, नंदीकर सम्मान शामिल हैं, और उन्हें 2003 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। वे आधिकारिक और व्यक्तिगत क्षमताओं में थिएटर, फिल्म, जनसंचार के क्षेत्र में कार्यकारी बोर्ड, जनरल काउंसिलिंग और विभिन्न संगठनों और संस्थानों के बोर्ड के सदस्य रहे हैं।
3: उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय जैसे कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आगंतुक के रूप में उनकी क्षमता के अनुसार भारत के माननीय राष्ट्रपति के नामित के रूप में बोर्डों और समितियों में सदस्य के रूप में नामित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के एक सदस्य के रूप में उन्हें नामित किया गया। उन्होंने सन 2000 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जूरी के सदस्य के रूप में भी और भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सन 2001 के लिए पैनोरोमा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।
2: श्रोताओं, आज भले ही बज्जू भाई दिल्ली की इस भाग दौड़ से दूर कहीं और वक्त बिता रहे हों, पर सच तो ये है कि मानसिक रूप से उनका दिल आज भी दिल्ली में ही धड़कता है। जब भी उनसे गुप्तगु हुई है, मंडी हाउस के गलियारों और एनएसडी के किस्से उनकी बातों में जीवंत हो उठते हैं। रामगोपाल बजाज के प्रिय कवि रहे हैं अज्ञेय। उनकी कविता जो बज्जू सर को बहुत पसंद है, हम उन्हें अर्पित करते हैं। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं, जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं वह दो खंभों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूं वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं उस पर तीखी रोशनी पड़ती है, जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं, न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, पर मैं जो नाचता, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है जिस पर रोशनी जो पड़ रही है, उस रोशनी में, उन खंभों के बीच, उस रस्सी पर, असल में मैं नाचता नहीं हूँ। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूँ, कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता नहीं, और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है, और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं। मुझे नहीं, खंभे नहीं, रस्सी को नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच।
3: रेडियो आजाद हिंद की तरफ से हम सभी के प्यारे बज्जू सर, बज्जू भाई को दिल से ढेरों शुभकामनाएं हैं कि आप दीर्घायु हों, खूब जिएं और अपनी कला से हम सभी को हमेशा यूं ही बहुत कुछ सिखाते रहें। आपकी ये अद्भुत रंगमंच की यात्रा, आपका फक्कड़पन, आपका स्वाभिमान और आपका कड़ा संघर्ष हम सभी के लिए, आने वाली हर पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा का एक अटूट स्रोत बना रहे। प्रणाम बज्जू भाई।
2: तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में बस आज के लिए इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की थी, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश पाथम का, लेखन दीपक नेमा, और आपके साथ था मैं विजयकांत नायक,
3: और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार भारती। इसी के साथ दीजिए हमें अनुमति, नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी, बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल, देश के लिए।

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: आपने अब तक जाना कि पिता की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ का परिवार किस तरह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। नरेंद्र सड़कों पर घूम घूम कर नौकरी की तलाश कर रहे थे। अंत में उन्हें एक स्कूल में अध्यापन का कार्य मिला। थोड़ा सा निश्चिंत होने के बाद नरेंद्र फिर से दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण से मिलने जाने लगे।
1: सन 1885 के अप्रैल महीने में श्री रामकृष्ण के गले के रोग का जो प्रथम आभास मिला था, उसी के बढ़ जाने पर भक्तों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दवा देकर कहा कि ज्यादा बात करना और बार बार समाधिस्थ होना इस रोग के लिए हानिकारक है, पर रामकृष्ण देव के लिए दोनों ही मनाही असंभव थी। वे भक्तों से खूब बातें करते और भगवत संगीत सुनते ही नृत्य भी करते रहते। इस कारण दवा का कोई असर नहीं हो पा रहा था और अंत में भादो के महीने में उनके गले से खून निकलने लगा।
0: नरेंद्र अपने गुरु की बीमारी से परेशान हो उठे। उन्होंने कई मेडिकल की किताबें पढ़ी, डॉक्टरों से पूछताछ की और उन्हें समझ में आ गया कि गुरुदेव को कैंसर हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं है।
1: सन 1885 ईस्वी के मध्य भाग में श्री रामकृष्ण के गले के रोग को धीरे धीरे बढ़ते देख भक्तगण चिंतित हुए। अंत में चिकित्सा के लिए वे कलकत्ता लाए गए। शहर में रहने की बड़ी असुविधा थी, अतएव भक्तों ने कलकत्ते के उत्तर भाग में स्थित काशीपुर में एक बगीचे वाला मकान किराए पर ले लिया और श्री रामकृष्ण को वहां ले गए। राखाल, बाबूराम, शरद, शशि, काली, तारक, लाटू आदि बालक भक्तगण सेवा कार्य में नियुक्त हुए और बलराम, रामचंद्र, गिरीक, ईशान आदि गृहस्थ भक्तगण ऊपरी देखभाल करने लगे। श्री रामकृष्ण की हमेशा सुधि लेने तथा उनकी सेवादि की व्यवस्था करने के लिए नरेंद्रनाथ ने अगस्त महीने में ही अध्यापन का कार्य छोड़ दिया। श्री रामकृष्ण के काशीपुर में रहते समय वे भी घर छोड़कर वहीं पर आ गए।
0: श्री रामकृष्ण के बालक भक्तगण धीरे धीरे प्रयोजन की गुरुता को समझते हुए एक एक करके काशीपुर के बगीचे में आकर गुरु सेवा में नियुक्त हो गए। धीरे धीरे उन्होंने कॉलेज छोड़ा, यहाँ तक कि घर पर जो दो बार भोजन करने के लिए जाते थे उसे भी छोड़ दिया। इससे कई बालकों के अभिभावक आशंकित हो गए और बीच बीच में अपने लड़कों को घर लौटा लाने के लिए वहां आने लगे। बालकों को अभय देते हुए नरेंद्रनाथ ने उन्हें रोकने का भार अपने ऊपर लिया। नरेंद्र के सामने कोई ठहर न सकता था, फलतः अभिभावकों की चेष्टा सफल न हो सकी।
1: दवा, चिकित्सा, सेवा टहल में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई, परंतु रोग धीरे धीरे प्रबल रूप धारण करता गया। कई लोग ये समझ गए कि श्री रामकृष्ण अपनी शक्ति को शिष्यों में संचारित कर लीला समाप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। फिर भी आशा भरे हृदय से अमंगल की सारी चिंताओं को हटाकर भक्तगण प्राणपण से श्री रामकृष्ण की सेवा करने लगे। गुरु और शिष्य का आपस में क्या पूर्व संबंध था, ये तो श्री रामकृष्ण ही जाने। वे नरेंद्र से किसी प्रकार की सेवा नहीं लेते थे और नहीं ले सकते थे। प्रत्यक्ष रूप से गुरु सेवा के अधिकार से वंचित नरेंद्र को लाचार होकर केवल देखरेख के काम में ही संतुष्ट रहना पड़ा।
0: काशीपुर का उद्यान भवन केवल रोगी निवास ही नहीं रहा, वो एक ही साथ मठ और विश्वविद्यालय भी बन गया। कभी भक्तगण साधन भजन करते तो कभी तरह तरह से शास्त्र पाठ, इतिहास, दर्शन विज्ञान आदि की चर्चा चलती थी। श्री रामकृष्ण के प्रेम की सुधा पीकर मस्त बने हुए इन प्रेमी पुरुषों के जीवन के सर्वश्रेष्ठ आनंदमय दिन इस पवित्र तीर्थ में ही बीते थे। नरेंद्रनाथ अनन्य चित्त होकर श्री गुरुदेव द्वारा प्रदर्शित उपाय से साधना पथ से द्रुत उन्नति करने लगे। वे प्रबल उत्साह, कठोर इंद्रिय निग्रह, भरपूर विश्वास के साथ सत्य को प्राप्त करने के लिए प्राणपण से किया गया उनका प्रयत्न वर्णनातीत है। किसी किसी दिन तो वे रात को दक्षिणेश्वर चले जाते और पंचवटी के नीचे ध्यान करने लगते। नरेंद्रनाथ का तीव्र अनुराग देख श्री रामकृष्ण बड़े आनंदित हुए। एक दिन नरेंद्र को बुलाकर वे बोले,

0: नरेन इधर तो आ।
1: जी जी कहिए, तकलीफ हो रही है क्या?
0: नहीं रे, कोई तकलीफ नहीं है। सुना है तू दक्षिणेश्वर जाकर पंचवटी के नीचे बैठकर रात रात भर ध्यान करता है?
1: इससे मुझे बहुत शांति मिलती है। दिन में नौकरी और मुकदमों के लिए भागा दौड़ी करते करते थक जाता हूं। पंचवटी के शांत वातावरण में ध्यान कर लेने से एक नई ताजगी मिलती है।
0: देख रहा हूं कई दिनों से तू बहुत परेशान है।
1: जी, हमारे चाचा ने हमारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। कहते हैं घर का हमारा वाला हिस्सा हमारा नहीं, पूरा घर उन्हीं का है, उन्होंने ही खरीदा था। जबकि सबको मालूम है कि पिताजी जब पश्चिमी राज्यों में गए थे वहां से पैसा भेजते थे और उन्हीं पैसों से ये घर खरीदा गया था।
0: अच्छा,
1: मां बहुत परेशान है, पिताजी नहीं रहे, उनका संचय कुछ भी नहीं है। मैं परिवार का बड़ा बेटा हूं पर कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। छोटे छोटे भाई बहन हैं, इन्हीं सब परेशानियों में घिरा हूं।
0: फिर भी रोज यहां आता है, मेरी सेवा करता है और फिर ध्यान करने चला जाता है।
1: आप चिंता ना करें, मैं ठीक हूं।
0: नरेन बेटा, साधना करते समय मुझे बहुत सिद्धियां मिली थी, उनका किसी दिन कोई उपयोग नहीं हुआ। तू ले ले, भविष्य में तेरे बहुत काम आएंगी।
1: महाराज, क्या उससे भगवत प्राप्ति में कोई सहायता मिलेगी?
0: नहीं, सो तो नहीं होगा, पर इन्हीं लोग की कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहेगी।
1: माफ करिएगा, मुझे सांसारिक सुख भोग की प्राप्ति के लिए कोई सिद्धि नहीं चाहिए। जिस सिद्धि से भगवत प्राप्ति न हो, सच का साक्षात्कार न हो, मैं खुद को ना पहचान पाऊं, उसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं।
0: अरे पागल, घर में इतनी तकलीफ झेल रहा है।
1: ये सब तो सामयिक कष्ट हैं, मैं निपट लूंगा।
0: वाह, ये हुई ना सच्चे योद्धा जैसी बात। तभी तो मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मेरी आशा तू ही पूरी करेगा।
2: इस समय नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण की पवित्र संगति में मानो एक दूसरे ही मनुष्य बन गए थे। वे दिन रात केवल भगवत चिंतन में डूबे रहते थे। सत्य को प्राप्त करने के लिए उनमें तीव्र व्याकुलता की अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। उन्हें देखते ही ऐसा लगता था मानो पिंजरे में आबद्ध सिंह कारागार को तोड़कर बाहर निकलने के लिए असीम आग्रह के साथ छटपटा रहा हो।
3: उस समय कई तरुण युवक श्री रामकृष्ण की सेवा करने के लिए काशीपुर के भवन में आते जाते रहते थे। नरेंद्र उनके नेता थे, उन्हीं ने सबको अलग अलग काम सौंप दिया था। वहां का सारा काम वे सब लोग मिल बांट कर लेते थे।
2: त्याग से पवित्र, चरित्र से उन्नत, संकल्प से अटल से तरुण युवक गण श्री रामकृष्ण को आदर्श बनाकर काशीपुर के उद्यान भवन में दूभर तपस्या में व्रती हुए। श्री रामकृष्ण की सेवा को लक्ष्य बनाकर घर द्वार तथा स्वजनों को छोड़ने वाले युवक गण एक साथ रहने के फलस्वरूप एक अपूर्व आध्यात्मिक प्रेम संबंध में एक दूसरे के साथ आबद्ध हो गए।
3: यहीं पर भावी रामकृष्ण संघ की नींव पड़ी। इस समय एक दिन श्री रामकृष्ण ने अपने तरुण शिष्यों को संन्यास देने का संकल्प लिया। एक दिन शिष्यों के हाथों में गेरुआ वस्त्र देकर उन्होंने उनके नेता नरेंद्र को बुलाकर कहा,
0: क्या तुम लोग संपूर्ण निर्भिमानी बनकर भिक्षा की झोली कंधे पर लिए सड़क पर भिक्षा मांग सकोगे?
1: गुरुदेव, क्या आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं? ठीक है, हम सब परीक्षा के लिए तैयार हैं, चलो रे सब।
2: वे श्री गुरुदेव के आदेश से उसी समय भिक्षा मांगने निकल पड़े और जो कुछ अन्न उन्हें मिला उसे पकाकर उन्होंने श्री रामकृष्ण के सामने रखकर बाद में प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन श्री रामकृष्ण का कैसा आनंद था। उच्च शिक्षित और उच्च वंश वाले गर्व रहित युवक सन्यासियों का तीव्र वैराग्य देखकर श्री रामकृष्ण आनंद से विभोर हो गए।
3: सन्यास ग्रहण के पश्चात अतीत युग के युग प्रवर्तक सन्यासियों की जीवनी और उपदेशों की चर्चा ही नरेंद्र का लक्ष्य बन गई। ध्यानाभ्यास के फल से एकाग्रचित नरेंद्र जब जिस विषय को आरंभ करते थे तब उसी में मस्त हो जाते थे। भगवान बुद्धदेव का अपूर्व त्याग, उनके अलौकिक साधना और असीम करुणा नरेंद्र की रात दिन की चर्चा का विषय बन गई। जन्म जरा दुख व्याधि की निर्मम पीड़ा में फंसे हुए जीवों का कातर हाहाकार देखकर करुणा विगलित राजपुत्र के विशाल हृदय में जो अपूर्व वेदना हुई थी उसका वर्णन करते समय नरेंद्र की आंखें डबडबा उठती थी।
2: बुद्धदेव के ध्यान में विभोर नरेंद्र नाथ गुप्त रूप से दो गुरु भाइयों को साथ लेकर बुद्ध गया जाने की तैयारी करने लगे। रात में बिस्तर से उठकर चुपचाप नरेंद्र, ताकर यानी स्वामी शिवानंद और काली यानी स्वामी अभेदानंद गंगा पार होकर स्टेशन पर रेल में सवार हो गए। सन 1886 ईस्वी के अप्रैल का महीना था। तरुण सन्यासियों ने पवित्र फल्गु नदी में स्नान कर वहां से 8 मील दूर बोधिसत्व के मंदिर की ओर भक्तिपूर्ण हृदय से यात्रा की। इधर प्रातः नरेंद्रनाथ को न देखकर भक्तगण चिंतित हुए। चारों ओर खोज की गई पर नरेंद्र का पता न मिला। श्री रामकृष्ण को जब भक्तों ने यह बात सुनाई तो मृदु हास्य के साथ उन्होंने कहा,
0: तुम लोग चिंता ना करो, वो लौट आएगा, वो लौट आएगा। वो क्या इस जगह को छोड़कर अन्य किसी जगह रह सकता है।
3: बोधगया में जाकर नरेंद्र ने बोधिसत्व के मंदिर के दर्शन किए। ये वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने जन्म जरा व्याधि मृत्यु के सताए हुए जीवों के दुख का निवारण करने के लिए समाधि मग्न होकर निर्वाण प्राप्त किया था। बोधि वृक्ष के नीचे पवित्र पत्थर पर नरेंद्रनाथ ध्यानस्थ हुए। उनके गुरु भाइयों ने ध्यान टूटने पर देखा, नरेंद्र पत्थर की तरह निश्चल हैं, उनका शरीर स्पंदनहीन है। बहुत देर बाद तनिक होश आने पर वे क्रंदन कर उठे। दूसरे ही क्षण वे फिर से ध्यानस्थ हो गए। उनके ध्यान स्तिमित नेत्रों से सत्य की विमल ज्योति निकल पड़ी। उन्होंने क्या देखा और क्या समझा ये अपने गुरु भाइयों से प्रकट नहीं किया। लगातार 3 दिन कठोर तपस्या में बिताकर वे बोधगया से काशीपुर के बगीचे वाले मकान में लौट गए। भक्तगण अपने प्राण प्रिय नरेंद्र को पाकर आनंदित हुए।
2: बोधगया से लौटकर नरेंद्रनाथ मानो ये समझ सके कि जिस अतृप्त प्यास से कातर होकर वे इधर दौड़ धूप कर रहे हैं वो एकमात्र श्री रामकृष्ण की कृपा के बिना और किसी तरह तृप्त नहीं हो सकती। नरेंद्र ने संकल्प स्थिर कर लिया, पर दूसरे भक्तों की तरह वे विश्वास के साथ श्री गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण न कर सके। वे चाहते थे सत्य की उपलब्धि। नरेंद्र कठोर तपस्या में डूब गए। उनका वो प्रबल उत्साह, वो कठोर त्याग, शारीरिक भोग विलास को त्याग कर आत्मदर्शन के लिए एकाग्र चित्त सी उनकी वो प्राणपण चेष्टा वर्णनातीत है।
3: महापुरुषों के चरित्र की चर्चा करने पर हम देखते हैं कि उन्होंने देश, काल और पात्र का विचार करके मुक्ति के लिए नए नए उपायों का आविष्कार किया था और कामिनी कंचन के प्रबल आकर्षण से अविचलित रहकर अपना कार्य चलाया था। उनका जप तप, साधन भजन सभी कुछ परहित के लिए था, स्वयं की मुक्ति अथवा अन्य किसी कामना की पूर्ति के लिए नहीं। इसीलिए श्री रामकृष्ण नरेंद्र को विभिन्न प्रकार की साधनाओं और आध्यात्मिक अवस्थाओं में से धर्म जीवन के परम आदर्श की ओर अग्रसर कराने लगे। श्री रामकृष्ण के अपने जीवन में अनुभूत आध्यात्मिक सत्यों के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिचित होने से पहले तक नरेंद्र किसी भी तरह उन सब के प्रति आस्थावान न बन सके।
2: धीरे धीरे नरेंद्र में परिवर्तन आने लगे। वे दिन नहीं रहे। कल के वे दार्शनिक, तार्किक और उद्वत नरेंद्रनाथ आज के गुरु भक्त साधक बने हैं। पाश्चात्य दर्शन की ऊपर ऊपर मनोरम दिखने वाली तर्क युक्तियों के जाल ने तथा ब्रह्म समाज के प्रभाव ने उनके चित्त पर जो आवरण डाल दिया था वो दूर हो गया। अब उनका पाठ्य ग्रंथ केवल पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान नहीं, वे तो अब गंभीर श्रद्धा के साथ उपनिषद, अष्टवक्र संहिता, पंचदशी, विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। अपनी सारी विद्या के अभिमान को हे समझते हुए वे पूरी निष्ठा के साथ श्री रामकृष्ण के अपूर्व उपदेशों में से नवीन और श्रेष्ठतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नरेंद्रनाथ आहार निद्रा आदि अति आवश्यक जीव धर्मों को भी छोड़ते हुए कठोर तपस्या में लग गए। उनका ये तीव्र तप अन्य बालक भक्तों के लिए आदर्श बन गया,
3: जिन्हें देखने के लिए श्री रामकृष्ण पागल जैसे होटते थे, जिनके कंठ का सुमधुर संगीत कान में पहुंचते ही वे निर्विकल्प समाधि में आत्मविस्मृत हो जाते थे, जिनकी प्रशंसा में वे भाव विभोर होकर कहते थे वो साक्षात नारायण है, जीव के उद्धार के लिए ही उसने देह धारण की है। उन्हें अर्थात स्वयं उन नरेंद्रनाथ को भी यदि इतनी कठोर तपस्या करनी पड़े तो दूसरों की फिर बात ही क्या। साधना पथ में काफी दूर अग्रसर होने के बाद नरेंद्रनाथ अंत में समझे कि निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति के बिना उनकी आध्यात्मिक पिपासा शांत नहीं होने वाली।

0: लेकर ही रहेंगे। चिरकाल पुरस्कार के उपासक आज दया की भिक्षा मांगने आए हैं, पर भय से, विस्मय से, संभ्रम से उनकी वाणी न निकली। गुरु शिष्य की मनोकामना समझ गए। जिस नरेंद्रनाथ ने कुछ वर्ष पूर्व वेदांत शास्त्र का अध्ययन करने से इनकार करते हुए कहा था,
1: जिस ग्रंथ में मनुष्य को भगवान कहने की शिक्षा दी गई है उसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने को भगवान कहने से बढ़कर और कोई पाप नहीं है। आज वही नरेंद्रनाथ वेदांत में कही गई सर्वोच्च अनुभूति के प्राप्ति के लिए ललायत है।
2: नरेंद्र, तू क्या चाहता है?
1: निर्विकल्प समाधि के द्वारा सदैव सच्चिदानंद सागर में डूबे रहना चाहता हूं।
2: यही बात कहते तुझे लज्जा नहीं आती? समय आने पर कहां तू वट वृक्ष की तरह बढ़कर सैकड़ों लोगों को शांति की छाया देगा, और कहां आज अपनी ही मुक्ति के लिए व्याकुल हो उठा। शूद्र आदर्श तेरा।
0: नरेंद्र की विशाल आंखों में आंसू आ गए। वे अभिमान के साथ कहने लगे,
1: निर्विकल्प समाधि न होने तक मेरा मन किसी भी तरह शांत नहीं होगा, और यदि नहीं हुआ तो मैं कुछ भी ना कर सकूंगा।
2: तू क्या अपनी इच्छा से करेगा? जगदम्बा तेरी गर्दन पकड़कर करा लेगी। तू ना करे, तेरी हड्डियां करेंगी।
0: नरेंद्र की कातर प्रार्थना की उपेक्षा करने में असमर्थ होकर श्री रामकृष्ण ने अंत में कहा,
2: अच्छा जा, निर्विकल्प समाधि होगी।
0: एक दिन शाम को ध्यान करते करते नरेंद्र समाधि में डूब गए। काफी देर बाद समाधि भंग होने पर उन्होंने अनुभव किया,
1: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर्म करूंगा, अपेक्षानुभूति द्वारा उपलब्ध सत्य का प्रचार करूंगा।
0: उन्हें भी अतीत युग के ऋषियों की तरह उपनिषद के वचनों को दोहराना होगा।

0: हे विश्ववासी अमृत पुरुषों के पुत्रगण, हे दिव्य धाम निवासी देवतागण, सुनो, मैंने आदित्य के समान दैदीप्यमान उस महान पुरुष को जान लिया है जो समस्त अज्ञान अंधकार के परे है। केवल उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त मृत्युंजय होने का अन्य कोई मार्ग नहीं।
1: नरेंद्र के हृदय की सारी अशांति और आकांक्षाओं का अंत हो गया। पुलकित होकर गुरु के पास आकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी उपलब्धि बताई। रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा,
2: तो फिर अभी के लिए तेरा ये ज्ञान ताला बंद रहा, चाबी तेरे पास है, काम समाप्त होने पर फिर खोल दिया जाएगा।
1: सन 1886 ईस्वी की जुलाई मास का अंतिम भाग आ गया। श्री रामकृष्ण के गले के रोग ने धीरे धीरे भयंकर रूप धारण कर लिया। बड़े धीमे स्वर में किसी तरह वे दो चार बातें कह सकते थे। आहार था जल में पकाई हुई बार्ली, पर उसे भी वे निगल नहीं सकते थे। फिर भी उस महापुरुष की कृपा की सीमा न थी। सदा बाल भक्तों को उपदेश देते रहते और कभी नरेंद्र को बुलाकर कहते,
2: नरेंद्र, मेरे ये सब लड़के रहे, तू सबसे बुद्धिमान और शक्तिमान है, इनकी रक्षा करना, उन्हें सत्य पथ पर चलाना। मैं शीघ्र ही देह त्याग करूंगा।
3: एक दिन रात को नरेंद्र की ओर अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखते हुए उन्होंने कहा,
2: बेटा, आज तुझे सर्वस्व देकर मैं फकीर बन गया।
3: नरेंद्र ने समझा श्री रामकृष्ण की लीला समाप्त होने का समय आने ही वाला है। वे बालक की तरह रोने लगे। उनके विरह में वे कैसे अपना जीवन रख सकेंगे, यही सोचकर आकुल हुए। भाव के आवेग को रोकने में असमर्थ होकर नरेंद्रनाथ कमरे से बाहर निकल आए।
1: श्री रामकृष्ण की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने पर उनकी पत्नी शारदा माँ, लाटू काली, शशि, छोटे गोपाल आदि कई शिष्य श्याम पुकुर आ गए। नरेंद्र भी वहाँ रात को भी रहने लगे। तरुण युवक शिष्य का दल तो पहले से ही वहाँ रहता था। वे युवक पढ़ना लिखना छोड़कर वहीं डटे रहे और ये उनके माता पिता को पसंद न था। उनकी पढ़ाई छूट गई। परिवार वाले उन्हें वापस ले जाने के लिए उचित अनुचित उपायों का सहारा लेने लगे। उस समय नरेंद्रनाथ उन युवकों का पक्ष लेकर परिवारजनों को समझाते और वापस भेज देते। वे उन्हें समझाते,
0: वेद रूपी अनादि अनंत सागर के मंथन से जिस अमृत की प्राप्ति हुई है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवताओं ने अपना अपना ओज ढाला है, और जो लीला मानव अवतारों के जीवन रसायन के मिश्रण से और भी सारवान हो गया है, उसी अमृत के पूर्ण कुंभ स्वरूप भगवान श्री रामकृष्ण जीवों के उद्धार के लिए लीला उद्धार धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसे महापुरुष की सेवा करने से आप इन बच्चों को वंचित न कीजिए, इन्हें यहीं रहने दीजिए।
3: अंत में सचमुच वो भीषण दिन आ पहुंचा। सन 1886 ईस्वी का 15 अगस्त महापुरुष की शैया को घेर कर भक्त शिष्यगण शोक से आकुल हो स्तब्ध हृदय से महासमाधि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके व्यथित हृदयों में किस भाव का प्रवाह बह रहा है, ये तो वे ही जाने। धीरे धीरे रात्रि अधिकाधिक गंभीर होने लगी। सिरहाने के सहारे श्री रामकृष्ण का कृश शरीर धीरे धीरे कांप रहा है। जीर्ण हड्डियों के पिंजरे को छोड़ महान आत्मा महाकाश में विलीन होने के लिए मानो पंख फैला रही है। नासिका के अग्रभाग में दृष्टि स्थिर है, मुखमंडल हास्य मंडित है। इसी समय तीन बार काली नाम का उच्चारण करते हुए श्री रामकृष्ण ने महासमाधि द्वारा नश्वर देह का त्याग कर दिया।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, कुछ ही दिनों में हम मनाएंगे अपना स्वाधीनता दिवस। जी हाँ, 15 अगस्त 2026 का दिन आने ही वाला है। हम और आप मिलाकर मनाएंगे आज़ादी का महापर्व। इस अवसर पर स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा संगीत संध्या का आयोजन किया गया है। 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन भोपाल में। आपको हम बताएं कि इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कलाकार हैं प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति। तो आप सभी इस भव्य आयोजन में सादर आमंत्रित हैं। दिन और समय जरूर याद रखिए, 15 अगस्त 2026 शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के विविध कार्यक्रम। उम्मीद है आज के सभी कार्यक्रम आपको पसंद आए होंगे। कैसे लगे इसकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल समय हो रहा है कि इस प्रसारण सभा से हम विदा लें, लेकिन आपसे विदा लूं मैं उसके पहले आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको परिचित करवाना चाहती हूँ।

आज शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि और भक्ति संगीत का प्रसारण होगा शाम 5:10 पर। शाम 6 बजे हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम वतन का राग। आज का ये कार्यक्रम गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर पर केंद्रित होगा 7 अगस्त का संदर्भ लेते हुए, क्योंकि आज है गुरुदेव की पुण्यतिथि। आमने सामने इस कार्यक्रम में शाम 6:30 आप सुनेंगे भेंट वार्ता। हमारी आमंत्रित अतिथि होंगी नगीन तनवीर। वागर्थ कार्यक्रम में शाम 7 बजे मुंशी प्रेमचंद पर केंद्रित कार्यक्रम होगा। हमारा विशेष कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:30। इसमें आज सुनिएगा मार्च शैली में नाटक शहीद भगत सिंह का तीसरा भाग। रात 8:30 याद करो कुर्बानी कार्यक्रम में हम बात करेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल की। कला कल्लोलिनी कार्यक्रम में 9 बजे चर्चा होगी राम गोपाल बजाज की और 9:30 आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। समय हो रहा है कि हम आपसे विदा लें। अनुमति दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने आजादी के और उसके बाद 1 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम भारत भारती। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, आपके लिए लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम तराने आजादी के। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत से।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी के। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हमारे देश में संगीत की एक समृद्ध परंपरा रही है और संगीत दायरों को नहीं मानता। इतना बड़ा हमारा देश, अलग अलग बोली भाषा के लोग, अलग जाति धर्म के लोग, अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग, अलग जाति धर्म, अलग बोली भाषा और अलग रीति रिवाजों से उत्पन्न कितनी ही स्वर लहरियां संगीत की अलग अलग शैलियों के रूप में आज विख्यात हैं। ऐसी ही एक संगीत शैली है अभंग। आज भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की इसी संगीत परंपरा की वानगी। और विशेष बात ये कि इसे प्रस्तुत करने वाली दो कलाकार चेन्नई से संबद्ध हैं। जी हाँ, कर्नाटक शैली में पारंगत रंजनी और गायत्री। इनके युगल स्वरों में आइए सुनते हैं अभंग गायन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रंजनी और गायत्री का अभंग गायन। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत जल्द भारत भारती के एक और अंक के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद प्रस्तुत करता है प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चिंतन की गौरवशाली परंपरा की वानगी देने वाला अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।
2: इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे भारतीय ऋषि वैज्ञानिक से जिनकी सृष्टि और जीवन के किसी विशिष्ट अंग से जुड़ी अवधारणा ने एक महती वैज्ञानिक परिकल्पना को जन्म दिया।
1: वो परिकल्पना और सिद्धांत जिसका विकास पश्चिमी जगत 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद ही कर पाया। उदाहरणार्थ ज्यामिति का 29वां प्रमेय, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, वस्तुतः ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस का नहीं है। इसकी खोज शताब्दियों पूर्व ऋषि बोधायन कर चुके थे। ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा हमें बताएगी वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था, चाहे वो सृष्टि की उत्पत्ति या सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि नक्षत्रों की गतियों का सटीक हिसाब हो, या सूर्य चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणियों का अथवा कैलेंडर का निर्माण, पदार्थों की संरचना की बात हो अथवा पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की चर्चा।
2: दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ग्रहों नक्षत्रों ज्योतिष गणित से लेकर वनस्पति चिकित्सा शल्य औषधि रसायन आदि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान की सुव्यवस्थित और सुदृढ़ प्रणाली को जन्म दिया।
1: ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा देश की नई पीढ़ी को रूबरू कराएगी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में वेदकालीन भारत की अद्वितीय और गौरवशाली उपलब्धियों से, ताकि हमारे युवा साथी हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित हो सकें, उस पर गर्व कर सकें और प्राचीन भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की खोज के लिए प्रेरित हो सकें।
3: आयुष्मान मेधावी हो, अपने अपने आसन पर बैठे।
4: जी गुरुजी।
3: बच्चों, गणित की इस कक्षा में आज हम ज्यामिति और बीज गणित पर चर्चा करेंगे।
5: गुरुजी, ये अरेबिक न्यूमेरल्स क्या होते हैं?
3: बेटे, ये नाम पश्चिमी देशों का दिया है। शून्य और एक से नौ तक के अंकों को दशमिक प्रणाली कहते हैं। इन 10 अंकों की सहायता से कोई भी संख्या लिखी जा सकती है। इस दशमिक प्रणाली का आविष्कार भारत में ही हुआ है। ये अंक ही पश्चिमी देशों द्वारा अरेबिक न्यूमरल्स कहे गए हैं।
6: ऐसा क्यों गुरुजी?
3: बेटे, हुआ यूं कि 9वीं शताब्दी में ये अंक अरब पहुंचे। उस समय अरब का एक विद्वान अल ख्वारिज्मी भारत आया और उसने यहां आकर अंक गणित का अध्ययन किया। इसका उल्लेख उसने अपनी पुस्तक में भी किया था। इन अंकों को अरबी में हिंदसा यानी हिंद से आए कहा जाता है। कहा जाता है अल ख्वारिज्मी की गणित की पुस्तक का अनुवाद लैटिन भाषा में हुआ और जब ये पुस्तक पश्चिमी देशों में पहुंची तो अरब से पहले ये अंक मिस्र में और फिर उत्तरी अरब से धीरे धीरे पश्चिमी देशों को मिले। पश्चिम ने इन्हें अरेबिक न्यूमरल्स कहा, जबकि ना तो इसकी खोज और ना ही इसका विकास अरब में हुआ है।
5: यानी अरेबिक न्यूमेरल्स सही मायने में भारतीय न्यूमेरल्स है?
3: हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज तो सारा विश्व ये मानने लगा है कि अंकों और दशमिक प्रणाली का आविष्कार भारत में ही हुआ है। न केवल अंक गणित बल्कि बीज गणित ज्यामिति त्रिकोणमिति कैलकुलस और वेक्टर गणित आदि गणित की विविध शाखाओं का जन्म और विकास भी भारत में ही हुआ है। आज पूरे विश्व में दशमिक प्रणाली का ही उपयोग किया जाता है।
7: यह तो हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है।
3: निश्चय ही वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था। क्यों ना हम आज वेदकालीन भारत की एक झलक देख लें। चलिए, आज हम आप सभी को महर्षि बोधायन के आश्रम में लिए चलते हैं। वे एक महान गणितज्ञ थे उनका कालखंड ईसा से 1500 वर्ष पूर्व का माना जाता है।

0: ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। युवराज रोहित
1: जी आचार्य श्री,
0: अभी जिस मंत्र का उच्चार किया गया है वो कहाँ से लिया गया है और इसका अर्थ क्या है?
1: आचार्य श्री, यह ईशावास्य उपनिषद का प्रारंभिक मंत्र है। इसमें ब्रह्म और ब्रह्मांड को पूर्ण मानते हुए कहा गया है कि ये भी पूर्ण है और वो भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, फिर भी ये पूर्ण ही रहता है। अंत में पूर्ण पूर्ण में लीन हो जाता है, फिर भी पूर्ण ही बचा रहता है।
0: ठीक, इस अद्भुत संकल्पना में ब्रह्म की व्याख्या होती है, पर यह तो इस मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ है, इसका गणितीय अर्थ कौन बताएगा? हाँ आपस्तंभ, तुम बताओ।
2: आचार्य श्री, गणितीय अर्थ में यह मंत्र शून्य की सटीक व्याख्या करता है। हम जानते हैं शून्य में से शून्य घटा दिया जाए तो भी शून्य ही बचता है, इसी तरह शून्य में शून्य जोड़ दिया जाए तो भी शून्य ही रहता है।
0: एकदम सही। शिष्यों, पिछले दिनों आपने योग वियोग पूरण भाग आदि के जो गणितीय प्रश्न हल किए थे उनसे इस मंत्र में कही बातों का सत्यापन सहज ही हो जाता है।
1: आचार्य श्री, आप स्तंभ मुनि बता रहे थे कि आपने एक नए सूत्र की रचना की है जिसमें अनेक नए प्रमेय विकसित किए गए हैं।
0: हाँ वत्स, ये सत्य है। हमने मुनि आपस्तंभ को इन नए प्रमेयों के सत्यापन तथा इनसे संबंधित अभ्यास प्रश्न विकसित करने का कार्य सौंप रखा है। मुनि आपस्तंभ, आपके कार्य की प्रगति क्या है?
2: आचार्य श्री, कार्य की प्रगति काफी संतोषप्रद है। प्रमेयों के सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी प्रमेय सत्यापन के विविध प्रयोगों में सत्य सिद्ध हुए हैं। अभ्यास प्रश्न का निर्माण कार्य प्रगति पर है, शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगे।
0: ठीक, हम आश्वस्त हुए। यूं तो हम प्रत्येक प्रमेय का स्वयं सत्यापन कर चुके थे, पर किसी भी प्रमेय की सफलता और उपयोगिता की कसौटी ये तथ्य है कि वो विविध प्रायोगिक परिस्थितियों में सत्य सिद्ध हो।
1: आचार्य श्री, शुल्ब सूत्र की प्रमुख विशेषता के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही कृपया बताएं इसकी उपयोगिता क्या होगी?
0: वत्स, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। किसी भी अनुसंधान का महत्व उसके संभावित उपयोग पर ही निर्भर करता है। अनुसंधान केवल अनुसंधान के लिए नहीं होना चाहिए। अनुपयोगी अनुसंधान समय और शक्ति का अपव्यय ही कहलाएगा।
2: प्रिय मित्र, आचार्य श्री का ये शुल्ब सूत्र ग्रंथ गणित का एक बहुमूल्य ग्रंथ माना जाएगा। गणित के इस विलक्षण ग्रंथ में अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांत खोजे गए हैं। इनमें दिए गए प्रमेय अत्यंत महत्वपूर्ण है।
0: और वत्स, जहां तक इस ग्रंथ की उपयोगिता का प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रमेयों के ज्यामितीय सिद्धांतों का उपयोग करके यज्ञ की वेदियों, मंदिरों तथा भवनों का निर्माण पर्याप्त सुगम हो जाएगा। यज्ञ वेदी चाहे उड़ते पक्षी के आकार की हो या चतुष्कोणी, इनका निर्माण शुल्ब सूत्र में वर्णित ज्यामितीय सिद्धांतों के आधार पर शास्त्रोक्त बनाया जा सकता है। वैसे ग्रंथ की उपयोगिता तो तुम्हें तभी समझ में आएगी जब तुम लोग इसका पठन पाठन कर इस पर मनन करोगे, इसमें दिए प्रमेयों के अनुप्रयोगों पर कार्य करोगे।
2: उदाहरण के लिए शुल्ब सूत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमेय कहता है, दीर्घ चतुरस्याशणया रज्जुः पार्श्वमानी त्रियकमानी यत् पृथक भूते कुरुतस्त दुभ्यम करोति। अर्थात आयत के कर्ण यानी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, आयत की लंबाई और चौड़ाई के वर्ग के योग के बराबर होता है।
1: आपके कहने का अर्थ तो यह हुआ कि किसी आयत का कर्ण क्षेत्रफल में उतना ही होता है जितना उसकी लंबाई और चौड़ाई का होता है।
2: हाँ मित्रों, इसे हम यूं समझ सकते हैं कि यदि किसी आयत आ बा सा दा आयत का कर्ण बादा और लंबाई आ बा और चौड़ाई आ दा हो तो बादा वर्ग दो बराबर आबा वर्ग दो धन आदा वर्ग दो। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमेय है जो भवन या मंदिर के निर्माण में बहुत अधिक सहायक हो सकता है।
0: ऐसे ही अगले दो प्रमेय हैं। पहला प्रमेय कहता है आयत का कर्ण आयत का सम द्विभाजन करता है, जबकि दूसरा प्रमेय कहता है कि सम चतुर्भुज के कर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। इन प्रमेयों का सत्यापन किसी आयताकार या सम चतुर्भुजी सभा भवन के फर्श पर आसानी से किया जा सकता है।
2: इसी तरह शुल्भ सूत्र में वे विधियां भी दी गई हैं जिनके द्वारा आप एक त्रिकोण के क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल वाला वर्ग बना सकते हैं या किसी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल वाला वृत्त बना सकते हैं। इतना ही नहीं, आप वर्ग के दो गुने या तीन गुने क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल वाला वृत्त बना सकते हैं या वर्ग के एक तिहाई क्षेत्रफल का भी वृत्त बना सकते हैं। आप लोग सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि शुल्भ सूत्र में दिए गए प्रमेय और ये अनुप्रयोग कितने अभिनव और कितने महत्वपूर्ण हैं।
1: निश्चय ही शुल्भ सूत्र में दिए गए ये सभी अनुसंधान एकदम अभिनव और महत्वपूर्ण हैं। अपने देश में ही नहीं, संसार के दूसरे देशों के लिए भी ये एकदम नूतन और अद्भुत जानकारी देने वाले होंगे।
2: इतनी ही अभिनव और महत्वपूर्ण है शुल्भ सूत्र में वर्णित परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की विभिन्न श्रेणियां। ऐसे ही शुल्भ सूत्र में वर्णित क्रमचय और संचय के सूत्र हैं। विश्व में ये भारत के गणित के क्षेत्र में दी गई अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। एक और अद्भुत देन शुल्भ सूत्र की रूट दो और रूट तीन जैसी संख्याओं के मान निकालने की विधियां हैं।
0: शुल्भ सूत्र पर तो चर्चा चलती रहेगी, पर अब मध्यान्ह भोजन का समय हो गया है, सो हमें ये चर्चा यहीं रोककर भोजन कक्ष की ओर चलना होगा।

0: मुनिवर, आज आचार्य श्री को नदी तट से लौटने में विलंब हो गया है।
1: लगता है नदी तट पर उनकी भेंट किसी सुधी व्यक्ति से हो गई है, अन्यथा उनका दैनिक कार्यक्रम निश्चित रहता है। अलस भोर, प्रथम पहर में उठना, दैनिक कर्म से निवृत्त हो नदी में जाकर स्नान करना, फिर संध्या वंदन कर ध्यानस्थ बैठना। आचार्य श्री हमेशा अपने शिष्यों से कहते हैं, ऋषि के लिए सुयोग्य, तेजस्वी, मंत्र दृष्टवा वर्चस्वी होना आवश्यक है। इसके लिए ध्यान और मंत्रों की साधना परम आवश्यक है।
0: मुनिश्री, कई बार आश्चर्य होता है कि आचार्य श्री मंत्रों से गणितीय अवधारणाएं किस तरह विकसित कर लेते हैं।
1: ये अंततः प्रकृति के कारण संभव हो पाता है, जो साधना से प्राप्त होती है। आचार्य श्री कहते हैं, बुद्धि का काम है विश्लेषण करना, उसकी सबसे बड़ी विशेषता तर्क है, पर तर्क द्वंद्व उत्पन्न करता है, किंतु यदि बुद्धि को परिष्कृत और परिमार्जित करके प्रखर बना दिया जाए तो उसकी सीमा विस्तृत और व्यापक हो जाती है। तब हम चीजों को जैसी है वैसी ही देखना प्रारंभ कर देते हैं, यानी हमें सत्य का साक्षात्कार होने लगता है।
0: यह संकल्पना काफी रोचक है, इसे मुझे ठीक से समझना होगा। आचार्य श्री ने जब यह बात कही थी तब मेरा ध्यान थोड़ा भटका हुआ था, सो मैं इसे आत्मसात नहीं कर पाया था।
1: आचार्य श्री की संकल्पना को इस तरह समझा जा सकता है, जब बुद्धि परिष्कृत होती है तो उसकी धारणा शक्ति बढ़ जाती है, धारणा शक्ति बढ़ने से मेधा प्रखर हो जाती है, और जब मेधा प्रखर या परिष्कृत होती है तो प्रज्ञा प्रकट होती है। प्रज्ञा कहते हैं प्रकाशित बुद्धि को। प्रज्ञा की स्थिति में संवेदना इतनी सघन होती जाती है कि सब कुछ शीशे की तरह साफ होता जाता है। हमारे ऋषि महर्षि बुद्धि से प्रज्ञा तक की यात्रा के विज्ञान में पारंगत हैं।
0: लीजिए, आचार्य श्री आ गए।
2: प्रणाम आचार्य श्री।
3: आयुष्मान, यशस्वी भव।
1: नदी तट पर किससे भेंट हो गई थी आपकी?
3: वत्स, तुम्हारा अनुमान सही है। नित्य क्रम से हमें थोड़ा विलंब हो गया ना। नदी तट पर आचार्य मैत्रेयन से भेंट हो गई। काफी समय पश्चात उनसे भेंट हुई थी, सो चर्चा में समय का पता ही नहीं चला। उन्होंने शून्य के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। वे बोले, वैदिक पदाक्रम में शून्य का अर्थ प्रायः आकाश या रिक्त स्थान अथवा वायुमंडल जैसे शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। यद्यपि गणितीय अर्थ में शून्य एक वैदिक शब्द नहीं है, किंतु दार्शनिक भाव में शून्य की सुंदर अभिव्यक्ति कठोपनिषद में मिलती है। जरा देखें यह श्लोक कितना अद्भुत है। यथा सर्वे प्रमुच्यते कामायस्य हृदय स्थितः अथ मर्त्यो अमृते भवत्यत्र ब्रह्मा समुष्णुते। अर्थात जब हृदय में स्थित सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तब मर्त्य अमर होकर अनंत अर्थात ब्रह्म के समान रूप प्राप्त कर लेता है। वे आगे बोलते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद में शून्य और अनंत के बीच इस सीमांत संबंध को परिभाषित करते हुए जीव अथवा आत्मा की परिकल्पना दी गई है। संदर्भित श्लोक है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेह स चानंताय कल्पते। इसका अर्थ है, बाल की नोक को 100 भागों में विभाजित करने पर जीव का अस्तित्व इस बिंदु पर भी उपस्थित है जिसकी अनंत के रूप में परिकल्पना की जाती है। प्रिय आपस्तंभ, मैं इन दोनों श्लोकों को गणित के प्रमेयों के रूप में रूपांतरित करने का विचार बना रहा हूं।
1: ये तो अद्भुत खोज होगी आचार्य श्री।
3: निश्चय ही। लो, मैं फिर विचार में खो गया। ध्यान सत्र का समय हो गया है, चलो सीधे ध्यान कक्ष में चलते हैं।
1: सभी लोग ध्यान कक्ष में एकत्रित हो गए होंगे, संभवतः हमारी ही प्रतीक्षा हो रही होगी। चलिए। ओम ओम।

0: युवराज रोहित, लगता है तुम्हारा मन कुछ उद्विग्न है। मैं देख रहा हूं, यद्यपि हम वन में लकड़ियां एकत्रित करने के कार्य में संलग्न हैं, पर तुम्हारा ध्यान यहां नहीं है। क्या तुम्हें ज्ञात है मैं लकड़ियों का एक गट्ठर आश्रम भिजवा चुका हूं?
1: आप सही कह रहे हैं मुनिश्री, मेरा ध्यान भटक गया था। कई बार ऐसा हो जाता है।
0: पर ऐसा क्यों? क्या कोई समस्या है या तुम्हें अपने घर की याद सता रही है?
1: नहीं मुनिश्री, घर की याद सताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ का वातावरण इतना सौहार्दपूर्ण और आत्मीय है कि जो भी यहाँ आ जाता है यहीं का हो जाता है। कल गुरु माँ ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था।
2: मैं देख रही हूँ तुम कुछ उद्विग्न हो। आजकल भोजन भी तुम ठीक से नहीं कर रहे हो। क्या घर की याद सता रही है या यहाँ तुम्हें कोई कष्ट है?
1: कैसी बात कर रही हैं गुरु माता? यहाँ आपका व्यवहार इतना स्नेहिल, इतना ममतामय है कि घर की याद तो आ ही नहीं सकती। आचार्य श्री की पितृतुल्य निगरानी में किसी को भी कोई भी कष्ट हो ही कैसे सकता है?
2: मुझे लगा शायद तुम्हें यहाँ का भोजन रुचिकर नहीं लग रहा है, सो मैंने तुम लोगों के लिए मोदक और पकवान बनाए हैं, तुम्हें अच्छे लगेंगे।
1: आप निरर्थक ही चिंता कर रही हैं गुरु माता, यहाँ का भोजन तो अत्यंत स्वादिष्ट और रुचिकर है। मेरी उद्विग्नता को आप अन्यथा न लें।
2: तो क्या आचार्य श्री की डांट से व्यथित हो? कल संध्या में उन्होंने संभवतः तुम्हें डांटते हुए कहा था, रोहित देख रहे हो ना, गोधुली हो गई है। तुम्हें दीप मंजूषा को तैयार कर प्रज्वलित करने को कहा था ना, तुम कर क्या रहे हो?
1: नहीं गुरुमा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कल संध्या में हम लोग कंदूक के खेल में इतने व्यस्त हो गए थे कि दीप प्रज्वलित करने का ध्यान ही नहीं रहा। हम में से किसी ने भी आचार्य श्री के कहे को अन्यथा नहीं लिया।
0: कोई बात तो है जो तुम हमसे छिपा रहे हो।
1: सच कहूं मुनिश्री, तो मैं चिंतित हूं।
0: चिंतित हो? किस लिए?
1: वो क्या है, आचार्य श्री ने मुझे आश्रम के आम्र कुंज में उपस्थित वृक्षों पर लगे आम्र फलों की अनुमानित संख्या ज्ञात करने को कहा है।
0: तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है?
1: चिंतित होने की ही तो बात है मुनिश्री। मैंने गणना करके पता लगाया, अपने आश्रम के आम्र कुंज में 172 आम्र वृक्ष हैं। इन सब पर लगे आम्र फलों की गणना करते करते तो मैं पागल हो जाऊंगा।
0: रोहित, तुम्हें स्मरण होगा आचार्य श्री ने एक दिन पूर्व अनुमानित संख्या ज्ञात करने की विधि की चर्चा की थी।
1: हाँ मुझे स्मरण है।
0: उसके पश्चात ही आचार्य श्री ने तुम्हें आश्रम के आम्र कुंज की वृक्षों पर उपस्थित आम्र फलों की अनुमानित संख्या ज्ञात करने का अभ्यास दिया होगा।
1: उसके बाद ही मुझे यह संख्या ज्ञात करने को कहा था। मैं तभी से चिंतित हूँ, कैसे क्या करूँ?
0: देखो प्रिय, तुमने आम्र कुंज में उपस्थित आम्र वृक्षों की संख्या गणना तो कर ही ली है, अब तुम अलग अलग आकार के 5 वृक्ष चिन्हित कर लो। इसके बाद इन चिन्हित वृक्षों में से प्रत्येक वृक्ष पर उपस्थित आम्र फलों की संख्या ज्ञात करो। इस तरह तुम्हें इन 5 वृक्षों पर उपस्थित फलों की 5 संख्याएं प्राप्त होंगी। इन संख्याओं का योग करके प्राप्त संख्या में 5 का भाग देने पर तुम्हें 1 वृक्ष पर उपस्थित आम्र फलों की औसत संख्या अर्थात अनुमानित संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस औसत संख्या को आम्र कुंज में उपस्थित वृक्षों की कुल संख्या से गुणा करने पर आम्र कुंज में उपस्थित वृक्षों पर आम्र फलों की अनुमानित संख्या प्राप्त हो जाएगी।
1: अरे वाह मुनिवर, आपने तो मेरी समस्या चुटकियों में हल कर दी।
0: अब से गांठ बांध लो, चिंतित रहने की जगह समस्या पर आपस में चर्चा करके हल ढूंढा जा सकता है।
1: इस सीख को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे हाँ, सुना है आप आचार्य श्री के साथ विभिन्न आश्रमों के आचार्यों के समागम में भाग लेने जा रहे हैं।
0: हाँ, ये सही है, ये आचार्य श्री का मुझ पर अनुग्रह और स्नेह ही है जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा।
1: आचार्य श्री का आप पर विश्वास अनुचित नहीं है मुनिवर, आप उनके प्रिय और सबसे योग्य शिष्य जो हैं।
0: हाँ, अब ये बातें छोड़ो, हमें जल्द ही आश्रम पहुंच जाना चाहिए, चलो।
1: हाँ हाँ, एक मिनट, मैं लकड़ियों का गट्ठर लेकर आता हूँ, चलिए।

0: वो आ रहे हैं अपस्तम मुनि।
1: हाँ, उनसे ही ज्ञात होगा आचार्यों की सभा में क्या हुआ।
2: पहले उन्हें बधाई तो दो। आचार्यों की सभा में आचार्य बोधायन के साथ भाग लेना महान उपलब्धि है।
0: मुनिश्री बधाई।
2: अत्यंत हर्षित हैं।
3: प्रणाम मुनिश्री, बताएं आचार्यों की सभा में भाग लेना कैसा अनुभव था।
4: बधाई के लिए हार्दिक धन्यवाद। ये सब आप सभी की शुभकामनाओं और स्नेह के कारण ही संभव हुआ। जहाँ तक महासभा में भाग लेने के अनुभव की बात है तो ये निश्चय ही अद्भुत था, अनिर्वचनीय।
3: वहाँ सभा में क्या हुआ मुनिश्री।
4: सभा क्या, महासभा थी वो। अनेक आचार्यों का समागम था। बहुत कुछ हुआ था वहाँ। अनेक विषयों पर, शास्त्रों पर चर्चाएं हुई, शास्त्रार्थ हुए। मूल बात यह है कि आचार्य बोधायन की शुल्ब सूत्र पर विशेष चर्चा हुई। सभी ने आचार्य श्री की खोजों उपलब्धियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। शुल्ब सूत्र को गणित के इतिहास में मील का पत्थर घोषित किया गया। कहा गया कि ये कालजयी ग्रंथ है जिसकी चर्चा शताब्दियों तक होती रहेगी।
0: बधाई बधाई।
3: और कोई विशेष घटना।
4: हाँ, घटनाएं तो अनेक हैं, पर एक ज्ञातव्य है। वहां आचार्य श्री के मार्गदर्शन में 1000 ईंटों की एक उड़ते पक्षी के आकार की एक यज्ञ वेदी बनाई गई। ये वेदी वहां विद्वानों, विशेषकर ज्यामिति शास्त्रियों के लिए आश्चर्य का विषय थी, क्योंकि 10 प्रकार की ईंटों से बनी वेदी की सतह यजमान के 7.5 गुना थी और ईंटों का माप यजमान के 5वें हिस्से के बराबर था। कृपया शांत हो, शांत हो। आचार्य श्री पधार रहे हैं, उन्हें धमाल कतई पसंद नहीं है। चलिए चलिए सभा गृह में चलिए, हमें वहां उपस्थित होना है। आइए आइए आइए आइए आइए आइए।

तो बच्चों ये थी झलक आचार्य बोधायन के आश्रम की। बच्चों विश्व के अनेक विद्वानों, विचारकों और वैज्ञानिकों ने वेदकालीन भारत में गणित के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां प्राप्त की गई थीं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। महान वैज्ञानिक लाप्लास ने कहा था कि ये भारत ही है जिसने 10 अंकों की संख्याओं को व्यक्त करने का अद्वितीय तरीका दिया। ये तरीका अब इतना सरल लगता है कि इसकी जबरदस्त गुणवत्ता की अनदेखी तक हो जाती है। इन आविष्कारों का महत्व इस बात से भी स्पष्ट हो सकता है कि इतिहास के दो महान व्यक्ति आर्कमिडीज और अपोलोनियस की मेधा में दार्शनिक प्रणाली की बात नहीं आई। ऐसे ही सर मोनियर विलियम्स के विचार थे कि शताब्दियों पहले हिंदुओं ने ज्यामिति और बीजगणित के क्षेत्र में जो आविष्कार किए वे अद्भुत हैं।

0: साथियों, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी किसी और ऋषि वैज्ञानिक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें,
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण। आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त सुनीता सिंह। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। बस थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम

0: हाँ, घूमना किसे पसंद नहीं। नई नई जगहें देखना, नए नए लोगों से मिलना, एक अलग तरह की संस्कृति और एक अलग तरह का नजारा।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ घूमने फिरने के लिए।
0: और इन सब का अपना एक अलग ही आनंद होता है।
1: हो भी क्यों ना,
0: एक अलग ही रोमांच है। इस रोमांच की तमन्ना हमें मजबूर करती है कि हम अपने खोल से बाहर निकले और देखें कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी विविध है।
1: बिल्कुल ठीक कहा कंचन तुमने, वरना हमारी जिंदगी तो ऐसी हो जाएगी जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक अगर हम घूमने नहीं निकले। एक बात बताऊं तुम्हें?
0: हाँ?
1: प्रसंगवश हमें 14वीं सदी के एक यात्री इब्न बतूता की याद आती है। मोरक्को के टेंजियर शहर का वो रहने वाला था।
0: हाँ?
1: और पैदाइशी तौर पर उसे घूमने का जबरदस्त जज्बा था।
0: वह
1: कहता था कि मुझे वो ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए जो किताबों में लिखा है, भाई मैं तो चीजों को अपनी आंखों से देखना, उन्हें महसूस करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ।
0: हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में।
1: अच्छा?
0: वो कहते थे कि मैं दुनिया देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ, और घुमक्कड़पन के इसी उन्माद में 22 साल का ये युवक अकेले ही अपने घर से निकल पड़ा, ऐसे जैसे चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर निकल पड़ता है।
1: बिल्कुल ठीक।
0: 14वीं सदी का माहौल आज जैसा तो नहीं होगा तब। उस जमाने में अकेले तो क्या, कारवा के साथ चलने पर भी जान की कोई गारंटी नहीं होती थी।
1: हाँ, आपको घर बैठे घुमाने का रोमांच अनुभव कराने के लिए चलो आज हम आपको सैर पर ले चलते हैं, एक रेडियो यात्रा पर। इस कड़ी में सबसे पहले हम चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में।
0: वाह, वाराणसी से मुझे कहावत याद आ गई।
1: कौन सी?
0: शाम अवध सुबह काशी, यानी अवध की शाम और काशी की सुबह बड़ी ही सुहानी होती है।
1: ये तो ठीक है।
0: सच बात है, काशी यानी कि वाराणसी में सुबह मुंह अंधेरे ही हर हर गंगे हर हर महादेव करती टोलियां जब गंगा तट की तरफ बढ़ती हैं, तो मन एक बार की भक्तिमय हो उठता है। सूरज के जगने से पहले ही ये शहर जग पड़ता है, मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं और गंगा का घाट चहल पहल से भर जाता है।
1: काशी नगरी पूरी दुनिया में सबसे निराली है। भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है, और मानता तो यह भी है कि यह शहर दुनिया में होकर भी मानो दुनिया में नहीं है, और इसलिए जब पूरा विश्व प्रलय में डूब जाएगा तो कहते हैं तब काशी ही अपनी जगह पर कायम रहेगी, ऐसी मान्यता लोगों में आदि काल से चली आ रही।
0: और काशी को वाराणसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वरुणा और असी नदियों के बीच बसा हुआ है। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये दोनों ही नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों ने अपने प्यार भरे आलिंगन में इस शहर को ऐसे पाला है जैसे दो माताएं किसी बच्चे को पालती हैं।
1: वाह वाह, क्या कल्पना करिए तुमने। दुनिया के इतिहास में अनेक नगरों का उत्थान और पतन होता रहा है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को ही ले लो। आज से 5000 साल पहले बसे इन शहरों में अब केवल मलबे ही मलबे बचे हैं, लेकिन वाराणसी शायद पूरी दुनिया का ऐसा सबसे पुराना शहर है जो लगातार जिंदा है, अनवरत धड़क रहा है। और हो भी क्यों ना, शिव जी की खास पसंद जो है ये काशी।
0: हाँ, और इसके बारे में मार्क ट्विन ने तो ये भी कहा था कि ये शहर ओल्डर देन हिस्ट्री है। वे लिखते हैं कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पुराणों से भी पुराना है, और इन सब की आयु को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो ये शहर इससे भी दुगना पुराना है।
1: वाराणसी शहर इतना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। इस ग्रंथ में इसे काशी कहकर के पुकारा गया है। काशी शब्द का अर्थ होता है सिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का शहर या ज्योति का शहर।
0: और प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक होता है। धर्म का भी। और जागरण का भी।
1: बिल्कुल,
0: ये हम नहीं कहते, हमारे पुराने श्लोक कहते हैं।
1: कौन से श्लोक?
0: अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर, और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आपको बता दें कि ये पंक्तियां वृहदारण्यक उपनिषद के नवरस मंत्र से ली गई हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन वाराणसी के संदर्भ में प्रकाश का अर्थ ज्ञान नहीं, जागरण नहीं, बल्कि कुछ और ही है। और वो क्या है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: ऋग्वेद के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ स्कंद पुराण है, जिसमें पूरा का पूरा एक काशी खंड ही है।
1: अच्छा।
0: और इस खंड में 15,000 श्लोक हैं। इनमें से एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं,
1: क्या?
0: अखिल विश्व के तीनों लोकों में केवल एक ही शहर मेरा है और वो है काशी।
1: भाई वाह, क्या बात है।
0: और इसी शहर में मेरा शाही महल भी है।
1: श्रोताओं, अगर आप भूल रहे हो तो हम आपको याद दिला दें कि गंगा भी शिव की जटा से ही निकली है, यानी हर तरह से वाराणसी शिव में है। तभी तो हर हर गंगे हर हर गंगे यहाँ का सबसे बड़ा मंत्र है।
0: और रामायण व महाभारत ग्रंथों में भी वाराणसी की चर्चा बारंबार मिलती है। गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका समय भी आज से लगभग 2,500 साल पहले का है।
1: बिल्कुल।
0: ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पहला उपनिषद ऋषिपत्तन में दिया था। ये ऋषिपत्तन ही आज सारनाथ है, जो वाराणसी से ही लगा हुआ है, जैसे कि भोपाल और बैरागढ़।
1: हाँ, गौतम बुद्ध बोध गया से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब यहाँ आए तब यहाँ पर एक बगीचा हुआ करता था जिसे मृगार्दव कहा जाता था। इस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा बगीचा जिसमें हिरण रहते हों। आज भी यह बगीचा है जिसे डेयर पार्क कहा जाता है और आज भी यहाँ पे हिरण रहते हैं।
0: और इस बगीचे में ही गौतम बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बौद्ध परंपरा में ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है, जिसका मतलब होता है धर्म के पहिए का गतिशील होना।
1: हाँ, बुद्ध के निर्वाण के बाद सारनाथ में धमेक स्तूप बनाया गया जिसके आज केवल अवशेष ही मिलते हैं। यहाँ मुलागन गुटी नाम का एक विहार भी हुआ करता था। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला वर्षाकाल यहीं व्यतीत किया था और अब इस विहार को श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है।
0: इस तरह बुद्ध से संबंधित होने के कारण सारनाथ आज दुनिया भर के बौद्ध लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। और यहाँ हर समय पर जापान, थाईलैंड, तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार देशों के तीर्थयात्रियों का मेला लगा रहता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सारनाथ का एक और महत्व है और वह यह है कि यहाँ से प्राप्त अशोक की लाट से भारत सरकार का राज्य चिन्ह लिया गया है, जिसमें 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं।
0: बौद्ध धर्म के समान ही जैन धर्म से भी वाराणसी का गहरा रिश्ता रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी यहीं हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे।
1: वाराणसी अपने खूबसूरत घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूं तो गंगा हर जगह मनोहारी है, पर काशी में तो इसकी छटा निराली है। मॉडर्न एज के जाने माने पेंटर मकबूल फिदा हुसैन को तो बनारस व यहाँ का गंगा तट इतना भाया कि उनकी पेंटिंग में अनेकों रंग इसमें बिखरे हुए हैं।
0: यहाँ इसके किनारों पर कुल 80 घाट बने हुए हैं, जो राजघाट से शुरू होकर 80 घाट तक फैले हैं। इन्हीं में से एक घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने सपने में अपना राज्य दान दे दिया था, तब वे यहीं आकर एक डोम के दास बने थे।
1: लाइफ का कंट्रास्ट अगर देखना हो तो मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट देखें। एक मृत्यु का प्रतीक है तो दूसरा जीवन का। एक पर दाह संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी रहती है तो दूसरी तरफ शादी विवाह की मन्नतें पूरी करने वालों से अटा पड़ा रहता है। पूरा का पूरा वातावरण जीवन की किलकारियों से भरा रहता है।
0: उस क्षेत्र के वरवधु शादी के बाद दशाश्वमेघ अवश्य आते हैं। गंगा माँ को चुनर चढ़ाई जाती है। दीपदान चलता रहता है। मंदिरों के घंटे जीवन का उद्घोष करते रहते हैं। घाट क्या है? पूरा एक शहर है। विदेशी यात्रियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा भी यहीं दिखाई देता है। घाट की सीढ़ियों पर वे ऐसे शांति से बैठे रहते हैं जैसे यहाँ विद्यमान आध्यात्मिक ऊर्जा को चुपचाप आत्मसात कर रहे हो।
1: हाँ, और दूसरी ओर मणिकर्णिका कुछ और नहीं, बस मौत का सन्नाटा है यहाँ। यहाँ आकर के कबीर का दोहा याद आता है।
0: कौन सा?
1: पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात।
0: यानी मनुष्य का शरीर और क्या है, बस पानी का एक बुलबुला ही तो है। यहाँ से लौटने के बाद हफ्तों तक जीवन की निसारता पीछा करती रहती है। वैराग्य अनुराग पर चोट करता रहता है, पर अंत में जीत अनुराग की ही होती है। ऐसा ना हो तो सब सन्यासी ही हो जाए।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब काशी की बात चले तो काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा भला कैसे ना हो। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दे कि इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में भी है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, और यह लाइट कुछ और नहीं ज्योतिर्लिंग ही है।
0: दरअसल ज्योतिर्लिंग उस देव स्थान को कहते हैं जहाँ शिव मूर्ति की नहीं बल्कि शिवलिंग की उपासना होती है।
1: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि शिव सनातन है, निराकार है। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को अरिद्र नक्षत्र की एक रात्रि में एक अग्नि शिखा के रूप में प्रकट किया जो धरती को फाड़ करके बाहर निकल रही थी। इस अग्नि शिखा को ही प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट किया जाता है।
0: श्रोताओं, 3 ज्योतिर्लिंग के नाम तो आपने सुन ही लिए, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ। चलिए अब आपको शेष 9 नाम भी बताए देते हैं। केदारनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुश्मेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग।
1: श्रोताओं, काशी के विश्वनाथ मंदिर को कभी कभी गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता था। वजह यह थी कि इस मंदिर के शिखर पर 50 फीट ऊंचा सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर किसने चढ़ाया था? पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने।
0: इस मंदिर का कुछ रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से भी है।
1: हाँ।
0: राजमाता अहिल्याबाई होलकर कितनी शिव भक्त थी ये तो सभी जानते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और गंगा के कुछ घाटों को भी पक्का करवाया था। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर ले तो मोक्ष का द्वार उसके लिए स्वयमेव खुल जाता है।
1: और शायद यही वजह है कि आदि शंकराचार्य से लेकर के गुरु नानक, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि कितने ही महापुरुषों ने इस मंदिर के दर्शन किए, स्वयं को धन्य किया। इतिहास के लंबे दौर में अनेक बार इस मंदिर को हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार दुगनी शान शौकत के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया।
0: श्रोताओं, वाराणसी शहर धर्म और आध्यात्म की एक गंगा है। तभी तो यहाँ एक से बढ़कर एक पवित्र स्थल है। अब संकट मोचन को ही ले लीजिए। उल्लेख मिलता है कि वाराणसी में असी नदी के पास एक जगह पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे। सो उन्होंने उस जगह पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की।
1: लेकिन आज जो मंदिर का ढांचा है उसका निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में बंदरों के झुंड मिलते हैं, इतने कि आप हैरान हो जाएं। ऐसा लगता है कि हम वानर लोक में आ गए हैं। पता नहीं जाने कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये उनके राजा का मंदिर है।
0: जरा याद करें यहाँ पर हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ।
1: कौन सी?
0: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुं लोक उजागर। यानी यहाँ हनुमान जी को कपिश कहा गया है।
1: बिल्कुल।
0: इसका अर्थ है कपि, यानी बंदरों के ईश और लौकिक अर्थ में राजा। प्रसंगवश आपको बता दें कि हनुमान चालीसा की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है और उसकी भाषा भी अवधी है।
1: हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि संकट मोचन मंदिर के बंदर भी बड़े नटखट और शरारती होते हैं। हो सकता है कि ये आपकी कोई कीमती चीज उठा ले जाए, लेकिन केवल बार्गेनिंग के लिए नहीं, आप

0: मोचन के दर्शन करना।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हम वाराणसी की बात करें और वाराणसी के शिल्प की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। वाराणसी का शिल्प बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, खासकर यहाँ की बनी हुई बनारसी साड़ियाँ। इन साड़ियों का भारतीय लोगों के लिए क्या दर्जा है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर दुल्हन की यह अभिलाषा होती है कि वह अपने विवाह के अवसर पर बनारसी साड़ी जरूर पहने।
0: ये साड़ियाँ होती तो सिल्क की हैं, पर इन पर सोने और चांदी की जरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी इतनी जबरदस्त होती है कि साड़ियाँ भारी भरकम हो जाती हैं, इसलिए ये केवल खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें पहनना संभव ही नहीं।
1: भारत की बात छोड़ दें तो विदेशों में भी इन साड़ियों के प्रति भारी दीवानगी देखने को मिलती है। अगर आपने अपने किसी एनआरआई दोस्त की पत्नी को बनारसी साड़ी भेंट कर दी तो समझ लीजिए कि जिंदगी भर के लिए वह आपका हो गया। वास्तव में शादी विवाह के मौके पर इस साड़ी का तोहफा देना एक बड़ी ही महानता मानी जाती है।
0: यहाँ आपको बता दें कि सिल्क की बनी बनारसी साड़ियाँ बनारस की प्राचीन संस्कृति का अंग नहीं रही हैं। लंदन का एक व्यापारी रॉल्फ फिच 16वीं शताब्दी में भारत आया। उस समय भारत पर सम्राट अकबर की हुकूमत थी। फिच ने भारत के अनेक शहर घूमे जिनमें वाराणसी भी था। उसने लिखा है कि वाराणसी सूती कपड़ों का एक प्रमुख केंद्र था।
1: श्रोताओं, एक बात हम आपको बता दें, सम्राट अकबर के काल तक वाराणसी सिल्क टेक्सटाइल के लिए नहीं जाना जाता था। वास्तव में बनारस की साड़ियां तो गुजरात के बुनकरों की देन है। 17वीं शताब्दी के बाद गुजरात में भयानक अकाल पड़ा और वहां से बहुत सारे बुनकर पलायन करके बनारस में आ गए और इन्हीं लोगों ने बनारसी साड़ियों की नींव डाली।
0: बनारस की बात चले तो यहाँ की गलियाँ कैसे छूट सकती हैं? पूरी दुनिया में मशहूर हैं यहाँ की गलियाँ।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो कई बार भटक चुका हूँ इन गलियों में।
0: बाहर वालों के लिए तो भूल भुलैया ही है, तो यहाँ वालों के लिए तोहफा? सड़क पर जाम लगा है, कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर गलियों से निकल जाइए।
1: आप पूरा का पूरा शहर इन गलियों के सहारे नाप सकते हैं। करोड़ों का व्यापार इन गलियों में होता है। बनारसी साड़ियों की अच्छी से अच्छी दुकानें इन्हीं गलियों में हैं। बनारस के नायाब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी इन्हीं गलियों में मिलते हैं।
0: श्रोताओं, विश्वनाथ मंदिर की चर्चा तो हो ही चुकी है। दशाश्वमेध घाट की सड़क से इस मंदिर को जोड़ने का काम भी एक गली ही करती है।
1: बिल्कुल।
0: जिसे विश्वनाथ गली कहा जाता है। गली क्या है, पूरा एक शहर है, मिनी वाराणसी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
1: हाँ, एक से बढ़कर एक हैंडीक्राफ्ट के सामान, भगवान की अद्भुत मूर्तियाँ, राजा और सिपाही, पर्स, साड़ियाँ, गहने, ऐसा लगता है कि सपनों की गलियों में तैर रहे हैं आप। विदेशी पर्यटकों की तो भरमार रहती है इस गली में, लेकिन बार्गेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ खरीदना हो तो होशियार रहिएगा आप।
0: अरे हाँ, बनारस जाइएगा तो बनारसी लस्सी पीना मत भूलिएगा।
1: अच्छा,
0: वो स्वाद, वो सुगंध, आहा, वो स्टाइल आप कहीं और पा ही नहीं सकते। ताजी मलाईदार दही आपके सामने ही फेंटी जाएगी और बर्फ का चूरा मिलाया जाएगा, शक्कर मिलाई जाएगी और ऊपर से गुलाब जल डालकर आपको सर्व की जाएगी मलाई की परत के साथ
1: जी।
0: मिट्टी के ये बड़े बड़े कुल्हड़ में देखते ही बस मुंह में पानी आ जाएगा।
1: अरे मुझे तो सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लस्सी बनाने की परंपरागत कला और पूरी तरह से हैंडमेड काम, ना मिक्सी ना फ्रिज और लस्सी की लस्सी।
0: लस्सी के अलावा एक और भी चीज मशहूर है बनारस की।
1: मुझे पता है आपका इशारा क्या है, बनारसी पान की तरफ ना।
0: हाँ, बनारसी पान भी बनारस की एक पहचान है। यूं तो कलकतिया पान भी मशहूर है।
1: हाँ।
0: पर बनारसी पान की बात ही कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है?
1: भाई, कलकतिया पान बिल्कुल पक्का हरा होता है और बनारसी पान हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है। मुझे तो इतना ही पता है और इसीलिए इस कलकतिया पान की तुलना में इनमें कड़वापन कम होता है। बनारस के लोगों की कमजोरी है यह पान, और शायद बनारस के बाहर के लोगों की भी। तभी तो डॉन फिल्म का यह गाना कि खाई के पान बनारस वाला, आज भी जब बजता है ना तो लोग झूम उठते हैं।
0: हाँ।
1: श्रोता, बनारसी पान के बाद आपको याद दिला दे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारसी घराना बड़ा प्रसिद्ध है, और यह घराना तबला वादन में महारत रखता है।
0: धर्मप्राण वाराणसी को भारत के 7 मोक्षदायी स्थलों में एक माना जाता है।
1: बिल्कुल।
0: गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका व द्वारवती स्थल मोक्षदायक हैं।
1: भारतीय उपमहाद्वीपों के शक्तिपीठों के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये वे स्थल है जहां पर दक्ष की पुत्री तथा भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न अंग कट करके गिरे थे। इन सभी स्थलों पर आज शक्तिपीठों की स्थापना की गई है, और ये पीठ अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। और वाराणसी में सती के कान की बाली गिरी थी, इस स्थान पर ही आज विशालाक्षी मंदिर बना हुआ है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं वाराणसी से संबंधित कुछ महापुरुषों की।
1: बिल्कुल।
0: वाराणसी असाधारण नगर है। यहाँ के वातावरण में चैतन्य लहरियां बहुत होती हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है।
1: हाँ।
0: ऐसे लोगों का नाम गिनाने बैठे जो वाराणसी के दीवाने रहे हैं तो एक पूरा ही एपिसोड नाकाफी रहेगा, लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं।
1: चलो, शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं महाकवि तुलसीदास से। इन्होंने अपना अंतिम जीवन वाराणसी के एक गंगा घाट पर व्यतीत किया, और अंत में देह त्याग भी यहीं किया। इस घाट का नाम तुलसी घाट कहलाता है।
0: गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह कबीर दास जी का भी वाराणसी से गहरा संबंध है। उनका पालन पोषण यहाँ के एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। जिस जगह पर कबीर रहे और पले वो आज कबीर चौरा कहलाता है।
1: अब हम बात करते हैं महामना मदन मोहन मालवीय की। इनका जन्म तो इलाहाबाद में ही हुआ था, पर इनकी असली कर्मभूमि रही वाराणसी, जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी के BHU की स्थापना करके वे अमर हो गए।
0: श्रोताओं, आपको ये बता दें कि ये यूनिवर्सिटी न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। इसका केवल मुख्य कैंपस ही 1300 एकड़ में फैला हुआ है।
1: हाँ, तो मदन मोहन मालवीय जो पेशे से वकील थे, भारत की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा मानते थे, सो उन्होंने वाराणसी में एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की ठान ली। और उस समय भारत में जो यूनिवर्सिटीज थी वे केवल एफिलेटेड थी।
0: मदन मोहन जी के सामने रास्ता बहुत ही कठिन था। सरकार को राजी करना था, जमीन का इंतजाम करना था, और ढेर सारा पैसा चाहिए था। लेकिन जब चाह होती है तो राह निकल ही आती है। राजा बनारस ने जमीन दे दी, भारत के धनपतियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी, और कांग्रेस के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने कानून भी पास कर दिया।
1: सबसे बड़ा सहयोग तो एनी बेसेंट का मिला, जो पहले ही बनारस हिंदू स्कूल स्थापना कर चुकी थी। यह स्कूल ही BHU के लिए आधारशिला बन गया, और इस तरह जनता के पैसे से जनता की ताकत पर सन 1916 में भारत का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया।
0: जो रोल डॉक्टर हरि सिंह गौर का सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में था, उससे भी बढ़कर मदन मोहन मालवीय जी का BHU की स्थापना में रहा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी के सामने पैसे की जबरदस्त तंगी थी।
1: मदन मोहन केवल एक शिक्षा शास्त्री ही नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महान सेनानी थे। कांग्रेस में उनका क्या स्थान था, यह इस बात से ही प्रमाणित होता है कि एक दो नहीं बल्कि कुल 4 बार वे इस संस्था के प्रेसिडेंट चुने गए। इसी संस्था के मंच पर सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन के दौरान ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे इस शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं।
0: भारत के सबसे सरल, नेक और ईमानदार प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम सबसे पहले जुमा पर आता है वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बनारस के ही लाल थे जो गंगा उस पार के गांव में रहते थे।
1: गरीबी बेइंतहा थी, पढ़ने के लिए गंगा पार करके शहर आना पड़ता था, पर नाव का किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था तो वे तैर करके गंगा पार करते थे। बनारस की गंगा कोई मामूली गंगा नहीं है, इसे पार करना एक जीवट का काम है और जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया, दुबले पतले कमजोर से इंसान ने।
0: लेकिन पढ़ाई का जज्बा भुजाओं में बल बनकर नदी पार कराता रहता। शायद ये गंगा जल के स्पर्श का ही प्रभाव रहा होगा कि उनकी रग रग में ईमानदारी और सच्चाई भर गई। कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब उनका देहांत हुआ तो वे अपने पीछे संपत्ति नहीं बल्कि कर्ज छोड़ गए थे।
1: हाँ, मुझे याद है। वाराणसी शहर बड़ी शिद्दत से अपने इस लाल को याद करता है। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के खुजराव हवाई अड्डे से यहाँ के लिए सीधी उड़ान भी मिलती है।
0: हम वाराणसी के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, पर इच्छा रखते हैं कि अगर आपने वाराणसी न देखा हो तो एक बार यहाँ जरूर जाएं।
1: बिल्कुल श्रोताओं, अब वाराणसी की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपको फिर ले चलेंगे किसी दूसरे नगर की यात्रा पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और प्रस्तुत किया था प्रमोद शर्मा और
0: कंचन राजानी ने।
1: सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, आपके लिए लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम तराने आजादी के। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत से।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी के। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती, भारत भारती।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हमारे देश में संगीत की एक समृद्ध परंपरा रही है और संगीत दायरों को नहीं मानता। इतना बड़ा हमारा देश, अलग अलग बोली भाषा के लोग, अलग जाति धर्म के लोग, अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग, अलग जाति धर्म, अलग बोली भाषा और अलग रीति रिवाजों से उत्पन्न कितनी ही स्वर लहरियां संगीत की अलग अलग शैलियों के रूप में आज विख्यात हैं। ऐसी ही एक संगीत शैली है अभंग। आज भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की इसी संगीत परंपरा की वानगी। और विशेष बात ये कि इसे प्रस्तुत करने वाली दो कलाकार चेन्नई से संबद्ध हैं। जी हाँ, कर्नाटक शैली में पारंगत रंजनी और गायत्री। इनके युगल स्वरों में आइए सुनते हैं अभंग गायन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रंजनी और गायत्री का अभंग गायन। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत जल्द भारत भारती के एक और अंक के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: शुभ संध्या। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रेखवार भारती। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा अब आपका और हमारा साथ। आप हमारा प्रसारण ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट सुन सकते हैं मिक्सलर ऐप पर, रेडियो गार्डन पर, पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पर, एप्पल पॉडकास्ट पर, Amazon पॉडकास्ट और साथ ही YouTube पॉडकास्ट पर भी। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें, बस कुछ ही देर में सुनिए कार्यक्रम अक्षय निधि। 5:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम भक्ति संगीत, भगवत आराधना के स्वर। वतन का राग कार्यक्रम आज केंद्रित है रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर, पेश किया जाएगा 6 बजे। 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम आमने सामने, नगीन तनवीर के खास चर्चा मनीषा चतुर्वेदी से। मुंशी प्रेमचंद पर आधारित है आज का वागर्ध कार्यक्रम, 7 बजे पेश किया जाएगा। 7:30 पर सुनिए विशेष कार्यक्रम शहीद भगत सिंह का भाग 3। रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे रात 8 बजे, जिसमें आप ब्रिक्स कल्चरल प्रोग्राम के बारे में सुनेंगे। याद करो कुर्बानी कार्यक्रम पेश किया जाएगा 8:30 पर, वासुदेव शरण अग्रवाल की जयंती पर आधारित है। कला कल्लोननी आप सुनेंगे रामगोपाल बजाज पर केंद्रित है, रात 9 बजे। और 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद का भाग 12। तो ये थी हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। वेद पुराण आख्यान मीमांसा ये सब हमारी भारतीय संस्कृति के दर्शन हैं, और इन दर्शनों से रूबरू कराता है हमारा विशेष कार्यक्रम अक्षय निधि। प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 183 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रावरुणी, देवता हैं अश्विनी कुमार, छंद है त्रिष्टुप।
1: तम युञ्जाथाम मनसो यो जवीयान त्रिवंधुरो वृषणा यस्रिचक्रह येनो पयाथह सुकृतो दुरोणम त्रिधातुना पततो वीर्ण पर्णैः। हे सामर्थ्यवान अश्विनी कुमारो, आपका जो तीन पहियों वाला, तीन बैठने योग्य स्थान वाला अत्यंत गतिशील रथ है, उसे जोड़कर तैयार करें। तीन धातुओं से विनिर्मित रथ से पक्षी की तरह उड़कर आप दोनों श्रेष्ठ कर्मी के घर पहुंचते हैं। सुवृद्रथो वर्तते यन्नभि क्षाम यत्तिष्ठथः क्रतुमन्तानुप्रिक्षे वपुर वपुष्या सचतामियं गीर्दिवो दुहित्रोशसा सचेथे। हे अश्विनी कुमारों, हमेशा सत्कर्म में तत्पर आप दोनों हविष्यान्न प्राप्त करने के लिए भूमि पर गतिमान अपने सुंदर रथ से यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं। आपकी महिमा का गान करने वाली स्तुतियां आपको हर्षित करें। आप दोनों द्योलोक की पुत्री उषा के साथ प्रभात वेला में ही प्रस्थान करते हैं। आतिष्ठतम सुवृतम यो रथो वामनु व्रतानि वर्तते हविष्मान येन नरा नासत्येशयध्यै वर्तिर्याथस्तनयायत्मने च। हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, हविष्यान्नों से पूर्ण रूपेण भरा हुआ आपका रथ आप दोनों को अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए ले जाता है। उस सुंदर वाहन पर आप दोनों विराजमान हों और यजमान तथा उसकी संतानों को यज्ञ की प्रेरणा देने के लिए उनके घर पधारें। मा वाम वृको मा वृकीरा दधर्षीन मा परी वर्तकमुत माति धक्तम अयम वाम भागो निहित इयम गीर दस्रा विमे वाम निधयो मधुनाम। हे शत्रु संहारक अश्विनी कुमारो, आपके लिए हविर द्रव्य तैयार है। यह स्तुतियां आपके ही निमित्त हैं। मधु से पूर्ण पात्र आपके लिए तैयार हैं। आप हमारा परित्याग न करें और न ही अन्य किसी पर अनुदान बरसाएं। आपकी कृपा से हमारे ऊपर वृक एवं वृकी हमला न करें। युवाम गौतमः पुरुमीडहो अत्रिर्दस्रा हवते वसे हविष्मान दिशम न दिष्टा मृजुयेव यन्ता मे हवम नासत्योप यातम। हे शत्रुनाशक और सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, हविष्यान्न अर्पित करते हुए गौतम ऋषि अत्रि और पुरुमीढ़ ये ऋषि अपने संरक्षण के लिए आपका आवाहन करते हैं। सरल मार्ग से जाने वाला जिस प्रकार अभीष्ट लक्ष्य पर सहज ढंग से पहुंचता है, उसी प्रकार हमारे आवाहन को सुनकर आप हमारे समीप पधारें। अता ऋष्म तमसस्पारमस्य प्रतिवाम स्तोमो अश्विना वधाई एह यातम पथिभिर देवयानैर विद्यामेशम व्रजनम जीरदानुम। हे अश्विनी कुमारों, हम इस अंधकार से पार हो गए हैं। आप दोनों के निमित्त ये स्तोत्रगान किए गए हैं। देवता गण जिस मार्ग से चलते हैं, आप उसी मार्ग से यहां पधारें तथा अन्न बल और विजयश्री हमें शीघ्र प्रदान करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 183 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।
2: नजी भर के देखा।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: भगवत आराधना के सुमधुर भक्तिमय संगीत स्वर सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत में। तो आपके लिए पेश है कार्यक्रम भक्ति संगीत। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न कीजिए, परखने का नहीं।

फूलों की खुशबू हवा के विपरीत दिशा में नहीं फैलती, लेकिन सद्गुणों की कीर्ति दसों दिशाओं में फैलती रहती है।

एक समय में सभी को खुश रखने का प्रयास मत कीजिए। जो काम हाथ में है केवल उसके ऊपर लक्ष्य रखिए, बाकी सब समय के हाथ में छोड़ दीजिए।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग।

वतन करा के श्रोताओं को नमस्कार। मनुष्यता के इतिहास में शायद ही कभी इतने सशक्त और प्रभावशाली तथा संगीतमय शब्द लिखे गए हों जो कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे। इनकी तुलना चिरस्थायी गंगा से की जा सकती है, जो कभी सौम्य तो कभी सफेद छींटे उड़ाती हुई और कभी किनारों को तोड़ती हुई समूचे देश तथा संस्कृति का पोषण करती है। चाहे सरल चतुष्पदी हो या प्रेम की दिव्य भावना का गुणगान करती हुई कविता, अथवा इस विश्व के लिए जोशीली दलील हो, कवि की कल्पना और विचारधारा सुनहरे तार की तरह झिलमिलाती है। कवि भीतरी और बाह्य जीवन को मूर्त रूप देता है। टैगोर के अतिरिक्त और किसी ने इस पहचान का वर्णन इतनी बारीकी से नहीं किया। फल चुनने के लिए वे कहते हैं कि यद्यपि समय की धूल मेरे पथ को गड़बड़ा देती है, लेकिन एक न एक दिन मैं अपने प्राणों का, मेरे जीवन में जो आनंद छिपा है, उसका साक्षात्कार अवश्य करूंगा। मैंने इसकी झलक से ही इसे पहचान लिया है और इसके मनमौजी झोंकों ने मुझसे टकराकर क्षण भर के लिए मेरे विचारों को सुरभित कर दिया है। एक दिन मैं अपने भीतर के आनंद से, जो प्रकाश के पर्दे के पीछे है, अवश्य साक्षात्कार करूंगा और उस व्यापक एकाकीपन में खड़ा हो जाऊंगा जहां वो सृष्टिकर्ता अपनी हर चीज को देखता है।

टैगोर को विश्व कवि ठीक ही कहा गया है। टैगोर की विभिन्न रचनाओं को पढ़ने से व्यक्ति रचना के भाव के अनुसार प्रभावित होता है, या सम्मोहित होता है, या गंभीर चिंतन में डूब जाता है। ये प्रतिक्रियाएं जीवन भर अपनी छाप लगाए रखती हैं। टैगोर बेहतर विश्व और बेहतरीन मानवीय स्थिति के लिए लालायित थे और उन्होंने मार्मिक ढंग से अपने भाव व्यक्त किए। गीतांजलि की बहुप्रशंसित कविता में कवि का सपना है, जहां मन इन चिरव्यापी विचारों और कार्यों से स्वतंत्रता के स्वर्ग की ओर बढ़ता है, मेरे पिता मेरे देश को जगा। भारत के सपने के बारे में एक लेख में गुरुदेव कहते हैं कि मैं भारत से प्रेम करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं इस देश की पूजा करता हूं, इसलिए भी नहीं कि मुझे यहां पैदा होने का अवसर मिला, बल्कि इसलिए कि इसने अशांतिपूर्ण समय में भी उन जीवंत शब्दों को सुरक्षित रखा है जो इसके सपूतों की प्रबुद्ध चेतना से निकले हैं। हम सब जानते हैं कि उन्होंने सपने को साकार करने के लिए ही विश्व भारती की स्थापना की थी। इसका श्री गणेश एक छोटे से स्कूल के रूप में हुआ, जहां वे बच्चों को अपने विचारों और विश्वासों के अनुसार शिक्षा देना चाहते थे। उनकी सतत देखभाल और साज सवार से यह स्कूल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। आज ये शिक्षा का अद्वितीय केंद्र है और संसार में अपनी तरह का अकेला केंद्र।

चिंतक टैगोर के साथ कलाकार टैगोर के काव्य संगीत और चित्रकारी का संदर्भ दिए बिना उनके विचारों का उचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। हम सब जानते हैं कि टैगोर पांडित्य प्रदर्शन और नीरस बुद्धिवाद को पसंद नहीं करते थे। गीतांजलि में टैगोर कहते हैं कि आत्मत्याग में उसकी मुक्ति नहीं है। वे आनंद के हजारों बंधनों में स्वतंत्रता के आलिंगन का अनुभव करते हैं। उनकी मान्यता है कि कवि अपने आप को संसार से और मनुष्यों से अलग नहीं रख सकता। कवि के लिए मनुष्य का संतरास, कुरूपता और पीड़ा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की अन्य चीजें होती हैं। उन्होंने चित्रा की भूमिका में 1915 में कहा था कि लोग उन्हें आदर्शवादी समझते हैं जो केवल लोगों की आशाओं आकांक्षाओं की चर्चा करता है और जीवन का गुलाबी आशावादी चित्र खींचता है। वे आगे कहते हैं कि ये गलत है। ये एक सतत विचारधारा है जिसने उन्हें एक भयानक, अनोखा और विकृत संसार रचने के लिए उकसाया। पश्चिम द्वारा अफ्रीका की लूट खसोट के बारे में उन्होंने अपनी कविता में लिखा है कि मनुष्यों को फंसाने के फंदे के लिए वे चुपचाप तुम्हारे पास चले आए। ये शिकारी जिनका खूंखारपन तुम्हारे सघन जंगलों से भी गहन था, जिनका घमंड तुम्हारे अंधेरे जंगलों से भी अंधा था। सभ्य लोगों के बर्बर लालच ने अपनी निर्लज्ज मानवता को निर्वसन कर दिया। तुम्हारे जंगल की पगडंडी आंसुओं और रक्त से कीचड़ भरी हो गई। वे पीड़ा और मृत्यु की अवश्यम भाविता का वर्णन करते हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें सहन करने की शक्ति की बात भी करते हैं, जो मनुष्य को नए गौरव के साथ प्रस्तुत करती है। टैगोर एक तरह से सत्य के अन्वेषक सिद्ध होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो एक स्थान पर टिक नहीं सकता, क्योंकि इससे वो निष्क्रिय हो जाता है। पथिक बनने के लिए उसे प्रशांत मार्ग का यात्री होना चाहिए। यदि व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता तो वो सत्य को नहीं पा सकता। लेकिन सत्य है कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि हमें उत्तर ना भी मिले तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए। टैगोर का सपना इस संघर्षपूर्ण संसार में रहने वाले कोटि कोटि लोगों को नई आशाएं और आकांक्षाएं प्रदान करता है। आइए विश्व कवि टैगोर को शत शत नमन करें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
3: दोस्तों नमस्कार, आमने सामने कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मनीषा। और आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले हम आपको बता दें कि आप सुप्रसिद्ध लोक गायिका हैं, रंगकर्मी और नया थिएटर की विरासत को आगे बढ़ाने वाली नगीन तनवीर जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
4: सासगारी देवे ननद मुहा लेवे देवर बाबू मोर।
3: आपने बचपन से हबीब तनवीर जी को केवल एक महान रंग निर्देशक के रूप में नहीं बल्कि एक पिता के रूप में भी देखा है, और इन सब से इतर नगीन जी बहुत ज्यादा अपने भीतर लोक गायकी के एसेंस को छुपाए हुए हैं। हमें जब तब उसकी खुशबू सूंघने को मिल जाती है। आपका बहुत स्वागत है नगीन जी स्टूडियो में।
5: बहुत बहुत शुक्रिया।
3: सबसे पहला सवाल मैं आपसे कहूँ तो वो ये कि नगीन तनवीर खुद नगीन तनवीर को कैसे परिभाषित करेंगी?
5: कलाकार के तौर पर और एक सच्ची साधक के तौर पर।
3: वाह, तो ये साधना आपकी, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा गाती हैं, बहुत मधुर गाती हैं, और जब भी आपको सुना है स्टेज से तो हर बार लोक गायकी का एक नया ही रंग देखने को मिलता है। तो क्या हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपकी आवाज में कुछ सुन सकते हैं?
5: मैं एक बहुत पुराना पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाऊंगी जो फिल्मों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन ऑथेंटिक जो जैसा था वैसा मैं पेश कर रही हूँ।
3: जी।
4: सासगारी देवे ननद मुहा लेवे देवर बाबू मोर।

0: क्या बात है, क्या बात है। आपको सुनना, आंखें बंद कर ली जाए और आपको सुना जाए तो ऐसे लगता है जैसे हम भी वहीं पहुंच गए हैं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ की माटी में। बहुत अच्छा लगा। दिल्ली सिक्स का ये गाना हम लोगों ने तो बिल्कुल खड़ी हिंदी में ही सुना है, लेकिन आपके मुंह से लोक भाषा में लोक रंजित तरीके से सुनना बहुत आनंददायक था। एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि हबीब तनवीर जी को अपने आप में रंग धर्म का, रंग कर्म का विश्वविद्यालय माना जाता है, लेकिन कई बार इतनी बड़ी विरासत के साथ जब आप रहते हैं, ऐसी शख्सियत के साथ जब आप रहते हैं, तो शेडो इमेज का भी एक कहीं ना कहीं असर आ जाता है। आपको क्या लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए कि पिता मेरे एक बरगद के पेड़ जैसे थे
0: जी,
1: तो उसके प्रभाव में मैं थी। और पहले ऐसा था, अब वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है
0: जी।
1: अब अपनी मेरी खुद की पहचान अब बन रही है, इसलिए कि इतना उनका ऑरा था ऊर्जा का, और रौब भी था। और ये मैंने देखा है कि एकाग्रता, जिसे अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, उससे ऊर्जा बढ़ती है। उसी ऊर्जा से लोग मतलब कांपते भी थे, डरते थे और हिचकिचाते थे। उसी ऑरा का असर मुझ पे भी पड़ा, ऊर्जा का असर। और जैसे कि मैंने कहा कि बरगद के पेड़ जैसे थे, आपने कहा ना कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन विश्वविद्यालय थे, तो बरगद का पेड़ सबको समा लेता है, वैसे ही थे हबीब साहब। बहुत सालों तक उस प्रभाव में मैं झुकी रही कह सकते हैं
0: जी,
1: लेकिन अब वो बदल गया है कुछ सालों से
0: जी। जी जी, आपकी माँ मोनिका मिश्रा जी खुद बहुत प्रतिभाशाली कलाकार थीं। आपको क्या लगता है हबीब तनवीर जी के रंग कर्म, नया थिएटर और उनके सपनों को साकार करने की यात्रा में मोनिका मिश्रा जी का क्या हाथ देखती हैं आप?
1: मोनिका मिश्रा जी को पूरी तालीम थी अमेरिका से, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, लाइटिंग, सेट डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी, सब कुछ। लेकिन जब उनका विवाह हुआ हबीब साहब के साथ, तो उनको लगा कि ये मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो उन्होंने एक कदम पीछे कर लिया, वरना ईगो क्लैश होता ज़बरदस्त, तो एक कदम पीछे कर लिया। और फिर वो बैक स्टेज काम संभालती थी, प्रॉपर्टीज और कॉस्ट्यूम, और पहले रोल भी कराए हबीब साहब ने उनको, तो रोल करती थी, बहुत अच्छी कॉमेडी एक्ट्रेस थी। तो धीरे धीरे उन्होंने पीछे वो हट गई, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वो एक टीम वर्क जैसे काम करने लगे। हबीब साहब डायरेक्टर थे तो वो प्रोड्यूसर थी, वो सारे टिकट छपवाती थी, इनविटेशन कार्ड्स छपवाती थी, पासेस, एंटरटेनमेंट टैक्स पहले हुआ करता था दिल्ली में, सिस्टम था वो सब, दौड़ भाग का काम वो करती थी, पब्लिक बस में जाके ये सब करती थी। तो दे वर्क लाइक अ टीम। और ये पहली मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में
0: जी
1: ऐसी टीम वर्क की। और बाद में तो ऐसा हुआ कि कोई भी चीज़ के लिए बगैर उनके सलाह मशवरा के बगैर वो आगे कदम नहीं बढ़ाते थे हबीब साहब, चाहे वो डायरेक्शन का कुछ काम हो या कॉस्ट्यूम हो या कुछ भी हो या स्क्रिप्ट में कोई टेक्स्ट हो, संवाद हो, हर चीज़ में मोनिका मिश्रा जी को दखल था। हर चीज़ में उनसे सलाह लेते थे कि ये मोनिका ये ठीक है कि नहीं है
0: जी।
1: तो कभी कभी वो मान लेते थे उनकी बात, और जब उनको वो आइडिया पसंद नहीं आता था तो उनसे कुछ नहीं कहते थे, वो चुपचाप मतलब दूसरा रास्ता अपनाते थे, दूसरा जो उनको ठीक लगता था
0: जी,
1: और कहते नहीं थे कुछ उनसे
0: जी।
1: तो मोनिका मिश्रा जी समझ जाती थी कि अब ये मेरा ये आइडिया उनको पसंद नहीं आया, लेकिन स्वीकार, एक्सेप्टेंस बहुत था, उसको कबूल कर लेना, उस पे बहस ना करना, तर्क ना करना, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा।
0: आपके बचपन में आपको लिए चलते हैं नगीन जी, क्योंकि हम जब और बच्चों की परवरिश देखते हैं तो भाई पढ़ाई करो, उठो, चलो स्कूल जाना है, लेकिन हबीब साहब का तो अपने आप में कभी कहीं उनका थिएटर का प्रस्तुति होनी है, कभी कहीं जाना है, मतलब कहते हैं ना कि मुकाम से ज़्यादा सफ़र में कुछ लोग रहते हैं, तो आप कभी बहुत समय सफ़र में गुजरा होगा, आप भी हबीब साहब के साथ इधर उधर काफ़ी जाती रही हूँ, कैसा रहा आपका बचपन?
1: सबसे पहली स्मृतियां तो वो हैं करोल बाग की कि किराए का घर था और ऊपर छत पे बरसाती थी, वहां सब ट्रंक्स थे थिएटर के, वहीं पे एक वो नल की टोटी थी पीतल की, वहीं पे 8-10 छत्तीसगढ़ी वहां रहते थे और वहीं नहाते थे, खाना पकाते थे चूल्हे पर। पहले तो ये स्मृति रही। फिर जब हबीब साहब संसद सदस्य बने राज्यसभा, तो हमारी अम्मा तो बड़ी स्ट्रिक्ट थी, पढ़ना है तुम्हें, होमवर्क करना, सारे सब्जेक्ट वो पढ़ाती थी, इसलिए कि पढ़ाई लिखाई में मुझे तो कोई दिलचस्पी थी नहीं। मैं सोचती थी कि जिंदगी बहुत अच्छी है, नाच और गाना, गाना और नाच। फिर वो पढ़ाती थी, कहती थी कि अच्छा तुम छत्तीसगढ़ियों के पास जा रही हो, एक घंटे में वापस आना है, ये फला चैप्टर करना है, ये होमवर्क करना है। बहुत सख्त थी वो, तो हम टूर में नहीं जाते थे, वो मेरे साथ रुकती थी घर में। फिर कॉलेज डेज में फिर मैं टूर में जाने लगी, लेकिन जब तक स्कूल था मैं कोई टूर में नहीं जाती थी और अम्मा भी नहीं जाती थी। दिल्ली से बाहर अगर टूर हुआ, वो पढ़ाती थी तो वो समर्पित थी मेरे प्रति कि भाई बच्ची को पास होना, मैथमेटिक्स मेरा सबसे कमजोर सब्जेक्ट था, और क्या खिलाना है बच्ची को, भाई गिजा के भाई बच्ची थक भी जाती है, और ये तो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थी हमारी अम्मा।
0: आपकी संगीत की तालीम भी बहुत बड़े बड़े गुरुओं से हुई है, आप कुछ नाम लेना चाहेंगे?
1: मैं 8 साल की थी तब शर्वरी मुखर्जी, उन्होंने सिखाया 2-2.5 साल, स्कूल में पढ़ाती थी वो, बड़ी खूबसूरत, ऐसा लग रहा था कि मंदिर से कोई स्कल्पचर तराशी हुई निकल के आ रही है, बहुत ही खूबसूरत थी। फिर जब वो नहीं सिखा पा रही थी तो उनकी जो गुरु थी उस्तानी दीपाली नाग, मतलब दीपाली तालुकदार, जो डॉक्टर बीडी नाग चौधरी की पत्नी थी, जिन्होंने स्वयं फैयाज खान साहब से तालीम ली थी आगरा घराना, फिर उनके अंडर मैंने संगीत प्रभाकर विशारद 6 साल का वो किया
0: जी
1: स्कूल के जमाने में। फिर बड़ौदा चली गई, माँ बाप पूछ रहे थे कि अब कौन से कॉलेज में डालें, इसको तो म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो दीपाली मासी बुलाते थे हम, तो वो कहने लगी कि बड़ौदा सबसे अच्छी जगह है। बड़ौदा गई, वहाँ 4 साल रही, फिर गुरु की तलाश थी, तो एक हमारे नया थिएटर में थे वो चेलो प्लेयर थे, ऑल इंडिया रेडियो में ए ग्रेड आर्टिस्ट ज्ञान शर्मा, उन्होंने कहा हमारी अम्मा से, मोनिका सुलोचना बृहस्पति जी से सिखवाओ इसको। तब हमने सुलोचना बृहस्पति जी से 8-10 साल तालीम ली
0: जी,
1: सदरंग रामपुर सदरंग परंपरा
0: जी।
1: फिर यहाँ भोपाल शिफ्ट हो गए, फिर गुंदेचा बंधु से तालीम ली 6 साल
0: जी,
1: उनसे तालीम ली। फिर किसी ने कहा कि तुम फोक गाती रही हो तो क्यों ना तुम ठुमरी तालीम लो, इसलिए कि वो सबसे नजदीक है लोक संगीत के, और लोक संगीत का पॉलिश्ड रूप ठुमरी गायन है
0: जी।
1: तो पूर्णिमा चौधरी जो बनारस घराने की हैं, महादेव मिश्रा जी की प्रथम शिष्या, बहुत अच्छी शिष्या, उनसे सीखो। तो मैं कलकत्ते जाती थी साल में 3-4 बार उनसे तालीम लेने, 2 साल उनसे तालीम ली, ठुमरी तालीम 2-3 साल वो चली
0: जी।
1: इस तरह से
0: अब ठुमरी की बात चल रही है और नगीन जी के मुंह से कुछ सुना ना जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, तो चलिए इसे थोड़ा और सुरमय बनाते हैं इस बातचीत को। बीच बीच में बताइए क्या सुना रही हैं आप।

0: जल्दी खत्म हो जाते हैं तो लगता है जैसे किसी ने एक बहुत सुंदर सपने से जगा दिया हो। नगीन जी, आप बहुत बहुत अच्छा गाती हैं आप। मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि एक बार आपके कॉन्सर्ट में मैं पहुँची थी और वहाँ पर आप गा रही थी गए दिनों का सुराग लेकर, इधर से आया उधर गया वो, और शायद बहुत से लोगों ने इसको ज़रूर सुना होगा, पर वहाँ मेरे आसपास बैठे कई लोगों की आंखों में आंसू थे क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है और शायद ईश्वर के उतनी ही नज़दीक भी, इसलिए लोगों को वो बहुत जल्दी छू जाती है। नगीन जी, हम वापस लौट आए हैं आपकी गायकी से। आपने बॉलीवुड के लिए भी गाया है, फिल्मी जगत के लिए भी गाया है, उस अनुभव को कैसे देखती हैं आप?
1: पहली बार मौका मिला था तो अनुषा रिजवी जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था उन्होंने कहा नगीन मुझे तुम्हारा गाना चाहिए और चोला माटी जरा गा के सुनाओ, फोन पे बात हो रही है।
0: अच्छा,
1: तो मैंने गा के सुनाया। उन्होंने कहा इसको हम एक फिल्म में इस्तेमाल करेंगे जो मेरी फिल्म है और आमिर खान प्रोडक्शंस हैं, प्रोड्यूसर आमिर खान हैं, तुम गाना चाहोगे? मैंने कहा वाह, ये तो चांदी हो गई, क्यों नहीं। और जिस साल बाबा का इंतकाल हुआ था उसी साल जून में उनकी मौत हुई और दिसंबर 2009 में बांद्रा में स्टूडियो बुक हुआ और इसकी रिकॉर्डिंग हुई पीपली लाइव के लिए। चार पांच टेक्स के बाद रिकॉर्डिंग हुई, फाइनलाइज हुई और सब लोगों ने बहुत सराहा और बहुत कि बिल्कुल अलग तरह की आवाज़ है। तो वो एक गाने ने मुझे बिल्कुल मशहूर कर दिया।
0: तो वो एक गाना जो है आपका वो हमको सुनवा दीजिए तो हमारे श्रोताओं के लिए भी बड़े आनंद की बात होगी क्योंकि वो बहुत ही अच्छा गीत है।
1: चोला माटी तो जीवन दर्शन है जी। और लव्स लिखे थे गंगाराम सिवारे ने जो एक लोक कवि थे बहुत अच्छे
0: जी।
1: और मंडला की ये आदिवासी धुन है पारंपरिक
0: जी।

द्रोणा जैसे गुरु चले गए, कारण जैसे दानी, संगी कारण जैसे दानी। बाली जैसे वीर

0: बहुत ही सुंदर गाना है। मतलब जब जब किसी को गलत फहमी हो और वो इस जीवन दर्शन से परिचित हो जाए तो अपने आप जमीन पर लौट आएगा। मैं वापस नया थिएटर की तरफ जाना चाहूंगी कि उसको कई लोग कहते हैं कि हबीब साहब बहुत प्रयोग करते थे नया थिएटर में, कहना चाहिए कि रंगमंच की प्रयोगशाला ही थी वो। आप इन चीजों को कैसे बताना चाहेंगी विस्तार से?
1: पहली चीज तो ये है कि जितने लोक नाट्य धर्म शैली के हैं हिंदुस्तान में, फोक थिएटर्स, वहाँ इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप बहुत रहता है आशुरचना का। तो हरियाणा में स्वांग शैली कहलाती है, उसमें भी इम्प्रोवाइजेशन होता है, और राजस्थान में भी शैली है वहाँ भी होता है, और एक और क्षेत्र में काम किया गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, साउथ उड़ीसा। तो उसमें कहाँ लोकनाट्य धर्म और कहाँ क्लासिकल, इतनी बारीक लकीर थी कि पता नहीं चलता था। तो इम्प्रोवाइजेशन, इसलिए के फोक एक्टर्स बहुत अच्छे इम्प्रोवाइजर्स हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा इलाका है जहाँ व्यंग का पहलू, इसलिए के हसोड़ हैं, तो व्यंग का पहलू, सटायर जिसे कहते हैं, वो कूट कूट के भरा हुआ है। हल्की एक्टिंग, व्यंग्यात्मक, सूक्ष्म, बिल्कुल सटल, ऐसा लगता नहीं कि एक्टिंग कर रहे। तो इम्प्रोवाइजेशन, फिर किताबें उन्होंने खरीदी यूरोप से, इंग्लैंड से, इम्प्रो, तो उसको स्टडी करते थे, पढ़ते थे और फिर देखते थे। दक्षिण भारत भी जाके उन्होंने कुडियाट्टम, ऐसे बहुत सारी शैलियां देखी हिंदुस्तान में, गुजराती थिएटर देखा, पारसी थिएटर में, मराठी थिएटर देखा, सब कुछ, और फिर क्या अमल हो सकता है मेरे थिएटर में, ये उन्होंने खूब मंथन किया, पढ़ा, जो विलायत से किताबें लाए थे, और देखा, फिर खुद का मंथन चला, फिर मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ प्रैक्टिकली, इस पे मंथन भी चला होगा मेरे ख्याल से। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इम्प्रोवाइजेशन, उसी में ड्रामे बने हैं
0: जी,
1: और उसी से, इम्प्रोवाइजेशन के तरीके से ही स्क्रिप्ट का गठन हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी गई, संवाद। तो वो समझा देते थे कि भाई हमारी छत्तीसगढ़ी मंडली को ये है कहानी, इसको तुम लोग आपस में बात कर लो, आधा घंटा 45 मिनट ले लो और मुझे करके दिखाओ। तो वो दिखाते थे, करके दिखाते थे, तो फिर कहते थे फिर से आपस में बातचीत करो और दोबारा करके दिखाओ। खुद भी मेहनत करते थे, दूसरों से भी खूब करवाते थे। उनको लगता था कि अब मुझे दखल देना है, तब वो दखल देते थे। शुरुआत में ये हुआ कि शुरू शुरू में जब छत्तीसगढ़ी मंडली बनी 1970-71 में, तो शहरी और छत्तीसगढ़ियों को मिला जुला रूप उसे ड्रामे होते थे, मसलन आगरा बाजार, लेकिन फिर वो हिंदी के संवाद उनको कहते थे कि ये बोलो, तो वो बहुत, कहीं उनका मेंटल ब्लॉक हो जाता था, वो नहीं बोल पाते थे, तो उनके समझ में नहीं आ रहा था हबीब साहब के इनको जब ग्रामीण नाचा थिएटर में देखा तो बेबाक होके एक्टिंग कर रहे, यहाँ ये कौन सी चीज है जो रुकावट डाल रही है। बहुत धीरे धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता उनको एहसास हुआ कि हिंदी में बुलवा रहा हूँ इसलिए। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया कि भाई यही संवाद तुम छत्तीसगढ़ी में बोलो, उसमें फिर रौनक आ गई और रोशनी आई। तो फिर उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया कि अब मैं छत्तीसगढ़ी में करूंगा। उनको समझ में आया

0: दिन था, अफील टास्क था, बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया जी। हर कदम पे संघर्ष था, लेकिन फिर जब फॉर्मूला बन गया तो जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो पानी बन जाता है H2O, वैसे उन्होंने परंपरा जड़ों से चीजें ली और उनको हूबहू ऐसे ही पेश कर देना नहीं, वो कैसे इस डामे में फिट होती हैं, वो कैटलिस्ट का काम, कैटलिस्ट का पर्यायवाची मुझे नहीं मालूम, तो कैटलिस्ट का काम किया। अंदर दिल और दिमाग में ये बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ
1: जी,
0: और फल की कभी चिंता नहीं की। वो फल जब मिला तो छप्पर फाड़ के दिया ऊपर वाले ने। तो ये बहादुरी से चलते रहे, दृढ़ता पूर्वक चलते रहे।
1: अच्छा, मैंने एक बात और सुनी है, वो कितना सच है ये तो आज आप ही बताएंगी, कि हबीब साहब को जब जरूरत होती थी कि मंच पर कोई सब्जी वाला आ जाए तो सब्जी वाले को बुला लेते थे, और मंच पर जब कोई चौकीदार की जरूरत हो तो चौकीदार को बुला लेते थे। इसमें कितनी सच्चाई है
0: भाई। 1954 में जब आगरा बाजार तैयार हुआ फुल फ्लेजेड ड्रामा
1: जी,
0: तो एक बटला हाउस था, एक मतलब फूस की छत थी उसकी, उसको बटला हाउस कहते थे जामिया मिलिया में। हाँ। और जामिया बिल्कुल जंगल ही था, और ओखला के बाजार वालों को लिया
1: जी।
0: और एक गधे को भी लिया, और गधे ने स्टेज पे लीड कर दी। तो बाजार का सिर्फ नजारा नहीं, बाजार की खुशबुएं बदबुएं सब उसमें प्रोडक्शन में। और फिर बाद में उन्होंने पाया
1: जी
0: कि ऐसे काम नहीं चलेगा, द पर्सन हैज टू बी टैलेंटेड इन एक्टिंग, वरना किसी को भी खड़ा कर दो स्टेज पे सब्जी ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर
1: मुझे लगता है ना कभी हुनरमंद होना चाहिए उसको, कि गधा भी मंच पर आया हो। ये बहुत अच्छा।
0: फिर जब रिवाइव हुआ 1970 में आगरा बाजार
1: जी,
0: तो फिर हुनरमंद प्रतिभाशाली कलाकारों को, एक्टर्स को ही लिया
1: जी। हाँ, देखिए ना, तो इतने सालों बाद भी आज उनकी बात हो रही है, और उन्हें थिएटर का विश्वविद्यालय कहा जाता है, तो शायद उसमें यही सब बातें रही होंगी कि इतने प्रयोग, आप देखिए कहाँ मुनासिब हैं कि लोग इतने प्रयोग करें और उसे मंच तक ले आएं, सबसे बड़ी बात यह है। तो वो नज्म कौन सी थी आपके मुंह से आज लाइव हम सुनेंगे जी?
0: नजीर अकबराबादी की है, सरापा कहते हैं उसे, सरापा यानी सर से लेके पैर तक पूरा नायिका का वर्णन
1: जी।
0: तो मैं पहला बंद गाऊंगी, करिश

0: की झपक पुतली की फिरत सुरमे की घुलावट वैसी है। पलकों की झपक पुतली की फिरत सुरमे की घुलावट वैसी है।
1: क्या बात है, क्या बात है। एक और शौक है जो हम चाहेंगे कि श्रोताओं को पता लगे। नगीन जी रंगों का चुनाव बहुत अच्छा करती हैं क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड है और अब वो भारत भर के हैंडलूम को, स्पेशली साड़ियों को बहुत पसंद करती हैं। और हालांकि पता नहीं उनको ये सवाल कैसा लगेगा,
0: नहीं,
1: लेकिन
0: बहुत
1: श्रोताओं
0: अच्छा।
1: श्रोताओं हम आपको बताना चाहेंगे कि

0: नृत्य से, लोक गायकी से उनका बहुत संबंध रहा है, और थिएटर में तो कपड़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में ये चुनाव करते करते नगीन जी आपको किसी खूबसूरत साड़ी की तलाश में बाजार में ज़रूर नज़र आ सकती हैं। नगीन जी, आपके सारी बातों को करते हुए आज बहुत आनंद आया। बस चलते चलते हम अपने श्रोताओं के लिए एक कोई भी आपकी पसंद का जो आपके दिल के बहुत करीब हो, चाहे वो लोकगीत हो या कोई नज्म हो या कोई सुआ हो, कुछ भी जो आप सुनाना चाहें।
1: नहीं, साड़ियों के बारे में तो मैं ये कहूँगी, ये भी मैंने अपने पिता से ही सीखा
0: जी।
1: उन्होंने एक साड़ी खरीदी थी, साउथ इंडियन थी वो, 7 हाथ की थी
0: जी,
1: और वो जामनी थी और कत्थई रंग की थी। उसमें छुपा हुआ जो रंग था ताने बाने में, वो नेवी ब्लू था, नीला, गहरा नीला
0: जी।
1: तो उसमें उन्होंने ब्लाउज मेरे लिए सिलवाया कोसे का, गहरे नीले रंग का
0: जी,
1: और सफेद दुपट्टा, रानी का कॉस्ट्यूम चरणदास चोर के लिए
0: जी।
1: तो ये मैंने उनसे सीखा कि रंगों में बैलेंस होता है, और जीवन में भी रंग होते हैं तो वस्त्रों में भी रंग होते हैं, और सबका परस्परस आपस में कहीं ना कहीं संबंध है, कनेक्शन है, चाहे वो थिएटर हो, कुछ भी हो
0: जी जी जी।
1: और वो साड़ियाँ खरीदते थे हबीब साहब, वही खरीदते थे कॉस्ट्यूम के लिए, और जैसे अम्मा के लिए साड़ी खरीदते थे, मेरे लिए भी खरीदते थे। तो उनको शौक था साड़ियाँ खरीदने का
0: जी,
1: वो सब लोगों के लिए साड़ियाँ खरीदते थे बहुत मजा लेके
0: जी।
1: ये एक नज़्म है नज़ीर की, तो वो मैं गाना चाहूँगी
0: जी।
1: पतंग वाले के पास आता है नौजवान शख्स और वो ये गाता है
0: जी,
1: तो उस एक दो बंद गाना चाहूँगी।

घर फूट के रोया तो मेरे पाँव का छाला सह

0: मेरे पांव का छाला, ये मुशायरे की धुन है पारंपरिक।
1: आप जैसे बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, पर आज पहली बार ये मैं शायद किसी इंटरव्यू के आखिर में कह रही होंगी कि अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। बहुत सारी बातें हैं नगीन जी करने के लिए, लेकिन हर मुलाकात का एक अंत ज़रूरी है। और आज की बातचीत केवल एक बातचीत नहीं थी, बल्कि एक विरासत से साक्षात्कार था जिसने भारतीय रंगमंच को नई दृष्टि दी। आपने अपनी स्मृतियाँ, अपने अनुभव, अपने मन की बातें हमारे साथ साझा की और बहुत दोस्ताना तरीके से की, ये कहना होगा। तो बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत धन्यवाद, और हम ज़रूर आपसे एक बार फिर मिलेंगे आपके बहुत सारे गीतों के साथ। श्रोताओं, उम्मीद है नगीन तनवीर जी के साथ ये खास मुलाकात आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपका बहुत शुक्रिया नगीन जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने, जिसमें आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित अतिथि थी सुप्रसिद्ध लोक गायिका नगीन तनवीर। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: आमने सामने,
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने। यह है 90.8 मेगाहर्ट्ज का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।
4: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण के साथ, देश का चैनल देश के लिए। आनंद लीजिए कार्यक्रम वागर्ध का।
5: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वागर्ध, और आज वागर्थ में बात होगी मुंशी प्रेमचंद जी की व्यंग रचना मोटेराम जी शास्त्री की। मुंशी प्रेमचंद के नाम और उनके साहित्य से हम सभी परिचित हैं। उन्होंने भारत की जीवंत लोक संस्कृति को केंद्र में रखकर कई महत्वपूर्ण कहानियों और उपन्यासों की रचना की। उनका साहित्य हमारे जीवन के आसपास ही घूमता सा लगता है। मुंशी प्रेमचंद ने कुछ व्यंग भी लिखे जो बड़े ही चुटीले और विषय के ऊपर सीधे प्रहार से करते लगते थे। तो आज हम आपको वागर्थ में उनकी एक व्यंग रचना सुना रहे हैं, मोटे राम जी शास्त्री। ये व्यंग झोला छाप चिकित्सकों पर बेबाकी से टिप्पणी करता है।

0: पंडित मोटेराम जी शास्त्री को कौन नहीं जानता। वे अधिकारियों का रुख देखकर काम करते थे। स्वदेशी आंदोलनों के दिनों में उन्होंने उस आंदोलन का खूब विरोध किया था। स्वराज्य आंदोलन के दिनों में भी उन्होंने अधिकारियों से राजभक्ति की सनद हासिल की थी। मगर जब इतनी उछल कूद पर भी उनकी तकदीर की मीठी नींद न टूटी और अध्यापन कार्य से पिंड न छूटा, तो अंत में उन्होंने एक नई तदबीर सोची। घर में जाकर धर्मपत्नी जी से बोले,
1: अरे इन बूढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है। अरे इतने दिनों विद्या दान करने का क्या फल मिला, जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं?
0: मोटेराम की धर्मपत्नी चिंतित होकर बोली, भोजनों का भी तो कोई सहारा चाहिए कि नहीं?
1: अरे तुम्हें जब देखो पेट की ही फिक्र पड़ी रहती है। कोई ऐसा बिरला ही दिन जाता होगा कि निमंत्रण न मिलते हो, और चाहे कोई निंदा करे या कुछ भी कहे, पर मैं परोसा लिए बिना नहीं आता हूँ। क्या आज ही सब यजमान मरे जाते हैं? मगर जन्म भर पेट ही जलाया तो क्या किया। अरे भाई संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए। सुनो, मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है।
0: वैद्य कैसे बनोगे? कुछ वैद्य की पढ़ी भी है तुमने?
1: अजी वैद्य पढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का। दो चार सीधे साधे लटके हैं बस, और कुछ नहीं है। आज ही अपने नाम के आगे भिषकाचार्य बढ़ा लूंगा। अजी कौन पूछने आता है कि आप हैं कि नहीं, और किसी को क्या गरज पड़ी है कि जो मेरी परीक्षा लेता फिरे। एक मोटा सा साइन बोर्ड लगवा लूंगा, उस पर ये शब्द लिखे होंगे, यहाँ स्त्री पुरुषों के रोगों की चिकित्सा की जाती है। दो चार पैसे का हड़ बहेड़ा आंवला कूट छान कर रख लूंगा। बस इस काम के लिए तो इतना सामान पर्याप्त है। हाँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बटवाऊंगा, उसमें लंका मद्रास रंगून कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां दर्ज की जाएंगी। वे मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। हैं? अरे जनता को क्या पड़ी है कि वो इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते भी हैं या नहीं। फिर देखो वैद्य कैसी चलती है।
0: लेकिन बिना जाने बूझे दवा दोगे तो फायदा क्या करेगी?
1: अरे फायदा ना करेगी मेरी बला से। वैद्य का काम दवा देना है, वो मृत्यु को परास्त करने का ठेका नहीं लेता। और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो मर नहीं जाते। मेरा तो कहना ये है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती वे विकार शांत हो जाने पर अपने आप अच्छे हो जाते हैं। वैद्यकों को बिना मांगे यश मिलता है। पांच रोगियों में से एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश तो मुझे ही मिलेगा ना। शेष चार जो मर गए मेरी निंदा करने थोड़े ही आएंगे। देखो भाई, मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। लेख लिखना मुझे आता ही है, कभी तो बना ही लेता हूँ। पत्रों में आयुर्वेद महत्व पर दो चार लेख लिख दूंगा, उसमें जहाँ तहाँ दो चार कविता भी जोड़ दूंगा, और लिखूंगा भी जरा चटपटी भाषा में। फिर देखो कितने रोगी फंसते हैं। ये ना समझो कि मैं इतने दिन केवल बूढ़े तोते ही रटाता रहा हूँ। मैं नगर के सभी सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता रहा हूँ, और इतने दिनों बाद मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होगी, सोने से।
0: अब मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी, ना अब वो अभिलाषा ही है। पर ये तो बताओ कि तुम्हें दवाएं बनानी भी तो नहीं आती, फिर कैसे बनाओगे? रस कैसे बनेंगे और दवाओं को पहचानते भी तो नहीं हो तुम।
1: प्रिय, तुम वास्तव में बड़ी मूर्खा हो। अरे वैद्यों के लिए इन बातों में से एक की भी आवश्यकता नहीं। वैद्य की चुटकी की राखी भस्म है, रसायन है, बस आवश्यकता है कुछ ठाट बाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें एक दरी हो, ताकों पर 10-5 शीशियां बोतलें हों, इसके सिवा और कोई चीज दरकार नहीं। और सब कुछ बुद्धि अपने आप कर लेती है। मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तुम देख लेना। अलंकारों का मुझे कितना ज्ञान है तो तुम जानती हो। आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो अलंकारों के विषय में मुझसे पार पा सके। आखिर इतने दिनों तक घास नहीं खोदी है। 10-5 आदमी तो कवि चर्चा के नाते ही मेरे आए जाए करेंगे, बस वही मेरे दलाल होंगे, उन्हीं की मार्फत मेरे पास रोगी आएंगे। मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं, नायिका ज्ञान के बल पर धड़ल्ले से वैद्य की करूंगा। अरे तुम देखती तो जाओ।
0: पर मुझे तो डर लगता है कहीं ये विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न चले जाए, न इधर के रहोगे न उधर के। तुम्हारे भाग्य में तो बस लड़के पढ़ाना ही लिखा है, और चारों ओर से ठोकर खाकर फिर तुम्हें वही तोते रटाने पड़ेंगे।
1: तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता?
0: इसीलिए कि तुम वहां भी धूर्तता ही करोगे। मैं तुम्हारी धूर्तता से चिढ़ती हूँ। तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते वो क्यों बनना चाहते हो? तुम लीडर न बन सके सिर्फ पटक पटक कर रह गए। तुम्हारी धूर्तता ही फलीभूत होती है और इसी से ही मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं।
1: आखिर मेरा नायिका ज्ञान कब काम आएगा?
0: किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते, जहाँ 2-4 कवित्व सुना दोगे वो खुश हो जाएगा और कुछ न कुछ दे ही मारेगा। वैद्य का ढोंग क्यों रचते हो?
1: अरे मुझे ऐसे ऐसे गुर मालूम हैं जो वैद्यों के बाप दादाओं को भी नहीं पता होंगे।
0: अच्छा?
1: हाँ, और सभी वैद्य एक एक 2-2 रुपए पर मारे मारे फिरते हैं। मैं अपनी फीस 5 रुपए रखूंगा, 5 रुपए, उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे ये कोई बहुत बड़े वैद्य हैं, नहीं तो इतनी फीस क्यों होती?
0: इतनी देर में तुमने एक बात तो मतलब की कही।
1: क्या?
0: मगर एक बात समझ लो, यहाँ तुम्हारा रंग न जमेगा, किसी दूसरे शहर चलना पड़ेगा हमें।
1: अरे क्या मैं इतना भी नहीं जानता? लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना, साल भर में वो धाक बांध दूंगा कि सारे वैद्य गर्द हो जाएंगे। मुझे और भी कितने ही मंत्र आते हैं, मैं रोगी को जांचे बिना उसकी चिकित्सा करूंगा ही नहीं। कहूंगा मैं जब तक रोग को भली भांति पहचान न लूं उसकी दवा नहीं कर सकता, नहीं तो दवा बेअसर रहेगी।
0: अब मैं तुम्हें मान गई, अब चलेगी तुम्हारी वैद्य की, और अब मुझे तुम पर कोई संदेह नहीं रहा। साथ ही ये मंत्र न चलाना, नहीं तो धोखा खाओगे। और इसी तरह साल भर गुजर गया। भिष्काचार्य पंडित मोटेराम जी शास्त्री की लेखनी चल गई। अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा बजा भी लेते थे, रोगों के विशेषज्ञ, रसिकों के भाग्य जागे। पंडित जी गीत सुनाते, हंसाते और बलकारक औषधियां खिलाते, और जिन्हें पुष्टिकारक औषधियों की विशेष चाह रहती उनकी तारीफ के वो पुल बांधते। साल भर में ही वैद्य जी का वो रंग जमा कि लखनऊ में वो ही एकमात्र विशेष चिकित्सक थे। विलासिनी विधवा रानियों और शौकीन रईसों में उनकी खूब पूजा होने लगी। किसी को अपने सामने वो समझते ही नहीं थे, मगर उनकी पत्नी उन्हें बराबर समझाया करती थी कि रानियों के चक्कर में मत फंसो, नहीं तो एक दिन बहुत पछताओगे। लेकिन भावी तो होकर ही रहता है, कोई लाख समझाए, पर पंडित जी के उपासकों में बिड़हल की रानी भी थी। राजा का स्वर्गवास हो चुका था, रानी साहिबा न जाने किस जीर्ण रोग से पीड़ित थी। पंडित जी उनके यहां दिन में 5-5 बार जाते। रानी क्षण भर के लिए भी उन्हें अपने पास से हटने नहीं देना चाहती थी। पंडित जी के पहुंचने में जरा भी देर हो जाती तो वो बेचैन हो जाती। एक मोटर नित्य ही उनके दर पर खड़ी रहती थी। अब पंडित जी ने खूब केंचुल बदली थी, तंजेब की अचकन पहनते, बनारसी साफा बांधते और पंप जूता पहनते। मित्रगण भी उनके साथ मोटर पर बैठकर दन दनाया करते थे। कई मित्रों को रानी साहिबा के दरबार में नौकर भी रखवा दिया। भला रानी साहिबा अपने मसीहा की बात कैसे टाल सकती थी। मगर चरखे जफाकार और ही षड्यंत्र रच रहा था। एक दिन पंडित जी रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाई पर एक हाथ रखे नब्ज देख रहे थे और दूसरे हाथ से उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे। कितने में कई आदमी सोटे हाथ में लिए हुए कमरे में घुस आए और पंडित जी पर टूट पड़े। रानी ने भागकर दूसरे कमरे में शरण ले ली और किवाड़ अंदर से बंद कर लिया। पंडित जी पर बेभाव पड़ने लगी। यूं तो पंडित जी भी दमखम वाले आदमी थे, एक गुप्ती हमेशा ही अपने साथ रखते थे, पर जब धोखे से कई आदमियों ने धर दबोचा तो भला वो क्या करते, कभी इसका पैर पकड़ते तो कभी उसका। हाय हाय का शब्द निरंतर मुंह से निकल रहा था, पर उन बेरहमों को उन पर जरा भी दया नहीं आई। एक आदमी ने एक लात जमा कर कहा,
1: हाय हाय मर गए,
2: अरे इस दुष्ट की नाक काट दो,
3: इसके मुंह में काली और चूना लगाकर छोड़ दो।
1: अरे सरकार,
4: क्यों वैद्य जी, बोलो क्या मंजूर है, नाक कटवाओगे या मुंह में कालिख लगवाओगे?
1: हाय हाय मर गया, और चाहे जो कुछ करो नाक न काटो भाई।
3: अब तो फिर इधर नहीं आएगा।
1: बोल किट भी नहीं सरकार, हाय मर गया।
4: आज ही लखनऊ से रफूरेट हो जाओ, नहीं तो बुरा होगा।
1: सरकार में आज ही चला जाऊंगा, जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूँ, आप यहाँ मेरी सूरत न देखेंगे।
3: अच्छा भाई, सब कोई से पांच पांच लात लगाकर छोड़ दो।
1: अरे सरकार मर जाऊंगा, दया करो।
4: तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है। हाँ तो शुरू हो जाओ।
0: पंच लत्ती पड़ने लगी, धमाधम की आवाजें आने लगी। मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है। हर धमाके के बाद एक बार हाय की आवाज निकल आती थी, मानो उसकी प्रतिध्वनि हो। पंचलत्ती पूजा समाप्त होने पर लोगों ने मोटे राम जी को घसीट कर बाहर निकाला और मोटर पर बैठाकर घर भेज दिया। चलते चलते चेतावनी दे दी गई कि प्रातःकाल से पहले भाग खड़े होना, नहीं तो और ही इलाज किया जाएगा। मोटे राम जी लंगड़ाते करहाते लकड़ी टेकते हुए घर में घुसे और धम्म से चार पाई पर गिर पड़े। तभी उनकी पत्नी ने उनसे पूछा,
5: क्या हुआ जी, ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? हाय हाय, ये तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया?
1: हाय भगवान, मर गया।
5: कहाँ दर्द है? इसी मारे मैं कहती थी कि बहुत रबड़ी न खाओ, लवण भास कर ले आऊं तुम्हारे लिए।
1: हाय दुष्टों ने मार डाला, उसी दुष्टा के कारण तो ये मेरी दुर्गति हुई। मारते मारते सबों ने बुरकुस निकाल दिया।
5: हाँ। तो ये कहो ना कि पिट कर आए हो। हाँ, पिटे तो हो, अच्छा हुआ। हो तो तुम लातों के ही देवता, कहती थी कि रानी के हम मत आया जाया करो, मगर तुम कब सुनते थे मेरी।
1: हाय हाय, अरे तुझे भी इसी दम कोसने की सूझी है, मेरा तो बुरा हाल है और तू कोस रही है। हाय किसी से क्या कह, किसी से कह दे ठेला वेला ले आवे, रातों रात लखनऊ से भाग जाना है, नहीं तो सवेरे प्राण नहीं बचेंगे।
5: नहीं नहीं, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा, अभी कुछ दिन और यहाँ की हवा खाओ। कैसे मजे से लड़के पढ़ाते थे तुम वहां पर। हाँ नहीं तो वैद्य बनने की सूझ गई, वैद्य बनूंगा मैं। बहुत अच्छा हुआ, अब उम्र भर नहीं भूलोगे तुम ये बात। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें मार पड़ रही थी तब रानी कहाँ थी? तुम पिटते रहे और उसने तुम्हारी रक्षा भी नहीं की।
1: हाय हाय, अरे वो दुष्टा तो भाग गई, उसी के कारण क्या जानता था ये हाल होगा, नहीं तो उसका इलाज ही क्यों करता मैं।
5: वो तो तुम तकदीर के खोटे, कितनी अच्छी वैद्य की चल गई थी तुम्हारी, मगर तुम्हारी करतूतों ने सत्यानाश मार दिया, सत्यानाश। आखिर फिर वही पढ़ोनी करनी पड़ेगी ना, तकदीर के खोटे हो तुम।
0: और प्रातःकाल मोटे राम जी के द्वार पर ठेला खड़ा था और उस पर असबाब लद रहा था। मित्रों में एक भी नजर नहीं आता था। पंडित जी पड़े हुए कराह रहे थे।
1: भगवान मर गया।
0: और उनकी पत्नी सामान लदवा रही थी। अभी आप मुंशी प्रेमचंद जी की एक व्यंग रचना मोटे राम जी शास्त्री का वाचन सुन रहे थे। वाचन स्वर थे इलाशंकर गुहा, कंचन राजानी, जवाहरलाल शाह और अमित कुंदानी के। साउंड इंजीनियर अमित कुंदानी। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद। देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह नाटक के संपादित अंश।

0: जिसका मंचन हुआ 23 मार्च यानी शहीद दिवस के मौके पर। इस नाटक का निर्देशन किया सुंदरलाल मालवीय ने। यह प्रस्तुति रही माच शैली में। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग है।
1: मित्रों, मैंने जयदेव जी की असेंबली का पास वायस राय की निगरानी रखाओ कही दियो है।
2: ठीक है भगत, तुम असेंबली में बम फेंकवा के मत जाओ, आफत में पड़ी जाओ, और ये मैं नहीं चाहूंगा। अभी तुम्हारो भायर रहना जरूरी है।
3: सही बात है
1: आजाद जी, आप निश्चिंत रहो, मैं तो यो सब जनता के जगावा का वास्ते करी रही हूं।
2: तो ठीक है,
1: हमारी चिंता मत करो।
2: तो ठीक है, पर साथियों आप सब सुनी लो, आपके बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को ध्यान रखना। इंकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इंकलाब जिंदाबाद।
3: आज 8 अप्रैल 1929 को दल ने अपने भगत सिंह, अपना साथी, उनका साथ असेंबली का माय कार्यवाही शुरू की जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, पे अटेंशन।
4: इंकलाब जिंदाबाद,
3: वंदे
4: मातरम।

0: हमारा सभी साथी लाहौर जेल में, आजाद जी फरार है और हमारा जीवन तो मृत्यु साधना का सिद्धांत पर चली रही है। और हम अपनो बयान या जेल में नहीं, सीधो सेशन जज की अदालत का मायदा गा। इंकलाब
1: जिंदाबाद,
0: वंदे
1: मातरम,
0: सामराज्यवाद
1: मुर्दाबाद।
2: 4 जून 1924 का दिन भगत सिंह जी की पेशी दिल्ली की अदालत में हुई। शुरू की जाए।
0: जज साहब, कानून पे कानून तमलाव हो और हमारे घना डराव हो। फ्रांस रूस की क्रांति देखो, कोई भी नहीं दबाई पायो। आजादी को कारगो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगो। और फांसी अगर न्याय तमारो तो फंदा कम पड़ जाएगा। जज साहब, हमारी बात सुनी के नौजवान में जोश खूब भराएगा। सच्चा वीर सपूत भारत माँ का देश पे बलि बलि जाएगा। इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: वंदे
1: मातरम,
0: साम्राज्यवाद
1: मुर्दाबाद।
2: देखियो, देखियो आपने भगत सिंह के बयान का सर। आखो देश भगत सिंह जी का साथी हुई गयो। बच्चों देश का ऊपर बलिदान करवा के लिए तैयार हुई। अबे 10 जून 1929 का दिन फैसलो आवे।
3: ओ रामलाल जी।
4: अरे हाँ, कई बातें रामलाल।
3: राव थोड़ा इधर आओ जरा।
4: हाँ,
3: काम की बात है। हमारे मालूम है
4: कहीं
3: भगत सिंह ने बट्टू केशर दत्त को आजीवन कारावास की सजा भई की।
4: हाँ, और
3: ने भगत सिंह के मियाँ वाली जेल में, ने बट्टू केशर दत्त के लाहौर जेल में भेज दियो है। और वहाँ कहीं भी इनके साथ साथ सारा कैदी उन भी सब भूख हड़ताल पे बैठी जा। भगत सिंह ने वहाँ इतना परेशान कर रखे।
4: तुम सही कह रहा हो, वहाँ लाहौर जेल में भी बट्टू केशर दत्त ने ऐसा ही माहौल बनाई रखे।
3: हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखा कर अपनो।
4: तुम भी अपनो ध्यान रखा करो।
3: ठीक
4: है, मिलते हैं फिर।
0: मैंने इंस्पेक्टर जनरल के पत्र लिखो कि हमारे यहाँ से लाहौर जेल भेजो जाए। और भी ने हमारी बात मानी ली है और मैं भी लाहौर जेल में आई हूं।
2: दस जुलाई 1929 का दिन भगत सिंह जी की पेशी हुआ वाली थी, लेकिन बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की हालत ऐसी थी कि विद्रोही चले भी नहीं पाया था। जो सब सुनी के भारत की जनता का मन में अंग्रेज सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़तो जा रही थी। विद्रोही कदोई अदालत का माय हड़ताल पे बैठी गया। यो सब होने से अदालत की कार्रवाई में बाधा पहुंची। जब इनके पाछो जेल में पहुंची।
0: सरकार की परेशानी तो बढ़ती जा रही है, हमारा साथियों की हालत दिन पे दिन खराब हो रही है। सरकार तो चाह रही है कि हड़ताल खत्म हो जाए, पर यहाँ हड़ताल तो चली रही है। हमारो ध्यान अब अपना साथियों की जान बचाव में। ए सुनो जरा, हमारा साथियों के पानी की हो जाए।
5: ए सुनो, भगत सिंह वान हड़तालियों को पानी की जगह दूध दिया जाए।
4: सब दूध के मटके इनके लिए पहले से ही भरवा के रख दिए।
5: दूध हम में से कोई भी इना दूध के हाथ भी नहीं लगाए दो।
6: हम पानी ही पियांगा। थोड़ी देर मटका के,
0: थोड़ी देर मटका उनके।
7: सब इन हड़तालियों ने, कैदियों ने तो सारे दूध का मटका फूटी दिया इन्हें।
5: अरे इन हड़तालियों को पानी ही देना पड़ेगा। अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया तो ऊपर क्या जवाब देंगे?
7: जी सर।
0: साथियों, अगर हमारा मित्र यतीन्द्र नाथ जी की मृत्यु नहीं होती तो हम पानी के कभी हाथ भी नहीं लगाता और या हड़ताल भी कभी समाप्त नहीं करता।
8: तुमने इन अंग्रेजों की हकीकत जनता के सामने लाके रखी थी।
0: मारो जो मकसद हो, मैं उनमें सफल होते जा रही हूं और हमारा मनोबल अब और बढ़ते जा रही है।

0: कि नौजवान मालूम है ये नौजवान जो है नौजवान ये अपराधी नहीं है, और ये तो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी,
1: क्रांतिकारी,
0: हाँ क्रांतिकारी है,
2: क्रांतिकारी नहीं देशभक्त।
3: भगत सिंह जी की रणनीति से लाहौर षड्यंत्र रचियों ने पूरी अपना साथी उनका माय भिन्न जोश भरी। 1 मई के लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई थी।
4: इनकलाब
5: जिंदाबाद,
4: वंदे
5: मातरम,
4: भगत सिंह,
3: सुखदेव,
6: राजगुरु।
2: कार्यवाही शुरू की जाए।
4: जज साहब, देश की खातिर कौन बाजी लगाएगा और सुनिए कि महफिल में हमारा इम्तहान होएगा। ए खुदा उदन भी आएगो जदे हम कायम होवांगा, जदे अपनी जमीन और अपनो आसमान होएगा। इनकलाब
5: जिंदाबाद,
4: वंदे
5: मातरम,
4: साम्राज्यवाद
5: मुर्दाबाद।

भिन्न के पिटाई देखी के आगा हैदर खान वहां से चलिया गया। तो फिर एक दिन फैसला आयो कि सुखदेव राजगुरु ने भगत सिंह जी के जल्द से जल्द फांसी दे दी जाए।

0: बेटा बाबा।
1: हाँ पिताजी।
0: मैंने सुने थारे फांसी होवा वाली।
1: हाँ पिताजी, तमने सही सुनी, मारे फांसी होवा वाली है।
0: देशभक्ति है इतनी बड़ी, हम समझा मां ने बाप, मारो छोरो फांसी चढ़ी गई, सीना में चली दिया।
1: पिताजी, म्हारी मौत जीवन से कीमती, सबके यो बतानो है, देश प्रेम की लो लगे ऐसो फर्ज निभानो है। तम मोह में मत पड़ जो, तमारो बेटो देश का वास्ते शहादत दई के देश की आजादी को रस्तो पक्को करनो चाहिए।
0: ठीक है भगत, वंदे मातरम,
2: वंदे मातरम,
0: वंदे मातरम,
2: वंदे मातरम।
3: बेटा महारा, यो कई होएगी?
1: माँ, तू रोएगी तो लोग कहेगा कि वीर की मार हो रही है, भगत सिंह की मार हो रही है। तुम्हारी बात सुन माँ,

0: आंसू नहीं गिरेगा। मैं थारा जैसे वीर सपूत की माँ हूँ।
1: तू अपनो ध्यान रख जे माँ, बेन तू भी अपनो ध्यान रख जे।
2: ठीक है भैया। भैया तमारो यो बलिदान आपको देश याद रखेगा। इंकलाब
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद।

धोनी के गुण टाली सके, वह तो अटल सत्य, समय सब गुंगो हुई के देखी ले। लो फांसी को पैगाम है आपके मालूम, भगत सिंह की फांसी से अंग्रेज सरकार इतनी डरेगी कि उनके एक दिन पेलाच फांसी पे चढ़ावों को हुक्म मिला। अखो देश भगत सिंह के बचावा की प्रार्थना करके, माँ ऐसो भाई चाहिए, माँ ऐसो बेटो चाहिए, बहन ऐसो भाई चाहिए, सबकी आख्या नम, मारी भी नम।

0: ये था मार्च खेल शहीद भगत सिंह। इसे लिखा था श्री सुंदरलाल मालवीय और यशस्विनी निगम ने। परिकल्पना, निर्देशन और संगीत श्री सुंदरलाल मालवीय।
1: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नाटक शहीद भगत सिंह के संपादित अंश। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग था। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आपने सुना हमारा विशेष कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह। ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो,

नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है रेडियो रिपोर्ट।

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन सभागार में, जहां 6 अगस्त की शाम ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव में 6 देशों के कलाकारों ने अपनी दिलकश प्रस्तुतियां दी।
1: Tadi waktu kapan saya

ये थी रेड रिपोर्ट ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव की। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जो लौट के घर न आए।
3: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नमस्कार, आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम याद करो कुर्बानी।
2: याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी।
3: सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के मर्मज्ञ और विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। किसी भी देश की संस्कृति उसके निवासियों के रक्त में बहने वाली वो जीवनधारा होती है जिससे विश्व मानचित्र में उस देश की पहचान होती है। प्राचीन काल से चले आ रहे जीवन मूल्य, संस्कार, परंपराएं उस देश के कण कण में समाहित होकर उसका मिजाज तय करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी देश को गुलाम बनाना हो, उस पर लंबे समय तक राज करना हो, तो सबसे पहले उस देश की संस्कृति पर चोट करनी चाहिए। यही कारण है कि जब अंग्रेज भारत आए और उसे गुलाम बनाना चाहा, तो भारत की सनातन संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया। भारत पर शासन करने के साथ साथ अंग्रेजों ने अनेक ऐसी नीतियां बनाई जिससे भारतीय संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जाए। भारत की आजादी की लड़ाई में एक युद्ध अगर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध था, तो दूसरा युद्ध भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए भी समानांतर चलता रहा। इस दिशा में नागरी प्रचारणी सभा काशी, ज्ञान मंडल वाराणसी जैसे केंद्रों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के जाने अनजाने पक्षों और ज्ञान की धारा को विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से प्रकाशित किया। भारतीय संस्कृति की रक्षा के महान उद्देश्य के साथ ही धर्मपाल जी आजीवन शोध करते रहे। शिवप्रसाद गुप्त ने काशी विद्यापीठ की स्थापना इसी उद्देश्य से की और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के मर्मज्ञ और प्रकांड विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल की मेधा पुष्पित पल्लवित हुई। भारत की पराधीनता को उन्होंने जितना अधिक महसूस किया, उतना ही अधिक भारतीय संस्कृति की तरफ उनका रुझान बढ़ता गया। साहित्य में उनकी गहरी रुचि थी, लेकिन उनके चिंतन का केंद्र थे भारतीय संस्कृति और पुरातत्व। यही कारण है कि हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ उन्होंने पाली और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया तथा इन भाषाओं के साहित्य का गहन अध्ययन कर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने संस्कृत और हिंदी के अनेक ग्रंथों का सांस्कृतिक अध्ययन किया तथा उनकी व्याख्या की। हमारे पौराणिक ग्रंथों और महाभारत के साथ साथ पाणिनि, कालिदास और वाणभट्ट आदि की रचनाएं, विद्यापति और मलिक मोहम्मद जायसी जैसे रचनाकारों के ग्रंथरत्न उनके अवगाहन का विषय रहे। अपनी रचनाओं से उन्होंने भारत की संस्कृति और जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। उन्होंने भाषा और साहित्य के सहारे भारतीय संस्कृति का अनुसंधान तथा पुनर्मूल्यांकन किया।

डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। माता पिता लखनऊ के रहने वाले थे, इसलिए उनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। लखनऊ में ही उनकी आरंभिक शिक्षा हुई और उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वासुदेव शरण अग्रवाल ने लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया पाणिनिकालीन भारतवर्ष, जिस पर उन्हें पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। इसके बाद यहीं से उन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। उन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर उनके प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। वो जानते थे कि बहुत सा प्राचीन भारतीय साहित्य और लिखित साक्ष्य आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया है। जो कुछ लिखित साक्ष्य उपलब्ध है उनका पढ़ा जाना आवश्यक है, लोगों तक उनकी पहुंच बनाना आवश्यक है। इसीलिए डॉक्टर अग्रवाल ने इन भाषाओं में उपलब्ध प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया तथा उनके सही अर्थों की विवेचना करते हुए आधुनिक हिंदी में लिखकर उन्हें लोगों तक पहुंचाया। इस तरह अपने ज्ञान और चिंतन से उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पुरातत्व को ही अपना प्रमुख विषय बनाया और अनेक महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की, जिन्हें आज हिंदी साहित्य धरोहर की तरह संजोता है। उनके निबंध संग्रहों में प्रमुख हैं पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, वेद विद्या, कला और संस्कृति आदि। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वाल्मीकि और मनु पर पौराणिक निबंध भी लिखे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने वाणभट्ट के प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ हर्षचरितम का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत की संजीवनी व्याख्या भी की। इस तरह अपने निबंधों के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति को समझने समझाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। इसी उद्देश्य से वो पूरे जीवन भारत माता के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करते रहे।

अपनी अनमोल कृतियों की बदौलत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल साहित्य जगत में एक मनीषी, एक प्रकांड विद्वान के रूप में स्थापित हुए। ग्रंथ आधारित विवेचनात्मक अध्ययन की श्रृंखला में उन्होंने मेघदूत एक अध्ययन, कादंबरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, कीर्तिलता, भारत सावित्री, मार्कंडेय पुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन आदि अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं की। इतिहास दर्शन और भारतीय धर्म मीमांसा जैसे निबंध संग्रहों के साथ ही उन्होंने अनेक किताबों का अनुवाद भी प्रस्तुत किया। डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग होने के बावजूद एक सरसता है, लेकिन विषय के अनुरूप उनकी शैली गंभीर है। उनके लेखन में विचार, भाव, उद्धरण और व्याख्या का समावेश है। यही कारण है कि उनकी सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक रचनाएं हिंदी साहित्य का गौरव हैं। राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय दिल्ली की स्थापना में भी डॉक्टर अग्रवाल का प्रमुख योगदान है। साहित्य साधना के साथ साथ उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। वो मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष रहे। वो भारतीय पुरातत्व विभाग तथा राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे। इसके साथ ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में उन्होंने प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर अग्रवाल जिस भी रूप में सक्रिय रहे, भारतीय संस्कृति और भारत गौरव उनके चिंतन में सदा प्राथमिकता में रहा। यही कारण है कि उनके लेखन में भारत की सनातन संस्कृति का गौरवशाली रूप व्यक्त हुआ है। वो जीवन पर्यंत लिखते रहे तथा कई ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन भी किया। 27 जुलाई सन 1967 को इस साहित्य पुरोधा ने अंतिम सांस ली। हिंदी साहित्य जगत में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की मौलिकता, विचारशीलता और विद्वत्ता अतुलनीय है। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के एक अन्वेषी साहित्यकार के रूप में उनका नाम अमर रहेगा। एक ऐसा साहित्य साधक जिसने सदा भारतीय संस्कृति की जय की कामना की, जिसने सदा भारत के विजय सूर्य के उदय की कामना की। नमन ऐसे महान देशभक्त और साहित्य मनीषी को।

ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज और आप ध्रुव संगारी बिलाल चिश्ती को इस पे सुन रहे हैं। रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल, देश के लिए।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।
2: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।
3: हाजिर है कला संस्कृति और अदब का आपका पसंदीदा कार्यक्रम कला कल्लोलनी, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकारों की आवाज वक्त की बंदिशों को तोड़कर सदियों तक गूंजती रहती है। आज की विशेष कड़ी किसी आम सफर की नहीं, बल्कि भारतीय रंगमंच के उस वट वृक्ष की दास्तान है जिसने आधी सदी से भी ज्यादा समय तक अपनी सांसों से थिएटर को सींचा है। जी हाँ, रंगमंच महज लकड़ी का एक बेजान तख्ता या कुछ चमकदार रोशनियों का कौतूहल नहीं है। यह मनुष्य की आत्मा का वह खुला चौक है जहां समाज अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ नग्न खड़ा होता है। जब थिएटर का पर्दा उठता है तो सिर्फ एक नाटक शुरू नहीं होता, बल्कि जिंदगी अपने सारे मुखौटे उतारकर सच से आंखें मिलाती है। सिनेमा जहां कट और रीटेक के कंक्रीट के पीछे छुप सकता है, वहीं रंगमंच एक जलती हुई भट्टी है और यहां वही टिक सकता है जो तपने का मादा रखता हो। इस भट्टी में तपकर जो कुंदन बना और जिसने भारतीय थिएटर को एक नई गरिमा, एक नया अनुशासन और एक नया दर्शन दिया, उस महानायक का नाम है राम गोपाल बजाज। बजाज साहब का रंगमंच पर होना ऐसा है जैसे किसी घने पुराने जंगल में एक शांत और विशाल वटवृक्ष का होना।
4: वक्त की इस नाव पर सवार होकर आज हम सब रुक करते हैं बिहार के सहरसा जिले के उस कोशी अंचल की तरफ, जहां की लहरों में जितना बहाव है, आदरणीय बजाज साहब के भीतर की कला में भी उतनी ही गहराई है। 1 जुलाई 1940 को इसी अंचल की गोद में एक ऐसे बालक का जीवन शुरू हुआ जिसका बचपन बाहरी पाबंदियों से कहीं ज्यादा अपने भीतर के एक अनकहे सन्नाटे से गुजरा। राम गोपाल बजाज का बचपन घोर अभाव में बीता था। गांव या मोहल्लों में रामलीला का मंचन सजता या कोई पारंपरिक नौटंकी आती तो ये बालक सब कुछ भूलकर अपनी पढ़ाई की किताबें छोड़कर बस उन कलाकारों के चेहरों, उनकी बुलंद आवाजों और मंच की उस तिलिस्मी रोशनी को निहारता रहता। घर से डांट पड़ती, पाबंदियां लगती, मगर जो चिंगारी भीतर सुलग रही हो उसे बाहर की पाबंदियां भला कैसे बुझा सकती थी। वो छुप छुप कर नाटकों की किताबें पढ़ते और बचपन का यही मानसिक और कलात्मक संघर्ष दरअसल उनके भीतर के उस महान रंगकर्मी को जन्म दे रहा था।
3: रंगमंच की तरफ पहला झुकाव बजाज साहब ने खुद बताया था कि बचपन में उनके घर के पास एक मारवाड़ी पुस्तकालय था और पास में ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय या स्थानीय क्लबों के माध्यम से कभी कभी नाटक होते थे। बचपन में उन्होंने जहां पारसी थिएटर शैली के नाटक और स्थानीय रामलीलाएं देखी, उन नाटकों के संवादों का लहजा और मंच की दुनिया उनके बाल मन में ठहर गई थी। वह छुपकर नाटक देखने जाते थे क्योंकि घर में पता चलने पर सख्त मनाही थी। उनके भीतर कला को लेकर एक अजीब सी तड़प थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और कोशी अंचल की मिट्टी में पला बढ़ा वो मासूम बालक अब धीरे धीरे किशोरावस्था की दहलीज लांघकर जवानी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इस उम्र में जहां अमूमन लड़के दुनियादारी की फिक्र में खो जाते हैं, वहीं बजाज साहब के भीतर कला और वैराग्य का एक अद्भुत संगम आकार ले रहा था। गांव में जब कोई भी तीज त्योहार आता तो वे ढोलक और मजीरों की थाप पर होने वाले भजन कीर्तनों में पूरी तन्मयता से शामिल हो जाते। रामलीला के मंच पर सजने वाले किरदारों को एकटक निहारना, बंद कमरों में गीता के श्लोकों की गहराई को टटोलना और छुप छुप कर नई कहानियों और कविताओं को पढ़ना उनकी इस दीवानगी को और परवान चढ़ा रहा था।
4: उम्र के इस पड़ाव पर एक अजीब सा अल्हड़पन था, एक बेलौस बेफिक्री थी। ये जवानी का वो दौर था जहां आवारगी भी थी और कुछ नया सीखने सिखाने की असीम ललक भी। दोस्तों के साथ बेमकसद घूमना, घंटों कला और अदब पर बहस करना और जिंदगी के थपेड़ों से लड़ते हुए आगे बढ़ना, इसी उठती जवानी के शोर और सूफियाना तन्हाई के बीच राम गोपाल बजाज के भीतर का वो अंगार तैयार हो रहा था जिसकी तपिश आगे चलकर पूरे भारतीय थिएटर को महसूस करनी थी।
3: दरभंगा के सीएम कॉलेजों की बंदिशों से आजाद होकर जब वो नौजवान घर से बाहर कोलकाता पहुंचा तो जेब पूरी तरह खाली थी, न रहने का ठिकाना, न खाने का कोई सहारा। बजाज साहब स्वयं अपने इस दौर को याद करते हुए बताते हैं कि जब वे कलकत्ता के मशहूर ईडन गार्डन में बेबसी की हालत में बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ लोग घूम घूम कर चंपी कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। बस पेट की आग और उस सूनेपन के बीच इस खुददार नौजवान के दिमाग में एक विचार आया कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, कम से कम दो आना तो मिलेगा ही जिससे दो वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम हो सके और पेट भर सके।
4: कलकत्ता के उन मसरूफ और अजनबी सड़कों पर अपनी पहचान और वजूद तलाशते हुए बजाज साहब ने केवल थिएटर ही नहीं देखा बल्कि जिंदगी को बहुत करीब से भी महसूस किया। खुद को जिंदा रखने के लिए और पेट की आग बुझाने के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम किए ताकि वे कलकत्ता में टिक सके, लेकिन उनका असली ठिकाना था वहाँ के थिएटर, ऑडिटोरियम और नुक्कड़।
3: उस दौर में कलकत्ता में पारसी थिएटर का असर तो था ही, साथ ही इप्टा की प्रगतिशील चेतना भी चरम पर थी। बजाज साहब घंटों भूखे प्यासे रहकर और बांग्ला रंगमंच के उस असीम अनुशासन को अपनी आंखों से समेटते। उन्होंने वहां केवल अभिनय की तकनीकें नहीं सीखी बल्कि उन्होंने देखा कि कैसे रंगमंच समाज की विसंगतियों पर सीधे प्रहार करता है। कलकत्ता के इसी साहित्यिक माहौल ने उनके भीतर छुपे अनुवादक और लेखक को भी जगाया, जहां उन्होंने बांग्ला और विश्व साहित्य के महान नाटकों को पढ़ना शुरू किया।
4: और वो अक्सर कहा करते थे कि कलकत्ता ने उन्हें वो दृष्टि दी जिसने उनके भीतर के अकेलेपन को एक वैचारिक गहराई में बदल दिया। वे समझ गए थे कि थिएटर महज मनोरंजन नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, और यही तजुर्बा, यही तपन और कलकत्ता का यही कड़ा संघर्ष आगे चलकर उनके जीवन का वो सबसे बड़ा आधार बना जिसने उन्हें सीधे दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां भारतीय रंगमंच का एक नया इतिहास उनका इंतजार कर रहा था। कलकत्ता के इसी साहित्यिक माहौल ने उनके भीतर छुपे अनुवादक और लेखक को भी जगाया, जहां उन्होंने बांग्ला और विश्व साहित्य के महान नाटकों को पढ़ना शुरू कर दिया।
3: कलकत्ता की गलियों में अपनी कलात्मक भूख और इस कड़े संघर्ष को जीने के बाद वे बिहार की राजधानी पटना आए और यहाँ से उन्होंने नए सिरे से अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। पर आर्थिक तंगी ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। पटना विश्वविद्यालय में एमए हिंदी लिटरेचर की पढ़ाई के दौरान फीस भरने के पैसे नहीं थे। तब इस स्वाभिमानी लड़के ने अपनी कुशाग्र बुद्धि के दम पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं जीतीं और इनाम के रूप में पुअर बॉयज फंड से अपनी आगे की पढ़ाई का खर्च निकाला। लेकिन जब तक ये बात रूढ़िवादी बजाज खानदान को पता चली तो खानदान के लोगों को झूठी शान की ठेस लगी। वे गुस्सा हो गए कि हमारी बिरादरी का लड़का पुअर बॉयज फंड से क्यों पढ़ेगा। पर इस फक्कड़ कलाकार को किसी की झूठी शान की परवाह कहाँ थी। उन्होंने दिन में कॉलेज की पढ़ाई की और रातों के अंधेरे में अपनी पहचान छुपाने के लिए भेष बदलकर पटना की सड़कों पर रिक्शा तक चलाया।
4: क्या बात है, संघर्षमयी मिट्टी से तपकर जब वे बाहर निकले तो उनका साहित्य से रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। बचपन में अपनी पूज्य दादी माँ को भगवत गीता और रुक्मणी मंगल का पाठ पढ़कर सुनाने वाले बजाज साहब अब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं के दीवाने हो चुके थे। आगे चलकर आधुनिक कविता के पुरोधा अग्गे जी से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने बजाज साहब के भीतर के उस संवेदनशील कवि को पहचान लिया। पटना में रहते हुए जब वे एमए प्रीवियस पास कर चुके थे तभी उनकी मुलाकात हिंदी के महान कथाकार परेश्वरनाथ रेणु जी से हुई।
3: रेणु जी इस नौजवान की आंखों में चमक और प्रतिभा भांप गए। उन्होंने बजाज साहब को पटना की एक स्थानीय ड्रामा मंडली से मिलवाया। उन्हीं दिनों पटना में एक सज्जन मिले हामिद साहब, जो किराए पर कमरे चलाया करते थे। हामिद साहब ने इस बेसहारा कलाकार को न केवल छत दी, बल्कि जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NSD के इंटरव्यू का बुलावा आया तो अपनी जेब से कुछ पैसों की मदद भी की। हामिद साहब के उन्हीं पैसों का सहारा लेकर यह नौजवान दिल्ली पहुंचा। MA फाइनल की परीक्षा देने से पहले ही उसका सिलेक्शन सीधे NSD में हो गया। दिल्ली आकर उन्होंने रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी साहब के कड़े अनुशासन में रंगमंच का का खा गा सीखा। सन 1965 में राम गोपाल बजाज जी का NSD में चयन हो गया था।
4: और राम गोपाल बजाज पटना विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में मास्टर की पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके और दिल्ली स्थित NSD चले गए। वे 1965 के बैच के छात्र रहे। उन्होंने अभिनय में अपना डिप्लोमा पूरा किया। NSD में उन्हें प्यार से बड़े छोटे सभी बज्जू भाई बज्जू सर कहते थे। वो हमेशा से सभी का साथ देने वाले मददगार दोस्त साथी और शिक्षक रहे। उन दिनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में अंग्रेजी का माहौल बहुत ज्यादा था। खुद रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी साहब बड़े सलीके से अंग्रेजी बोलते थे, जबकि राम गोपाल बजाज जी की हिंदी बेहद मुकम्मल शुद्ध और साफ थी। दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक सौदा हुआ। अलकाजी साहब ने बजाज साहब से कहा, तुम मुझे हिंदी सिखाना, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा।
3: भाषा का ऐसा अद्भुत आदान प्रदान रंगमंच के इतिहास में बिरला ही देखने को मिलता है। अलकाजी साहब हिंदी कविता और उसके ठहराव को सीखने के लिए इतने आतुर रहते थे कि कई बार सुबह बेहद तड़के भोर में ही बजाज साहब को बुला लिया करते और उनसे घंटों डूबकर हिंदी की कविताएं सुना करते थे।
4: अलकाजी साहब के उसी कड़े अनुशासन और प्यार की छांव में बज्जू भाई ने कई नाटकों में काम किया। उन्होंने अंधा युग, तुगलक जैसी कई ऐतिहासिक और कालजयी प्रस्तुतियों में साथ काम करके भारतीय रंगमंच का इतिहास बदल दिया। हालांकि किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में उनके द्वारा साथ किए गए कुल नाटकों की कोई निश्चित संख्या दर्ज नहीं है, पर यह बात पूरी दुनिया जानती है कि इब्राहिम अलकाजी ने राम गोपाल बजाज को आधुनिक हिंदी रंगमंच का एक सशक्त, निडर और बेमिसाल अभिनेता बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बजाज साहब आज भी जब अलकाजी साहब को याद करते हैं तो अंधा युग के वो दिन उनकी आंखों में एक जीवंत दृश्य की तरह तैरने लगते हैं।
3: न कोई जबां आड़े आई, न कोई दस्तूर आड़े आया, मुर्शिद ने जब मुरीद को अपनी रूह से मिलाया, एक दूजे को सौंप दी दोनों ने अपनी कायनात, उधर से इल्म बहा, इधर से अदब का दरिया आया। दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD की चौखट पर कदम रखने के बाद इस खुद्दार नौजवान ने जैसे रंगमंच को ही अपनी इबादत बना लिया था। बजाज साहब ने वहां केवल अभिनय की बारीकियों को ही नहीं साधा, बल्कि नाटक की मुकम्मल रूह को समझा। मंच की रोशनियां कैसे भावनाओं को उभारती हैं, सेट कैसे एक बेजान जगह को जिंदा करता है, और वेशभूषा जैसे किसी किरदार को वजूद देती है। उन्होंने इन सब विधाओं को पूरी लगन से सीखा और इसके साथ ही उनका नाता विश्व और हिंदी साहित्य के महान लेखकों से और गहरा होता गया।
4: लेकिन इन सब चमक धमक और कला के शोर के बीच कई बार रातों के सन्नाटे में घर की याद उन्हें घेर लेती थी। अपनी पूज्य दादी माँ की ममता और उनके आंचल की खुशबू को याद करते हुए इस संवेदनशील कलाकार की आंखें भर आती थी। उस वक्त जब मंडी हाउस की भीड़ अपने चरम पर होती, तब इस युवा रंगकर्मी का दिल करता कि वे इस हुजूम से अलग होकर कहीं दूर बिल्कुल एकांत में चले जाएं। दरअसल बजाज साहब भीतर से हमेशा एक बेहद आध्यात्मिक इंसान रहे, जो बाहरी दुनिया के शोर से थककर एकांत के उसी सन्नाटे में खुद को भीतर से शांत करते थे, अपने जख्मों को सहलाते थे। उनके लिए अकेलापन का वो सूनापन कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक रूहानी वरदान था, जिसे महसूस करते हुए अक्सर सोचते थे, अकेलेपन से बढ़कर आनंद नहीं, आराम नहीं, स्वर्ग है वो एकांत, जहां शोर नहीं, धूमधाम नहीं। ऐसे भावों को लेकर मुझे DH लॉरेंस की लिखित और दिनकर की अनुवादित वो कविता याद आ रही है।
3: देश और काल के प्रसार में शून्यता, अशब्दता, अपार में चांद जब घूमता है कौन सुख पाता है, भेद यह मेरी समझ में तब आता है, होता हूं जब मैं अपने भीतर के प्रांत में, भीड़ से दूर किसी निभृत एकांत में। और तभी समझ ले पाता हूँ पेड़ झूमता है किस मोद में, खड़ा हुआ एकाकी पर्वत की गोद में। बहता पवन मंद मंद है, पत्तों के हिलने में छंद है, आह कितना आनंद है।
4: बिल्कुल, भीड़ से दूर अपने भीतर के इसी निभृत एकांत में बैठकर उन्हें ब्रह्मांड के इस परम सत्य का बोध होता था। प्रकृति के इस मूक संगीत, हिलते पत्तों के छंद और मंद मंद बहती हवा के इसी रूहानी आनंद ने उनके भीतर के अकेलेपन को एक दिव्य दार्शनिकता में बदल दिया, जिसने आगे चलकर उनके अभिनय और निर्देशन को एक अमर और कालजयी गहराई प्रदान की।
3: NSD से शिक्षा पूरी करने के बाद रामगोपाल बजाज जी केवल एक छात्र नहीं रहे, वे सालों तक इस प्रतिष्ठित संस्थान की फैकल्टी के रूप में नए कलाकारों को गढ़ते रहे और आगे चलकर नवंबर 1995 से सितंबर 2001 तक इसके निदेशक डायरेक्टर बने। बतौर निदेशक उनका यह कार्यकाल भारतीय रंगमंच का स्वर्ण युग साबित हुआ। वे सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि थिएटर के हर विभाग जैसे मेकअप, स्टेज लाइटिंग और प्रोडक्शन डिजाइनिंग के एक सिद्ध ऑलराउंडर थे, जिन्होंने स्कूल की अकादमिक और कलात्मक रीढ़ को मजबूत किया।
4: उन्होंने विस्तार, प्रकाशन और दस्तावेजीकरण जैसे कार्यक्रमों को एक नई दिशा दी। रंगमंच की दुनिया में उनका सबसे ऐतिहासिक योगदान था भारत रंग महोत्सव। 1999 में आजादी की स्वर्ण जयंती पर शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल और पूरी तरह उन्हीं की कल्पना से उपजा जश्न बचपन व बाल संगम। इन उत्सवों ने देश विदेश के थिएटर समूहों, वयस्कों, बच्चों और पारंपरिक लोक कलाकारों को एक वैश्विक मंच दिया। स्कूल की शिक्षा प्रणाली में थिएटर को अनिवार्य करने की जोरदार वकालत करने वाले बजाज साहब दिल्ली के मशहूर देशांतर थिएटर ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से भी एक रहे हैं।
3: मंच, रेडियो, टीवी और फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले बजाज साहब के पास कविताओं के पाठ और उनकी प्रस्तुति का एक ऐसा जादुई हुनर है कि जब वे बोलते हैं तो शब्द जीवंत हो उठते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बुनियाद खड़ी करने में इब्राहिम अलकाजी की बड़ी भूमिका रही। ये भी असंदिग्ध है कि उन्होंने नाट्य प्रशिक्षण की जो आधारशिला रखी उसकी वजह से कई अच्छे अभिनेता और निर्देशक रंगमंच के क्षितिज पर आए।
4: अलकाजी साहब अपनी तरह के अद्वितीय रंग व्यक्तित्व हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं, किंतु उसके बाद NSD के सबसे कल्पनाशील निदेशक बज्जू भाई ही हुए और इस संस्था की परिधि का विस्तार जितना उन्होंने किया वो कोई और नहीं कर सका। उनके चलाए हुए कुछ कार्यक्रम तो अब लगभग बंद ही हो गए हैं, जैसे कि श्रुति। बज्जू भाई द्वारा बनाई गई परिधि अब छोटी पड़ती जा रही है। बजाज साहब ने अपने कार्यकाल में हिंदी की नाट्य पत्रिका रंग प्रसंग की शुरुआत की। उनके कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में श्रुति कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें हिंदी के वरिष्ठ या युवा लेकिन चर्चित कथाकार या कवि आकर रचना पाठ करते थे
3: और इसी कारण से हिंदी भाषी समाज और नाट्य विद्यालय का एक गहरा जीवंत रिश्ता बन गया था। बज्जू भाई ने ही बहावलपुर हाउस परिसर में सम्मुख थिएटर बनवाया और फिर अभिमंच बनाना शुरू किया, जो अंकुर जी के कार्यकाल में पूरा हुआ। 1996 में बज्जू भाई ने बतौर निर्देशक स्कूल के दीक्षांत समारोह के अवसर पर एकल अभिनय नाट्य समारोह करवाया, जिसमें लक्ष्मण देशपांडे, वीणा पाणी चावला से लेकर नसीरुद्दीन शाह जैसे अभिनेताओं ने शिरकत की। उस दीक्षांत समारोह में धर्मवीर भारती मुख्य अतिथि रहे।
4: निर्देशन की बात करें तो NSD और उसकी रिपेट्री कंपनी, जिसके वे 1988 से 1994 तक प्रमुख भी रहे, उनके नाटक भारतीय रंगमंच के मील के पत्थर बन गए। इस सफर की शुरुआत 1974 में सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक जैसे कालजयी नाटक से हुई। इसके बाद 1977 में जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक स्कंदगुप्त, 1989 में मिर्जा गालिब के दर्द को समेटते कैदे हयात और 1992 में मोहन राकेश की अमर कृति आषाढ़ का एक दिन का निर्देशन कर उन्होंने निर्देशन कला की नई परिभाषाएं सीखी।
3: केवल निर्देशन ही नहीं, उनके भीतर का संवेदनशील लेखक भी उतना ही प्रखर था, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण गिरीश कर्नाड के कन्नड़ नाटक ताले दंड का रक्त कल्याण के नाम से किया गया उनका शानदार हिंदी अनुवाद है। इस अनुदित नाटक का निर्देशन पहले रिपेटरी के लिए स्वयं उनके रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी ने और बाद में अस्मिता थिएटर के लिए अरविंद गौड़ ने किया। सचमुच कोशी अंचल की मिट्टी से निकला यह फक्कड़ और दार्शनिक कलाकार जब दिल्ली के मंडी हाउस के गलियारों में उतरा तो उसने न केवल खुद को साबित किया बल्कि समकालीन भारतीय थिएटर का पूरा भूगोल और इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
4: जी हाँ, रामगोपाल बजाज बज्जू भाई जी की देखरेख और मार्गदर्शन में भारतीय रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन की कई उत्कृष्ट पीढ़ियां तैयार हुईं। उनके प्रमुख शिष्यों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, आशुतोष राणा, सीमा विश्वास, गोविंद नामदेव, यशपाल शर्मा और स्वर्गीय श्री वल्लभ व्यास जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं, जिन्होंने उनसे अभिनय और थिएटर के कड़े अनुशासन की बारीकियां सीखकर आज पूरी दुनिया में अपनी कला का परचम लहराया है।
3: पद्मश्री से सम्मानित राम गोपाल बजाज केवल थिएटर के ही बेताज बादशाह नहीं रहे बल्कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के पर्दे पर भी उन्होंने अपनी अदाकारी का ऐसा रंग बिखेरा जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आषाढ़ का एक दिन जैसे कालजयी नाटकों से अभिनय का ककहरा शुरू करने वाले बजाज साहब ने जब सिल्वर स्क्रीन की तरफ रुख किया तो वहां भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। शेखर कपूर की मासूम 1983 हो या केतन मेहता की समीक्षकों द्वारा बेहद सराही गई मिर्च मसाला फिल्म 1985 हो या फिर यश चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर फिल्म चांदनी 1989 हो, बजाज साहब ने हर बड़े निर्देशक के विजन में खुद को एक मुकम्मल अभिनेता के रूप में ढाला। उनकी अभिनय की रेंज इतनी व्यापक थी कि जहां एक तरफ वे लीक से हटकर दीपा मेहता की फायर 1996 जैसी फिल्मों का हिस्सा बने, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने भारत का परचम लहराया जब वे ग्लोबल स्टार जैकी चैन की मशहूर फिल्म द मिथ 2005 में एक मार्शल आर्ट्स शिक्षक की दमदार भूमिका में नजर आए।
4: और वक्त बदला, सिनेमा का मिजाज बदला, लेकिन बजाज साहब की कला का जादू हमेशा नया बना रहा। सिनेमा के बदलते दौर के साथ कदम मिलाते हुए उन्होंने आधुनिक सिनेमा और OTT की दुनिया में भी उतनी ही सहजता से प्रवेश किया। उनका संजीदा अभिनय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना बटोरने वाली फिल्में मैंगो ड्रीम्स, इन प्रस्तुतियों के जरिए उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा कलाकार कभी पुराना नहीं होता। उसकी कला वक्त के हर फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक और देश के इस महान ऑलराउंडर का ये फिल्मी सफर महज कुछ फिल्मों की सूची नहीं है बल्कि ये गवाही है इस बात की कि जब थिएटर की माटी में तपा हुआ कोई फनकार कैमरे के सामने खड़ा होता है तो सिनेमा की स्क्रीन भी उसकी शख्सियत के आगे छोटी पड़ जाती है।
3: प्रोफेसर बजाज को भारतीय रंगमंच में उनके चौतरफा रचनात्मक योगदान के लिए कुछ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, साहित्य कला परिषद पुरस्कार, नेशनल प्रेस इंडिया अवार्ड, साहित्य कला परिषद सम्मान, नंदीकर सम्मान शामिल हैं। और उन्हें 2003 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। वे आधिकारिक और व्यक्तिगत क्षमताओं में थिएटर, फिल्म, जनसंचार के क्षेत्र में कार्यकारी बोर्ड, जनरल काउंसिलिंग और विभिन्न संगठनों और संस्थानों के बोर्ड के सदस्य रहे हैं।
4: उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय जैसे कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आगंतुक के रूप में उनकी क्षमता के अनुसार भारत के माननीय राष्ट्रपति के नामित के रूप में बोर्डों और समितियों में सदस्य के रूप में नामित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के एक सदस्य के रूप में उन्हें नामित किया गया। उन्होंने सन 2000 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जूरी के सदस्य के रूप में भी और भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सन 2001 के लिए पैनोरोमा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।
3: श्रोताओं, आज भले ही बज्जू भाई दिल्ली की इस भागदौड़ से दूर कहीं और वक्त बिता रहे हों, पर सच तो ये है कि मानसिक रूप से उनका दिल आज भी दिल्ली में ही धड़कता है। जब भी उनसे गुफ्तगु हुई है, मंडी हाउस के गलियारों और NSD के किस्से उनकी बातों में जीवंत हो उठते हैं। रामगोपाल बजाज के प्रिय कवि रहे हैं अज्ञेय। उनकी कविता जो बज्जू सर को बहुत पसंद है, हम उन्हें अर्पित करते हैं। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं, जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं वह दो खंभों के बीच है, रस्सी पर मैं जो नाचता हूं वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं उस पर तीखी रोशनी पड़ती है, जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं, न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, पर मैं जो नाचता, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है जिस पर रोशनी जो पड़ रही है, उस रोशनी में, उन खंभों के बीच, उस रस्सी पर, असल में मैं नाचता नहीं हूँ। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूँ, कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है, और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं। मुझे नहीं, खंभे नहीं, रस्सी को नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच।
4: रेडियो आजाद हिंद की तरफ से हम सभी के प्यारे बज्जू सर, बज्जू भाई को दिल से ढेरों शुभकामनाएं हैं कि आप दीर्घायु हों, खूब जिएं और अपनी कला से हम सभी को हमेशा यूं ही बहुत कुछ सिखाते रहें। आपकी ये अद्भुत रंगमंच की यात्रा, आपका फक्कड़पन, आपका स्वाभिमान और आपका कड़ा संघर्ष हम सभी के लिए, आने वाली हर पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा का एक अटूट स्रोत बना रहे। प्रणाम बज्जू भाई।
3: तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में बस आज के लिए इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की थी, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश पाथम का, लेखन दीपक नेमा, और आपके साथ था मैं विजयकांत नायक,
4: और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार भारती। इसी के साथ दीजिए हमें अनुमति, नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम कला कल्लोलिनी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए।
0: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं भावना सोमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद रेडियो रूपक।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: आपने अब तक जाना कि पिता की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ का परिवार किस तरह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। नरेंद्र सड़कों पर घूम घूम कर नौकरी की तलाश कर रहे थे। अंत में उन्हें एक स्कूल में अध्यापन का कार्य मिला। थोड़ा सा निश्चिंत होने के बाद नरेंद्र फिर से दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण से मिलने जाने लगे।
1: सन 1885 के अप्रैल महीने में श्री रामकृष्ण के गले के रोग का जो प्रथम आभास मिला था, उसी के बढ़ जाने पर भक्तों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दवा देकर कहा कि ज्यादा बात करना और बार बार समाधिस्थ होना इस रोग के लिए हानिकारक है, पर रामकृष्ण देव के लिए दोनों ही मनाही असंभव थी। वे भक्तों से खूब बातें करते और भगवत संगीत सुनते ही नृत्य भी करते रहते। इस कारण दवा का कोई असर नहीं हो पा रहा था और अंत में भादो के महीने में उनके गले से खून निकलने लगा।
0: नरेंद्र अपने गुरु की बीमारी से परेशान हो उठे। उन्होंने कई मेडिकल की किताबें पढ़ी, डॉक्टरों से पूछताछ की और उन्हें समझ में आ गया कि गुरुदेव को कैंसर हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं है।
1: सन 1885 ईस्वी के मध्य भाग में श्री रामकृष्ण के गले के रोग को धीरे धीरे बढ़ते देख भक्तगण चिंतित हुए। अंत में चिकित्सा के लिए वे कलकत्ता लाए गए। शहर में रहने की बड़ी असुविधा थी, अतएव भक्तों ने कलकत्ते के उत्तर भाग में स्थित काशीपुर में एक बगीचे वाला मकान किराए पर ले लिया और श्री रामकृष्ण को वहां ले गए। राखाल, बाबूराम, शरद, शशि, काली, तारक, लाटू आदि बालक भक्तगण सेवा कार्य में नियुक्त हुए और बलराम, रामचंद्र, गिरीख, ईशान आदि गृहस्थ भक्तगण ऊपरी देखभाल करने लगे। श्री रामकृष्ण की हमेशा सुधि लेने तथा उनकी सेवादि की व्यवस्था करने के लिए नरेंद्रनाथ ने अगस्त महीने में ही अध्यापन का कार्य छोड़ दिया। श्री रामकृष्ण के काशीपुर में रहते समय वे भी घर छोड़कर वहीं पर आ गए।
0: श्री रामकृष्ण के बालक भक्तगण धीरे धीरे प्रयोजन की गुरुता को समझते हुए एक एक करके काशीपुर के बगीचे में आकर गुरु सेवा में नियुक्त हो गए। धीरे धीरे उन्होंने कॉलेज छोड़ा, यहां तक कि घर पर जो दो बार भोजन करने के लिए जाते थे उसे भी छोड़ दिया। इससे कई बालकों के अभिभावक आशंकित हो गए और बीच बीच में अपने लड़कों को घर लौटा लाने के लिए वहां आने लगे। बालकों को अभय देते हुए नरेंद्रनाथ ने उन्हें रोकने का भार अपने ऊपर लिया। नरेंद्र के सामने कोई ठहर न सकता था, फलतः अभिभावकों की चेष्टा सफल न हो सकी।
1: दवा, चिकित्सा, सेवा टहल में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई, परंतु रोग धीरे धीरे प्रबल रूप धारण करता गया। कई लोग ये समझ गए कि श्री रामकृष्ण अपनी शक्ति को शिष्यों में संचारित कर लीला समाप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। फिर भी आशा भरे हृदय से अमंगल की सारी चिंताओं को हटाकर भक्तगण प्राणपण से श्री रामकृष्ण की सेवा करने लगे। गुरु और शिष्य का आपस में क्या पूर्व संबंध था, ये तो श्री रामकृष्ण ही जाने। वे नरेंद्र से किसी प्रकार की सेवा नहीं लेते थे और नहीं ले सकते थे। प्रत्यक्ष रूप से गुरु सेवा के अधिकार से वंचित नरेंद्र को लाचार होकर केवल देखरेख के काम में ही संतुष्ट रहना पड़ा।
0: काशीपुर का उद्यान भवन केवल रोगी निवास ही नहीं रहा, वो एक ही साथ मठ और विश्वविद्यालय भी बन गया। कभी भक्तगण साधन भजन करते तो कभी तरह तरह से शास्त्र पाठ, इतिहास, दर्शन विज्ञान आदि की चर्चा चलती थी। श्री रामकृष्ण के प्रेम की सुधा पीकर मस्त बने हुए इन प्रेमी पुरुषों के जीवन के सर्वश्रेष्ठ आनंदमय दिन इस पवित्र तीर्थ में ही बीते थे। नरेंद्रनाथ अनन्य चित्त होकर श्री गुरुदेव द्वारा प्रदर्शित उपाय से साधना पथ से द्रुत उन्नति करने लगे। वे प्रबल उत्साह, कठोर इंद्रिय निग्रह, भरपूर विश्वास के साथ सत्य को प्राप्त करने के लिए प्राणपण से किया गया उनका प्रयत्न वर्णनातीत है। किसी किसी दिन तो वे रात को दक्षिणेश्वर चले जाते और पंचवटी के नीचे ध्यान करने लगते। नरेंद्रनाथ का तीव्र अनुराग देख श्री रामकृष्ण बड़े आनंदित हुए। एक दिन नरेंद्र को बुलाकर वे बोले,

0: नरेन इधर तो आ।
1: जी जी कहिए, तकलीफ हो रही है क्या?
0: नहीं रे, कोई तकलीफ नहीं है। सुना है तू दक्षिणेश्वर जाकर पंचवटी के नीचे बैठकर रात रात भर ध्यान करता है?
1: इससे मुझे बहुत शांति मिलती है। दिन में नौकरी और मुकदमों के लिए भागा दौड़ी करते करते थक जाता हूं। पंचवटी के शांत वातावरण में ध्यान कर लेने से एक नई ताजगी मिलती है।
0: देख रहा हूं कई दिनों से तू बहुत परेशान है।
1: जी, हमारे चाचा ने हमारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। कहते हैं घर का हमारा वाला हिस्सा हमारा नहीं, पूरा घर उन्हीं का है, उन्होंने ही खरीदा था। जबकि सबको मालूम है कि पिताजी जब पश्चिमी राज्यों में गए थे वहां से पैसा भेजते थे और उन्हीं पैसों से ये घर खरीदा गया था।
0: अच्छा,
1: मां बहुत परेशान है, पिताजी नहीं रहे, उनका संचय कुछ भी नहीं है। मैं परिवार का बड़ा बेटा हूं पर कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। छोटे छोटे भाई बहन हैं, इन्हीं सब परेशानियों में घिरा हूं।
0: फिर भी रोज यहां आता है, मेरी सेवा करता है और फिर ध्यान करने चला जाता है।
1: आप चिंता ना करें, मैं ठीक हूं।
0: नरेन बेटा, साधना करते समय मुझे बहुत सिद्धियां मिली थी, उनका किसी दिन कोई उपयोग नहीं हुआ। तू ले ले, भविष्य में तेरे बहुत काम आएंगी।
1: महाराज, क्या उससे भगवत प्राप्ति में कोई सहायता मिलेगी?
0: नहीं, सो तो नहीं होगा, पर इन्हीं लोग की कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहेगी।
1: माफ करिएगा, मुझे सांसारिक सुख भोग की प्राप्ति के लिए कोई सिद्धि नहीं चाहिए। जिस सिद्धि से भगवत प्राप्ति न हो, सच का साक्षात्कार न हो, मैं खुद को ना पहचान पाऊं, उसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं।
0: अरे पागल, घर में इतनी तकलीफ झेल रहा है।
1: ये सब तो सामयिक कष्ट है, मैं निपट लूंगा।
0: वाह, ये हुई ना सच्चे योद्धा जैसी बात। तभी तो मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मेरी आशा तू ही पूरी करेगा।
2: इस समय नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण की पवित्र संगति में मानो एक दूसरे ही मनुष्य बन गए थे। वे दिन रात केवल भगवत चिंतन में डूबे रहते थे। सत्य को प्राप्त करने के लिए उनमें तीव्र व्याकुलता की अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। उन्हें देखते ही ऐसा लगता था मानो पिंजरे में आबद्ध सिंह कारागार को तोड़कर बाहर निकलने के लिए असीम आग्रह के साथ छटपटा रहा हो।
3: उस समय कई तरुण युवक श्री रामकृष्ण की सेवा करने के लिए काशीपुर के भवन में आते जाते रहते थे। नरेंद्र उनके नेता थे, उन्हीं ने सबको अलग अलग काम सौंप दिया था। वहां का सारा काम वे सब लोग मिल बांट कर कर लेते थे।
2: त्याग से पवित्र, चरित्र से उन्नत, संकल्प से अटल से तरुण युवक गण श्री रामकृष्ण को आदर्श बनाकर काशीपुर के उद्यान भवन में दूभर तपस्या में व्रती हुए। श्री रामकृष्ण की सेवा को लक्ष्य बनाकर घर द्वार तथा स्वजनों को छोड़ने वाले युवक गण एक साथ रहने के फलस्वरूप एक अपूर्व आध्यात्मिक प्रेम संबंध में एक दूसरे के साथ आबद्ध हो गए।
3: यहीं पर भावी रामकृष्ण संघ की नींव पड़ी। इस समय एक दिन श्री रामकृष्ण ने अपने तरुण शिष्यों को संन्यास देने का संकल्प लिया। एक दिन शिष्यों के हाथों में गेरुआ वस्त्र देकर उन्होंने उनके नेता नरेंद्र को बुलाकर कहा,
0: क्या तुम लोग संपूर्ण निर्भिमानी बनकर भिक्षा की झोली कंधे पर लिए सड़क पर भिक्षा मांग सकोगे?
1: गुरुदेव, क्या आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं? ठीक है, हम सब परीक्षा के लिए तैयार हैं, चलो रे सब।
2: वे श्री गुरुदेव के आदेश से उसी समय भिक्षा मांगने निकल पड़े और जो कुछ अन्न उन्हें मिला उसे पकाकर उन्होंने श्री रामकृष्ण के सामने रखकर बाद में प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन श्री रामकृष्ण का कैसा आनंद था। उच्च शिक्षित और उच्च वंश वाले गर्व रहित युवक सन्यासियों का तीव्र वैराग्य देखकर श्री रामकृष्ण आनंद से विभोर हो गए।
3: सन्यास ग्रहण के पश्चात अतीत युग के युग प्रवर्तक सन्यासियों की जीवनी और उपदेशों की चर्चा ही नरेंद्र का लक्ष्य बन गई। ध्यानाभ्यास के फल से एकाग्रचित नरेंद्र जब जिस विषय को आरंभ करते थे तब उसी में मस्त हो जाते थे। भगवान बुद्धदेव का अपूर्व त्याग, उनके अलौकिक साधना और असीम करुणा नरेंद्र की रात दिन की चर्चा का विषय बन गई। जन्म जरा दुख व्याधि की निर्मम पीड़ा में फंसे हुए जीवों का कातर हाहाकार देखकर करुणा विगलित राजपुत्र के विशाल हृदय में जो अपूर्व वेदना हुई थी उसका वर्णन करते समय नरेंद्र की आंखें डबडबा उठती थी।
2: बुद्धदेव के ध्यान में विभोर नरेंद्रनाथ गुप्त रूप से दो गुरु भाइयों को साथ लेकर बुद्ध गया जाने की तैयारी करने लगे। रात में बिस्तर से उठकर चुपचाप नरेंद्र, ताकर यानी स्वामी शिवानंद और काली यानी स्वामी अभेदानंद गंगा पार होकर स्टेशन पर रेल में सवार हो गए। सन 1886 ईस्वी के अप्रैल का महीना था। तरुण सन्यासियों ने पवित्र फल्गु नदी में स्नान कर वहां से 8 मील दूर बोधिसत्व के मंदिर की ओर भक्तिपूर्ण हृदय से यात्रा की। इधर प्रातः नरेंद्रनाथ को न देखकर भक्तगण चिंतित हुए। चारों ओर खोज की गई पर नरेंद्र का पता न मिला। श्री रामकृष्ण को जब भक्तों ने यह बात सुनाई तो मृदु हास्य के साथ उन्होंने कहा,
0: तुम लोग चिंता ना करो, वो लौट आएगा, वो लौट आएगा। वो क्या इस जगह को छोड़कर अन्य किसी जगह रह सकता है।
3: बोधगया में जाकर नरेंद्र ने बोधिसत्व के मंदिर के दर्शन किए। ये वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने जन्म जरा व्याधि मृत्यु के सताए हुए जीवों के दुख का निवारण करने के लिए समाधि मग्न होकर निर्वाण प्राप्त किया था। बोधि वृक्ष के नीचे पवित्र पत्थर पर नरेंद्रनाथ ध्यानस्थ हुए। उनके गुरु भाइयों ने ध्यान टूटने पर देखा, नरेंद्र पत्थर की तरह निश्चल है, उनका शरीर स्पंदनहीन है। बहुत देर बाद तनिक होश आने पर वे क्रंदन कर उठे। दूसरे ही क्षण वे फिर से ध्यानस्थ हो गए। उनके ध्यान स्तिमित नेत्रों से सत्य की विमल ज्योति निकल पड़ी। उन्होंने क्या देखा और क्या समझा ये अपने गुरु भाइयों से प्रकट नहीं किया। लगातार 3 दिन कठोर तपस्या में बिताकर वे बौद्ध गया से काशीपुर के बगीचे वाले मकान में लौट गए। भक्तगण अपने प्राण प्रिय नरेंद्र को पाकर आनंदित हुए।
2: बौद्ध गया से लौटकर नरेंद्रनाथ मानो ये समझ सके कि जिस अतृप्त प्यास से कातर होकर वे इधर दौड़ धूप कर रहे हैं वो एकमात्र श्री रामकृष्ण की कृपा के बिना और किसी तरह तृप्त नहीं हो सकती। नरेंद्र ने संकल्प स्थिर कर लिया, पर दूसरे भक्तों की तरह वे विश्वास के साथ श्री गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण न कर सके। वे चाहते थे सत्य की उपलब्धि। नरेंद्र कठोर तपस्या में डूब गए। उनका वो प्रबल उत्साह, वो कठोर त्याग, शारीरिक भोग विलास को त्याग कर आत्मदर्शन के लिए एकाग्र चित्त सी उनकी वो प्राणपण चेष्टा वर्णनातीत है।
3: महापुरुषों के चरित्र की चर्चा करने पर हम देखते हैं कि उन्होंने देश, काल और पात्र का विचार करके मुक्ति के लिए नए नए उपायों का आविष्कार किया था और कामिनी कंचन के प्रबल आकर्षण से अविचलित रहकर अपना कार्य चलाया था। उनका जप तप, साधन भजन सभी कुछ परहित के लिए था, स्वयं की मुक्ति अथवा अन्य किसी कामना की पूर्ति के लिए नहीं। इसीलिए श्री रामकृष्ण नरेंद्र को विभिन्न प्रकार की साधनाओं और आध्यात्मिक अवस्थाओं में से धर्म जीवन के परम आदर्श की ओर अग्रसर कराने लगे। श्री रामकृष्ण के अपने जीवन में अनुभूत आध्यात्मिक सत्यों के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिचित होने से पहले तक नरेंद्र किसी भी तरह उन सब के प्रति आस्थावान न बन सके।
2: धीरे धीरे नरेंद्र में परिवर्तन आने लगे। वे दिन नहीं रहे। कल के वे दार्शनिक, तार्किक और उद्वत नरेंद्रनाथ आज के गुरु भक्त साधक बने हैं। पाश्चात्य दर्शन की ऊपर ऊपर मनोरम दिखने वाली तर्क युक्तियों के जाल ने तथा ब्रह्म समाज के प्रभाव ने उनके चित्त पर जो आवरण डाल दिया था वो दूर हो गया। अब उनका पाठ्य ग्रंथ केवल पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान नहीं, वे तो अब गंभीर श्रद्धा के साथ उपनिषद, अष्टवक्र संहिता, पंचदशी, विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। अपनी सारी विद्या के अभिमान को हे समझते हुए वे पूरी निष्ठा के साथ श्री रामकृष्ण के अपूर्व उपदेशों में से नवीन और श्रेष्ठतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नरेंद्रनाथ आहार निद्रा आदि अति आवश्यक जीव धर्मों को भी छोड़ते हुए कठोर तपस्या में लग गए। उनका ये तीव्र तप अन्य बालक भक्तों के लिए आदर्श बन गया,
3: जिन्हें देखने के लिए श्री रामकृष्ण पागल जैसे हो उठते थे, जिनके कंठ का सुमधुर संगीत कान में पहुंचते ही वे निर्विकल्प समाधि में आत्मविस्मृत हो जाते थे, जिनकी प्रशंसा में वे भाव विभोर होकर कहते थे वो साक्षात नारायण है, जीव के उद्धार के लिए ही उसने देह धारण की है। उन्हें अर्थात स्वयं उन नरेंद्रनाथ को भी यदि इतनी कठोर तपस्या करनी पड़े तो दूसरों की फिर बात ही क्या। साधना पथ में काफी दूर अग्रसर होने के बाद नरेंद्रनाथ अंत में समझे कि निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति के बिना उनकी आध्यात्मिक पिपासा शांत नहीं होने वाली। दिन पर दिन बीतते गए, पर पूर्ण उद्यम के साथ प्रयत्न करने पर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई।
2: गंभीर रात्रि है, सर्वत्र निस्तब्धता छाई हुई है। काशीपुर के उद्यान भवन के कमरे में श्री रामकृष्ण रोगशैया पर लेटे हुए हैं। नरेंद्रनाथ पास ही खड़े हैं, कमरे में और कोई नहीं है। आज नरेंद्रनाथ संकल्प करके आए हैं कि जिस उपाय से हो वे निर्विकल्प समाधि लेकर ही रहेंगे। चिरकाल पुरस्कार के उपासक आज दया की भिक्षा मांगने आए हैं, पर भय से, विस्मय से, संभ्रम से उनकी वाणी न निकली। गुरु शिष्य की मनोकामना समझ गए। जिस नरेंद्रनाथ ने कुछ वर्ष पूर्व वेदांत शास्त्र का अध्ययन करने से इनकार करते हुए कहा था,
1: जिस ग्रंथ में मनुष्य को भगवान कहने की शिक्षा दी गई है उसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने को भगवान कहने से बढ़कर और कोई पाप नहीं है। आज वही नरेंद्रनाथ वेदांत में कही गई सर्वोच्च अनुभूति की प्राप्ति के लिए ललायत है।
0: नरेंद्र, तू क्या चाहता है?
1: निर्विकल्प समाधि के द्वारा सदैव सच्चिदानंद सागर में डूबे रहना चाहता हूं।
0: यही बात कहते तुझे लज्जा नहीं आती? समय आने पर कहां तू वट वृक्ष की तरह बढ़कर सैकड़ों लोगों को शांति की छाया देगा, और कहां आज अपनी ही मुक्ति के लिए व्याकुल हो उठा। शूद्र आदर्श तेरा।
2: नरेंद्र की विशाल आंखों में आंसू आ गए। वे अभिमान के साथ कहने लगे,
1: निर्विकल्प समाधि न होने तक मेरा मन किसी भी तरह शांत नहीं होगा, और यदि नहीं हुआ तो मैं कुछ भी ना कर सकूंगा।
0: तू क्या अपनी इच्छा से करेगा? जगदम्बा तेरी गर्दन पकड़कर करा लेगी। तू ना करे, तेरी हड्डियां करेंगी।
2: नरेंद्र की कातर प्रार्थना की उपेक्षा करने में असमर्थ होकर श्री रामकृष्ण ने अंत में कहा,
0: अच्छा जा, निर्विकल्प समाधि होगी।
2: एक दिन शाम को ध्यान करते करते नरेंद्र समाधि में डूब गए। काफी देर बाद समाधि भंग होने पर उन्होंने अनुभव किया,
1: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर्म करूंगा, अपेक्षानुभूति द्वारा उपलब्ध सत्य का प्रचार करूंगा।
2: उन्हें भी अतीत युग के ऋषियों की तरह उपनिषद के वचनों को दोहराना होगा।

0: हे विश्ववासी अमृत पुरुषों के पुत्रगण, हे दिव्य धाम निवासी देवतागण, सुनो, मैंने आदित्य के समान दैदीप्यमान उस महान पुरुष को जान लिया है जो समस्त अज्ञान अंधकार के परे है। केवल उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त मृत्युंजय होने का अन्य कोई मार्ग नहीं।
1: नरेंद्र के हृदय की सारी अशांति और आकांक्षाओं का अंत हो गया। पुलकित होकर गुरु के पास आकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी उपलब्धि बताई। रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा,
2: तो फिर अभी के लिए तेरा ये ज्ञान ताला बंद रहा, चाबी तेरे पास है, काम समाप्त होने पर फिर खोल दिया जाएगा।
1: सन 1886 ईस्वी की जुलाई मास का अंतिम भाग आ गया। श्री रामकृष्ण के गले के रोग ने धीरे धीरे भयंकर रूप धारण कर लिया। बड़े धीमे स्वर में किसी तरह वे दो चार बातें कह सकते थे। आहार था जल में पकाई हुई बार्ली, पर उसे भी वे निगल नहीं सकते थे। फिर भी उस महापुरुष की कृपा की सीमा न थी। सदा बाल भक्तों को उपदेश देते रहते और कभी नरेंद्र को बुलाकर कहते,
2: नरेंद्र, मेरे ये सब लड़के रहे,

0: ही वाला है। वे बालक की तरह रोने लगे। उनके विरह में वे कैसे अपना जीवन रख सकेंगे, यही सोचकर आकुल हुए। भाव के आवेग को रोकने में असमर्थ होकर नरेंद्रनाथ कमरे से बाहर निकल आए।
1: श्री रामकृष्ण की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने पर उनकी पत्नी शारदा माँ, लाटू काली, शशि, छोटे गोपाल आदि कई शिष्य श्याम पुकुर आ गए। नरेंद्र भी वहाँ रात को भी रहने लगे। तरुण युवक शिष्य का दल तो पहले से ही वहाँ रहता था। वे युवक पढ़ना लिखना छोड़कर वहीं डटे रहे और ये उनके माता पिता को पसंद न था। उनकी पढ़ाई छूट गई। परिवार वाले उन्हें वापस ले जाने के लिए उचित अनुचित उपायों का सहारा लेने लगे। उस समय नरेंद्रनाथ उन युवकों का पक्ष लेकर परिवारजनों को समझाते और वापस भेज देते। वे उन्हें समझाते,
2: वेद रूपी अनादि अनंत सागर के मंथन से जिस अमृत की प्राप्ति हुई है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवताओं ने अपना अपना ओज ढाला है, और जो लीला मानव अवतारों के जीवन रसायन के मिश्रण से और भी सारवान हो गया है, उसी अमृत के पूर्ण कुंभ स्वरूप भगवान श्री रामकृष्ण जीवों के उद्धार के लिए लीला उद्धार धाराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसे महापुरुष की सेवा करने से आप इन बच्चों को वंचित न कीजिए, इन्हें यहीं रहने दीजिए।
0: अंत में सचमुच वो भीषण दिन आ पहुंचा। सन 1886 ईस्वी का 15 अगस्त महापुरुष की शैया को घेर कर भक्त शिष्यगण शोक से आकुल हो स्तब्ध हृदय से महासमाधि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके व्यथित हृदयों में किस भाव का प्रवाह बह रहा है ये तो वे ही जाने। धीरे धीरे रात्रि अधिकाधिक गंभीर होने लगी। सिरहाने के सहारे श्री रामकृष्ण का कृश शरीर धीरे धीरे कांप रहा है। जीर्ण हड्डियों के पिंजरे को छोड़ महान आत्मा महाकाश में विलीन होने के लिए मानो पंख फैला रही है। नासिका के अग्रभाग में दृष्टि स्थिर है, मुखमंडल हास्य मंडित है। इसी समय 3 बार काली नाम का उच्चारण करते हुए श्री रामकृष्ण ने महासमाधि द्वारा नश्वर देह का त्याग कर दिया।

0: अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।
0: रात्रि के 10 बजने वाले हैं
1: और रेडियो आजाद हिंद की प्रसारण सेवा का सफर आज आपके साथ यहीं तक। कल प्रातः 7 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। चलते चलते कल के कार्यक्रम आपको बता दें।
0: कल सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम जीवन सौरभ 7:10 पर और पुनः प्रसारण 5 बजे शाम को सुनिए अक्षय निधि का। 7:20 पर सुबह सुनिए भक्ति संगीत कार्यक्रम और शाम 5:10 पर सुबह 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम पेश किया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर आधारित है और इसका पुनः प्रसारण आप शाम 6 बजे सुन सकते हैं। 8:30 पर इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम पेश किया जाएगा राजा संग्राम सिंह के भाग एक का और इसका पुनः प्रसारण आप 6:30 पर भी सुन सकते हैं। सुबह 9 बजे योग संवाद कार्यक्रम जिसका पुनः प्रसारण शाम 7 बजे सुनेंगे आप। 9:30 पर सुनिए भारत विभूति अमन के सिपाही, इसका पुनः प्रसारण रात के 7:30 पर। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे सुनिए परिक्रमा और रेडियो रिपोर्ट। 10:30 पर सुबह सुनिए कार्यक्रम आजाद हिंद गंगाधर मेहर की जयंती पर आधारित है और पुनः प्रसारण 8:30 पर शाम को। सुबेरे 11 बजे और रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम सुरसागर स्वाति तिवारी और डॉक्टर ऋषि मिश्रा का गायन। और सुबह 11:30 युग प्रवर्तक विवेकानंद का भाग 13 सुनेंगे और पुनः प्रसारण आप सुनेंगे 9:30 पर। तो ये थी

0: हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।
1: डॉक्टर रानी रैपर भारती को अनुमति। सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम।